चटनी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है। शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन। पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन। भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें। ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। प्यास, थकान, कमजोरी, यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है

तो पानी पिए। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है।

है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो एक महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं, लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवान रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन, शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है।
फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिलकर के, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं।
ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल, अधिकांश मामलों में यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप जीरो पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है। बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी।

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नज़र से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सबके भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीर दास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति भेद, अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुक्कड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहर तारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनके भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे, जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं तो इनकी एक रचना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं, उसका ज्ञान देखना चाहिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की। तो कबीर दास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेके। तो आचरण के बारे में कबीर दास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीर दास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे। यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ

बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के तीन भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर, ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरी जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़या गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर दास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुद बुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है अभी करना है, खुद को बदलना है तो आज से ही शुरू करना है। जिंदगी की इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी भरी जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर झांकना है, क्योंकि असली शांति हमारे खुद के भीतर है, बाहर नहीं, आपके अंदर ही। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेती हूं आपसे विदा। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आधा सौ जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: वाह क्या बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक का अर्जुन नान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सुबह देखिए ना, आज का दिन बिल्कुल खिली खिली सी दोपहर वाली सुबह फिलहाल हो गई है, क्योंकि अभी तक जिस तरह का हम लोग मज़ा ले रहे थे, उठा रहे थे मौसम से, कि भाई उठने के बाद जो है बदली नज़र आ रही, लेकिन फिलहाल आज पूरी तरह से धूप खिली हुई नज़र आ रही है हमारे मॉर्निंग वाले टाइम में। सो एक बार वापस से ये सनी सनी मॉर्निंग के साथ आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो चलिए, आज का दिन है खास और आपको ले चलेंगे काफी दूर तक अपने संग। सो क्या कुछ होने वाला है आज, चूंकि वेंसडे है सो होने वाला तो बहुत कुछ है, यानी ऐसे कई सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचने वाली है आपके इसी मॉर्निंग वाले शो में। किस तरह से, कैसे, क्या, ये सब कुछ धीरे धीरे करके हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है दिन की शुरुआत वाला थॉट। जी हाँ, सो थॉट क्या कह रहा है इस बात को जाना जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सो फिलहाल आज का थॉट क्या कह रहा है और क्या है आज का थॉट, आइए आपको ले चलते हैं, बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

अजी, तो आज का थॉट जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। बड़ा क्लियर, कट टू कट क्लियर बात कह रहा है आज का थॉट। क्या कह रहा है आज का थॉट? कह रहा है कि गलत जगह कैद रहने से अच्छा है उम्र भर भटकते रहना। गलत जगह कैद रहने से अच्छा है उम्र भर भटकते रहना। बड़ी सिंपल सी बात है आज के थॉट ऑफ द डे में। अब बात आती है कि ठीक है, हम भटकते रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गलत जगह किस बात को समझे? कैसे जाने कि ये गलत जगह किस तरह से इंडिकेट किया जा रहा है? राइट, सो यस, सवाल यही उठता है, और सवाल उठा है तो वाजिब है इसका जवाब सही है। गलत जगह कैद रहने से अच्छा है उम्र भर भटकते रहना। देखिए, दरअसल सही गलत हम बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं, और मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को गलत मानते हैं और किन चीज़ों को सही मानते हैं। सो उससे होता क्या है? उससे होता कुछ यूँ है कि आप अगर किसी ऐसी फीलिंग में कैद हैं जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं, अगर ये हो गया तो इससे मतलब बहुत सारा डर, फिर आपकी लाइफ का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा क्या होगा वैसा, और आपको दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है, आपको पेन भी है, और आप बता रहे हैं कि भाई हम तो अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं लेकिन हम इससे निकल भी नहीं पा रहे, और ये चीज़ डरा रही है, आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं बात ये आती है कि कोई एक गलत फीलिंग में, कोई एक गलत रिश्ते में, कोई एक गलत फहमी में जीने से बेहतर है, कैद रहने से बेहतर है उम्र भर भटकते रहना। अब उम्र भर भटकते रहने का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी शख्स को उसका अच्छा गलत उसके हिसाब से ही मिलना चाहिए। अब कोई दो रोटी खा के पेट भर लेता है तो किसी के लिए एक काफ़ी होता है। अगर हम स्टैंडर्ड बता दें कि नहीं, सारे शहर के लोग सिर्फ तीन रोटी से नीचे नहीं खाएंगे, वही हेल्दी माना जाएगा, पर ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी टाइप अलग है, किसी का किसी वक्त की मूड की बात है, कोई किसी वक्त कहाँ है इस पे भी डिपेंडेंट करता है, वो कैसा फील कर रहा है इस पे भी डिपेंडेंट करता है। तो ये जो बातें हैं बहुत छोटी छोटी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कभी भी जो चीज़ें हमारी लाइफ की होती है वो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, यानी हमारे लिए क्या बेहतर है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, तब जा कर के चीज़ों को समझ में आ पाता है कि अच्छा ये ऐसे है, ये वैसे है, इस तरह से। एंड आई होप कि आप इस बात का जवाब समझ पा रहे होंगे, आप जान पा रहे होंगे कि इस सवाल और इस बात का क्या जवाब है। राइट, तो ये बहुत अलग, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है कि हम गलत जगह कैद रहने से बेहतर है भटकते रहें। यानी अगर हमको नहीं लग रहा है कि चीज़ें बेहतर है, हमको नहीं लग रहा है कि हम सही जगह हैं, हमको नहीं लग रहा है कि हम सही रिश्ते में हैं, हमको सही नहीं लग रहा है कि हम किसी ऐसी फीलिंग में हैं, हम कहीं पे भी अगर गलत महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हमको वहाँ सोच कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली। ये बात सिर्फ फिल्मों में नहीं बताई जाती, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि लाइफ दोबारा नहीं मिलती है। पर हाँ, इसके कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारे दिमाग में आया ये लाओ सामने वाला गलत है, हमारे लिए बेहतर नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक चीज़ों को समझ नहीं लिया जाए, जान नहीं लिया जाए, तब तक आप इन चीज़ों पे डिसीजन नहीं कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि आप किसी अनजान शख्स से मिल रहे हैं, अब आप वहीं तय कर लेते हैं कि भाई मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन अगर कोई बहुत ख़ास बन चुका है और अब तय करना है कि इसके साथ आगे चलना है कि नहीं चलना है, रिश्तेदारी निभानी है कि नहीं निभानी, तो वो उसमें तो आपको टाइम चाहिए होगा, आपको समझना होगा कि एक्चुअल में ये सिर्फ अभी लगने वाली आपको प्रॉब्लम है या हाँ हमेशा वाली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इस थॉट का बहुत क्लियरली कहना है कि गलत जगह कैद रहने से अच्छा है उम्र भर भटकते रहना। बड़ी ही प्यारी बात कह दी है। सो क्या आप तैयार हैं गलत जगह कैद रहने से उम्र भर भटकने के लिए?
मुझे तो लगता है कि हाँ आप तो तैयार नज़र आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप तैयार नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आज का थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके फटाफट से बताइए। और साथ ही ये है आपका मॉर्निंग वाला शो, दिन है वेंसडे बुधवार, और मॉर्निंग जॉगर जो इतना लाइव है आपके साथ आपके मॉर्निंग वाले शो में। वापस से आने के बाद हम देखने वाले हैं कि मैसेजेस किन किन लोगों के क्या क्या आ गए हैं, क्योंकि आपकी मॉर्निंग विशेस और साथ ही साथ मॉर्निंग विशेस के साथ ही आपके रिएक्शंस थॉट पर हमेशा मिलते रहते हैं। सो आज क्या रिएक्शन है, आज क्या आप इस बात पे बोल चुके हैं, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। एंड फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं। हम तो बने ही हैं भैया गाना एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये गाने ही है ना जो हील करते हैं, मूड चेंज कर देते हैं। चलिए ऐसे ही एक गाना सुनिए आपके लिए, जो खास मॉर्निंग वाले शो में आपके लिए ही आया है। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन 89.6 FM।

0: सोनिया सोनिया है, क्या बात है। तो भाई दिल तो झूमना तय होता है जब इतनी प्यारी कोई बात बता दे या इतनी प्यारी बातें हमको समझ में आ जाए और हमको लगे कि वाह यार ये तो हम अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो देर किस बात की, जरूर कर दीजिए।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए भाई बताते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग वाले टाइम में। सबसे पहले जो मैसेज आया है वो आया है धर्मेश त्रिपाठी का, लिखा है गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग धर्मेश, आपका स्वागत है, वेलकम है। सविता जी हैं, सुप्रभात आपको भी। आशु जी हैं लखनऊ से, सुप्रभात आपको भी। प्रीति जी हैं बहराइच से। सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग आपको भी, आ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। एंड साथ ही साथ हमारी गीता जी भी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गोंडा से और गोंडा एफएम पर 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है भाई आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। जो हमने बताया आज का थॉट ऑफ द डे, उस पर क्या रिएक्शंस हैं आपके, तो सबसे पहले हमारी प्रीति जी ने बहराइच से रिएक्ट किया है, ऑसम थॉट, आज का विचार फॉलो करने योग्य है। वाओ क्या बात है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा सुविचार सर जी, थैंक यू सो मच। आशु जी फ्रॉम लखनऊ। सविता जी हरखापुर गोंडा से लिखते हैं कि हम तो भटकते भटकते ज्ञानस्तरी पहुंच गए, बंध गए आज के सुविचार से, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है आज का जो ये थॉट ऑफ द डे है, ये इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि शायद हमको देखिए कई बार रियलाइज तब होता है जब हम किसी काम को बहुत वक्त तक करते हैं और हम ज़बरदस्ती अपने को बस खींच रहे होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें किसी करियर के काम को लेकर के, कि हम कोई इसी ऐसी जॉब में हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं लग रहा था, लेकिन हमने दुनिया के कहने पर, लोगों के बोलने पे बहुत ज़्यादा और कर दिया और हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, तो एट द एंड जा करके लगता है कि यार बिला वजह ये टाइम वेस्ट कर रहा है, मनी वेस्ट कर रहा है, एफर्ट्स वेस्ट कर रहा है, बहुत कुछ है। कई बार कई रिश्तों में हमको ऐसा लगता है कि यार हम बस सिर्फ एफर्ट्स डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती का हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बचा कुछ भी नहीं है। कई बार हमें सिचुएशंस में लगता है कि हम किसी चीज़ के डर में जीने लग जाते हैं, अरे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अरे क्या होगा यार, आखिर आएगा ही आएगा ना, तो डर डर के भी जीना ही पड़ेगा, और इससे बेहतर है कि भाई फिर खुल के जिया जाए, तो बस इतना ही फ़र्क है। सो आज का थॉट ऑफ द डे इसीलिए बहुत खास है। देखिए बात करते करते हमारे संतोष कुमार जी भी आ गए, लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं संतोष जी गोंडा से। सो इतने सारे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे फेसेस हैं, इसके अलावा आप हमको सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, आप सभी का हम स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और साथ ही साथ पिटारा अब खुल रहा है बातों का, बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, बहुत सारा प्राउड फील कराने की, ऐसी खबरों का, ऐसे हमारे रियल लाइफ के हीरोज़ को आप तक पहुंचाने का सब कुछ होने वाला है आज ही के शो में। सो कहीं मत जाइएगा, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकल चलिए हमारे साथ सफ़र पर।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बहुत ज्यादा हल्के से आपको बोलना है और अपने से खुद से बोलना है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सच में ये शब्द जो है ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। सो अगर आप लाइफ के किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, तो वहां पर अब रुक जाने का तो कोई मतलब होता नहीं है। सो फिर क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा, है ना। तो ये अप्रोच मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अप्रोच है। सो ये एक अगर मुझे लगता है टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत बार काम आने वाला है। सो इस मैजिकल सेंटेंस को अपने पास में रख लें और बोल दें जो होगा देखा जाएगा, यार क्या टेंशन है।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

है कि आपको एक ऐसा काम करना है जिसके 52,000 रुपए मिलेंगे, तो क्या आप रेडी हैं? मतलब मुझे लगता है कि भाई आप तो तुरंत बोलेंगे कि अरे ऐसा कौन सा काम है जिसमें 52,000 रुपए मिल रहे हैं। सो भैया हम बता रहे हैं कि एक रात गुजारनी है और मिलेंगे आपको 52,000 रुपए। यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं, मजाक ही नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूँ, जापान में एक ऐसा भूतिया घर है जहां रात बिताने पर मिलेंगे 52,000 रुपए। क्या है पूरी बात, आइए आपको बताते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। हम जो बात बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन सच है, इसीलिए हमने कहा कि जरा रुके रहिएगा और जानिए ये 52,000 रुपये कमाने का तरीका क्या है, वो भी बस एक रात रुक कर।

0: मैनू भी जपेगा नाम जी, लेकिन भूत भगाने का मंत्र जी। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे नाना। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, और यही तो है आपके गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे नान। स्टे ट्यून्ड।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे नान।

हाँ जी, तो आपको बता दें कि फिलहाल एक ऐसा घर जहां एक रात रुकने के 52,000 रुपए मिलेंगे। कमाने का मौका अच्छा है। अगर आप डेयरिंग है, आपको लगता है कि अरे ये सब फालतू की चीजें हैं, तो आप जा सकते हैं। मतलब मुझे भी लगता है, लेकिन ठीक है, मतलब इतना भी नहीं लगता है। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि जापान में डरावने इतिहास वाले घरों में एक रात बिताने पर तकरीबन 52,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मकसद ये साबित करना है कि ये घर रहने के लिए सेफ है। जी हाँ, क्या है जीको बुकेन घर? सो जीको बुकेन वो घर है जहां कभी दुखद घटनाएं हुई हों। ऐसे घर कम कीमत पर मिलते हैं, लेकिन लोग इन्हें खरीदने से अक्सर बचते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे घर जो हैं वहां पे कम कीमत पर मिलते हैं, लेकिन वहां पर लोग खरीदने से बचते हैं। सो टेस्टिंग कैसे होती है? रात बिताने वाले लोग अपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके रिपोर्ट देते हैं। अगर कोई ऐसी घटना सामने आई जो जनरल सी नहीं है, असामान्य घटना लगी, तो घर को जो है सुरक्षित नहीं माना जाता। और अगर मान लिया असामान्य घटना नहीं होती है, तो घर को सुरक्षित माना जाता है, जिससे खरीदारों का भरोसा बढ़ता है। होता यही है कि असामान्य घटना नहीं होती है और उस घर को सुरक्षित मान लिया जाता है। इसीलिए इस भूत बंगले में रुकने के एक रात के 52,000 रुपए के आसपास दिए जाते हैं, जिसको हमने बोला जीको बुकेन। सो आर यू रेडी फॉर जीको बुकेन एंड रेडी फॉर रिसीविंग 52,000 पर नाइट? सो ऐसे मुझे लगता है कि चलो जापान चला जाए और 7-8 घर ऐसे देख लिया जाए। एक हफ्ते के टूर पे जापान भी घूमना होगा, रात में ऐसे घर पे स्टे करके आराम से सो लिया जाएगा, उसका पैसा अलग होगा, और वही जो कमाया जाएगा, जो मिलेगा, उससे दिन में घूम लिया जाएगा, खा पी लिया जाएगा, क्या ही मसला है ना। तो 1 वीक का टूर भी हो जाएगा जापान का और अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। सो फिलहाल कौन कौन अपना जो है जापान जाने वाला टिकट देख रहा है, चलिए ऑनलाइन अब देख ही लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं इस बात से ये सच्चाई है कि हाँ, हम जो आज तक मानते आए हैं, हमको जो बचपन से एक डर बताया गया है भूतों वाला, वो आज तक सिर्फ कहानियों में ही सुना है, ऐसा एक्सपीरियंस में नहीं आया है। और ये बात सच है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर एक्सपीरियंस में नहीं है, तो शायद करने का एक अच्छा मौका है जहां पे हम खुद को भी साबित कर सकते हैं। सो अगर आप सच में इतने डेयरिंग हैं, तो इसके बारे में जरा पता कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑफर बहुत ही सीमित समय तक के लिए है, इसलिए इस ऑफर को सुन लेना, जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी सुबह आपको बताने वाले हैं भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य जहां पर नहीं लगता है इनकम टैक्स। जी हाँ, सुनकर थोड़ा सा अलग और अजीब लग सकता है लेकिन दिस इज द रियलिटी। तो भैया भारत का ये एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस इनकम टैक्स नहीं लगता है। चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए, आइए वापस से फिर हम बताते हैं कि आखिर सिक्किम में ऐसा क्यों होता है।

0: हाँ जी, और क्या हाल चाल है आपके, एक बार वापस से बता दिए। फिलहाल हम आपको बता दें, चूंकि हमने कहा था वादा, ये बताएंगे कि भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर पात्र स्थानीय लोगों का इनकम टैक्स से मिल जाती है बहुत ही खास छूट, जिसे हम बोलते हैं विशेष छूट। आखिर भारत को ऐसा कौन सा इकलौता राज्य है और ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ बता रहे हैं आपके मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

देश भर में लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इस वक्त जुटे हुए हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि भाई भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पात्र स्थानीय लोगों को इनकम टैक्स में नहीं देना पड़ता है। जी हाँ, दरअसल ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम ये राज्य है जहां पर पात्र स्थानीय लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसकी वजह कोई नई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि 1975 में सिक्किम के भारत में मिलने की वक्त संवैधानिक प्राविधान है, यानी अनुच्छेद 371 एफ और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 1026 AAA के तहत मान्यता प्राप्त सिक्किमीज लोगों को ये खास छूट दी गई है। हालांकि ये छूट सिक्किम में रहने वाले हर इंसान को नहीं मिलती, सिर्फ कानून के हिसाब से सिक्किमीज माने जाने वाले स्थानीय लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, और दूसरे स्टेट से जाकर बसे लोगों पर सामान्य रूप से इनकम टैक्स नियम लागू होते हैं। सो अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर स्थानीय लोग जो है वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया कि भाई अगर कोई और स्टेट में जाकर बसा है या नॉन सिक्किमीज की कैटेगरी में आता है उसको फिर देना ही देना है, लेकिन जो सिक्किमीज हैं उनको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बताया गया ना, जब 1975 में भारत में ये मिला था तो संवैधानिक प्राविधान है इसका कि अनुच्छेद 371 एफ और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 1026 AAA के तहत ये मान्यता प्राप्त सिक्किमीज लोगों को विशेष छूट दी गई है इस कानून के तहत। सो अगर कभी आपसे कोई GS में कोई ऐसे बातचीत में पूछता है तो आप बता सकते हैं, और अगर आपको पूछना है तो आपके लिए भी एक बेहतरीन सवाल हो गया है कि भाई ऐसा भारत का इकलौता कौन सा राज्य है जहां के स्थानीय लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है। सो वो आंसर है आपका सिक्किम, यानी सिक्किम राज्य में ऐसा होता है। किनके लिए? जो स्थानीय सिक्किमीज हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं और इसके लिए तहत बाकायदा अनुच्छेद 371 एफ है। सो इस तरह से आप इसमें अपनी बातों को कोट कर सकते, बता सकते हैं। एंड आई होप कि ये जानकारी सच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी बेहतरीन हुई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए फिलहाल है वक्त आपको ले चलने का, हैप्पी हैप्पी कराने का, हैप्पी हैप्पी। सो हैप्पी हैप्पी कैसे होंगे? ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। ये सॉन्ग सुनना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद आप हैप्पी हैप्पी होने वाले हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। भाई यही तो है गोंडा शहर की धड़कन। हाय क्या बात है। और भाई इतने सारे गानों के साथ ही साथ मुझे ऐसा कुछ बात याद आ रही है कि जब जब मौसम बदलता है तो ध्यान ज्यादा रखना होता है, याद आया? जी हाँ। सो फिलहाल कल तक जो बारिश हो रही थी अब अचानक से धूप निकली है, तो जाहिर है कि आपको अब थोड़ा सा ख्याल अपना और रखना होगा, नहीं तो हो जाएगी आपको प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम से आपको बचने के लिए जो है वो अपना खास ख्याल रखना है। कैसे रख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसी तरह से रख सकते हैं कि भाई आप जो हैं अब खाने पीने के दौरान क्या खा पी रहे हैं और निकलने से पहले कहाँ, कैसे, कितनी तैयारियों से आप निकल रहे हैं, इस बात का खास ख्याल होना चाहिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं और मॉर्निंग वाले शो में बने रहते हैं, और आने के बाद बातों का भंडार है जो आपके लिए है।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
4: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉगर जतन। सो फिलहाल के लिए चलिए भाई, कुछ खबरें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और वो आप तक पहुंचनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है भाई ऐसी चीज़ें आप तक होनी चाहिए तभी चीज़ें बेहतर होगा। सो फिलहाल आपको हम ले चलते हैं एक ऐसी बात की तरफ जो सुन करके थोड़ा सा आप हैरान होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़िलहाल एक बहुत बड़ी मिसाल कह सकते हैं। जी हाँ, दरअसल हम बता रहे हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें आप जानेंगे कि भाई 3 बार ICU किडनी ट्रांसप्लांट हुआ लेकिन ससुराल ने नहीं छोड़ा साथ। आज के वक्त में जहां हम कहते हैं कि भाई ससुराल वाले न जाने क्या करे कैसे होते हैं, वहीं पर कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जब सच में सुन करके हैरान हो जाते हैं। क्या है पूरी बात, आइए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग शो में।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

शादी के एक साल बाद ही किडनी फेल्योर, ब्रेन स्ट्रोक, अब ज़रा सोचिए कितनी बड़ी बात है, है ना? जी हाँ, शादी के अभी जस्ट एक ही साल हुआ था कि भाई उनको किडनी फेल्योर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और 3 बार तक जाकर के आईसीयू

जाना पड़ा, और ये हम नहीं कर रहे इसके बाद, बल्कि ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा स्वागत कुछ इस तरह किया कि भाई बाहर खड़े होकर के गुब्बारों को लेकर के और वेलकम पोस्टर्स उनके हाथ में थे, ये सारी चीज़ें उनके साथ में चलती रहे। और कहीं ना कहीं सच में ये एक भावुक कर देने वाली घटना बताई गई। सो शादी के सिर्फ एक ही साल बाद में इनकी किडनियाँ फेल हो गई थी, और इसके बाद ज़िंदगी हॉस्पिटल टेस्ट और डायलिसिस के बीच में सिमट गई थी। इसके बाद ज़िंदगी, जाहिर सी बात है, आप ज़रा सोचिए फिर कैसी हो जाएगी। फिर एक दिन आया जब हो गया ब्रेन स्ट्रोक। इनकी याददाश्त का एक हिस्सा हमेशा के लिए इनसे छिन भी गया। ये शायद किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। अभी ये संभल ही नहीं पाई थी कि एक और बड़ा झटका हुआ, वो हुआ कि पेट में हुआ बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन। जी हाँ, फिर उसने इनको ICU पहुंचा दिया। सो कई बार लगा कि शायद अब अपने परिवार का एक बोझ बन गई हैं, इनको ऐसा ख्याल हुआ सबने सबकी लगा कर कि भाई अब मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा, अब नहीं बचेगा। लेकिन इनके सास और ससुर ने इनको कभी ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया, कभी नहीं। उन्होंने घर संभाला और इनके खाने का पूरा ध्यान रखा। हर हॉस्पिटल के चक्कर में ऑफ कोर्स वो लोग साथ में खड़े रहे, हमेशा इनके साथ में रहे। और जब भी ये हार मानने लगी तब उन्होंने बस एक बात कही, तुम ठीक हो जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। फिर वो फ़ोन आया जिसका हम सभी को इंतज़ार था, किडनी डोनर मिल गया था, ट्रांसप्लांट सफल हुआ। कुछ ही दिन बाद जब ये अपने मायके पहुंची तो वहाँ इनका इंतज़ार एक और सरप्राइज कर रहा था। जी हाँ, इनके सास और ससुर आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए थे, इनको गले लगाने के लिए खड़े थे। और उसी पल इनको समझ में आया रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बलता, बल्कि कुछ रिश्ते मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ करके परिवार बन जाया करते हैं। क्योंकि जब साथ देने वाले लोग, आपके आसपास वाले लोग सच्चे हों, तो जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी आराम से जीती जा सकती है। और ये सारी बातें जो हैं ये नेहल की है। सो नेहल एक ऐसी लड़की है जिनकी शादी के एक साल बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आईं लाइफ में। उनको क्या नहीं हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, किडनी ख़राब हुई, उसके बाद तीन बार उनको ICU जाना पड़ा। लेकिन फैमिली, स्पेशली उनके ससुराल वाले, उनके सास ससुर इतने कायदे के कि बच्चों की तरह रखा, और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने खुद घर को संभाला और अपनी बहू के लिए खाना बनाया और हमेशा हौसला दिया। जब उनको लगा कि अब वो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं बचेंगी या बहुत बोझ बन गई हैं, तब उन्होंने कहा कि तुम ज़रूर लौटोगी और हमें उस दिन का इंतज़ार है। और देखिए ना, फाइनली जब वो दिन आया तो जिस तरह से रोड पर खड़े होकर के बाहर ही घर के इंतज़ार किया, वो एक ऐसा लम्हा बन गया जिसकी किसी ने भी परिकल्पना नहीं की थी। सो ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में जो हमको इतना ज़्यादा अलग सा फील कराते हैं। एंड आई होप कि आपको भी ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये कोई मुँहज़बानी स्टोरी नहीं है बल्कि ये सच है। ये सच में हमारे आसपास की ही घटनाएं ऐसे होती हैं। सो हमारे लिए वो फैमिली, वो मायके वाले लोग, वो ससुराल के लोग सच में सुपर हीरो हैं। और उस रिश्ते को जिसको हर जगह हर बार यही कहता है इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसे हुए हैं, और ऐसे एक एग्जांपल नहीं, ना जाने कितने सारे एग्जांपल हैं। बस शायद हम उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन देखिए, जब आप करने पे आते हैं तो आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, और जो चाहते हैं वो हो भी जाता है। फिलहाल आपको भी आपकी लाइफ में अगर ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में है, आपको किसी को बुरा नहीं बनाना है, आपको बस खुद के लिए निकलना है, खुद के लिए एक स्टेप लेना है, खुद को सेफ रखना है। शायद यही लाइफ है, क्योंकि रिश्ते भले ही कभी नाराज हो जाए लेकिन कभी ना कभी जिंदगी के मोड़ पर काम आते हैं। और जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो आसपास अगर हो और आपकी लाइफ में हो तो फिर क्या ही बात है, लाइफ तो ज़रा बन ही जाती है।
है ना।

0: अरे भाग्यवान, अरे ईश्वर ने तुम्हें खूबसूरती और बेवकूफी एक साथ क्यों दे दी भाई?
1: खूबसूरती इसलिए कि तुम शादी का पैगाम दो और बेवकूफी इसलिए कि तुम्हारे पैगाम को मैं मंजूर कर लूं।
2: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो अब क्या बात होने वाली है? बातों के सिलसिला तो देखिए हमेशा चलता रहता है, और कहते हैं ना कि बात में ही सब कुछ छिपा है। अगर बात हो जाती है तो ना जाने कितने बड़े बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं। बात सुन लेने से गुस्सा शांत हो जाता है, बात सुन लेने से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, और बात सुन लेने से हम कहीं ना कहीं हल्का भी महसूस कर लेते हैं। फिलहाल एक काफ़ी ख़ास बात कहीं मैंने जानी जिसको मुझे लगता है कि शायद आपको बताना ज़रूरी है, और इस बात को अगर मैंने आप तक पहुंचा दिया तो शायद इसकी इम्पोर्टेंस आप भी समझ पाएंगे और आपको भी लगेगा हाँ ये बात तो बिल्कुल अपने आप में सच है, ये बात अपने आप में सही है। दरअसल बात ये है कि कई लोग कहते हैं ना कि जैसे मैच्योरिटी की पहचान क्या है। सो अक्सर लोगों को लगता है कि हर सवाल का जवाब जिसके पास है वो मैच्योर है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब हर सवाल का जवाब होना नहीं होता, बल्कि मैच्योरिटी तो ये है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब नहीं देना है, यानी कौन से ऐसे सवाल है जिनका जवाब ही नहीं देना है। ये आपको आपकी लाइफ में हमेशा पता होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, ऐसा कहा गया है। अब इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपको क्या लगता है, खैर ये आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। फिलहाल कुछ कमेंट आ गए हैं। इससे पहले जो हमने स्टोरी बताई थी उसको लेकर के हमारी प्रीति जी ने बहराइच से बोला है, प्रेरणादायक स्टोरी, यदि हौसला बढ़ाने वाला परिवार मिल जाए सभी को तो हर जंग बड़ी आसानी से जीती जा सकती है। क्या बात है, बेशक सही बात आपने कही। सविता जी ने कहा बहुत ही प्यारी ससुराल वाली सीख वाली कहानी है, थैंक यू सो मच कि आपको भी बहुत पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू यू। और चलिए भाई आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, सो क्या कुछ लिखा है ये भी हम बता देते हैं। कमल नयन जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग अदनान से, गुड मॉर्निंग टू यू। अनोखी आई हैं गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं। रेखा सिंह जी मुंबई से, आपका स्वागत है गोंडा एफएम पर। नागेश्वर मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, गुड मॉर्निंग अदनान से, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यस सोनिया तिवारी जी आपका भी स्वागत करते हैं। अनुष्का जी श्रावस्ती से, गुड मॉर्निंग आपको भी। सो आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून किया हुआ है फ्रिक्वेंसी से, आप सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, और आप सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से भी। सो भाई आप जहां से भी सुन रहे हैं और मॉर्निंग वाले शो में मौजूद हैं, आरजे अदनान आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी जो हमने बात बताई मैच्योरिटी पर, उसको लेकर के आपकी खुद की क्या राय है, आप खुद उस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके बताए जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई आपने अपनी राय को रखा है, आप जैसा मानते हैं जैसा समझते हैं आप बताते हैं। सो आपको क्या लगता है मैच्योरिटी क्या है, हर सवाल का जवाब हो या किस सवाल का जवाब देना है और किसका नहीं, ये आपको पता होना ज़रूरी हो। आपके हिसाब से आखिर मैच्योरिटी किसे कहा जाएगा, ज़रा सोचिए और फिर बताइए।

0: क्या बात है। सो बेनतहा जब मैंने सोचा तो मुझे भी लगा कि हाँ बात तो भाई सही है कि किन किन सवालों का जवाब देना है ये जानना मैच्योरिटी है, ना कि हर सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सच में बिल्कुल फालतू होती है, जिनका कोई मायने नहीं है। अब वही वाली बात है कि अगर हम बैठ के ये जानने ढूंढने लग जाए कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ हम करने वाले हैं उससे फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। बट अगर हम ये सोचें कि कोई हमको बता दे और क्या होगा लाइफ में, तो शायद वो चीज़ें हम उस पर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे जहन में आ जाती है, बस उसी तरह से हम रिएक्ट करने लगते हैं। और जब हमको कुछ भी नहीं दिखता है तो हम पूरी पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमको बेहतर बनाना होता है। शायद इसी तरह से कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इस बात को जो हमने आपसे पूछा था, इसका जवाब मुझे तो जो लगता है वो यही लगता है। फिलहाल आपको क्या लगता है ये आप अपने जहन में सोच लीजिए। एक बार बता दें वापस से कि हमने कहा था कि भाई मैच्योरिटी की पहचान क्या है, ये नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि आप जानते हो किस सवाल को बिना जवाब के छोड़ देना चाहिए, ये मैच्योरिटी है। और इस पर आपका क्या मानना है ये तो आप ज़रूर सोच लीजिएगा। फिलहाल ताबिश खान आ गए हैं, वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड यस, हमारी प्रीति जी ने बहराइच से कंटेंट भेजा है, तो आइए क्या लिखती हैं आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस शो को सुन रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई प्रीति जी हमारी लिखती हैं बहराइच से, खोटा सिक्का और खोटे लोग। खोटा सिक्का और खोटे लोग कभी किसी के हितैषी नहीं हो सकते। वो जिसके साथ रहते हैं उसी के आत्मा को अंदरूनी तक छलनी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। जिंदगी जो शेष है उसे विशेष बनाए, क्योंकि एक न एक दिन अवशेष में मिल जाना है। वाह, बड़ी फैक्ट वाली बात है जो आपने लिखा है, जिस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। इसको अगर हम हर जगह फंसने लग जाए, जिंदगी को हर जगह कसने लग जाए, तो शायद जिंदगी मजा खो देगी। इसीलिए कहते हैं कि अपने मेंटल पीस के लिए, अपने इत्मीनान के लिए आपको कूल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितना कूल रहेंगे आप उतना जी पाएंगे। और जो लोग नहीं चाहते कि आप कूल रहें, उनको भी दिक्कत तभी बढ़ेगी जब आप जितने कूल रहेंगे। क्योंकि सच में कूल रह करके देखा है, जिंदगी बहुत आराम से चलती, बहुत सुकून से चलती है। और शायद इसकी जब लत लग जाती है तो कहीं ना कहीं ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ में हो जाता है। बहरहाल, आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातों पर हमने चर्चाएं की, बहुत सारी बातें आपको बताई, काफ़ी कुछ आपको भी जानने को मिला। फिलहाल अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज का शो कैसा था हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फिलहाल बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में, अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के बाद रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर। और जाते जाते इस सॉन्ग को सुनिए। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, कुछ सवालों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हर चीज़ को नहीं जान सकते। बस इतना जान सकते हैं कि हर लम्हा जीना ज़रूर है आपको।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
10: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
11: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
10: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
11: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
10: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
12: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
13: की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
14: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी समता गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद एक बार एक और नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों की माला को पिरोया गया है, जिसमें श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर मधुर आवाज में है और उनका साथ देने आ रही हैं जिमी जी, श्वेता जी और समता। आज का यानी कि नया एपिसोड हमारा गांव की गूंज का विषय है नैहर। नैहर का मतलब होता है कि जब अपनी बेटी जो होती है वो अपनी माँ के घर जाती है। तो आइए हम सभी गीतों के साथ एक बार फिर से आनंद उठाते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे वाह, सब आ गए पर किरण दीदी नहीं आई, वो तो टाइम पर आ जाती हैं, आज कहाँ रह गई? जिमी जरा फोन लगा के पूछो तो।
15: ठीक है, पूछती हूँ समता जी। अरे रुको रुको, हम जानते हैं किरण दीदी कहाँ है, वह रूठ कर नैहर चली गई है।
16: ये नैहर कहाँ है, कौन सी जगह है ये?
14: अरे बुद्धू, नैहर का मतलब मायका अपनी मम्मी का घर होता है।
15: जीजा जी आजकल बाजार में समोसे बहुत खाने लगे हैं, किरण दीदी बस इसी बात से नैहर चली गई हैं।
16: मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं उनके गांव।
14: हाँ हाँ चलो, शीतल ठंडी हवा, पेड़ों की छाव का आनंद लेने, यहाँ तो एसी में भी गर्मी लग रही है।
15: भैया किरण दीदी नहीं है पर उनका लोकगीत।

0: किरण दीदी, कहाँ हो?
1: घर पर तो नहीं है। अरे बगिया से गाने की आवाज आ रही है, उधर चलते हैं।
2: देखो कितने लोग हैं, रेनू भाभी भी आई है दिल्ली से।
3: समता, नेहा बुआ भी आई है, यह तो मुंबई रहती है, वहाँ से इतनी गर्मी में आई है।
1: पहले गाना सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि हम लोग आ गए हैं।

नेहा बुआ, आपको याद है रेनू भाभी हम लोगों के लिए हमरी गुलाबी चुनरिया खूब गाती थी और आज ही कितना गुस्सा होती थी ना, आपको याद है?

0: अरे तुम लोग कब आए और कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
1: अरे हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं।
2: हम लोग रूठी दीदी को मनाने चले आए।
0: ये है हमारी गांव की गूंज की टीम, समता, श्वेता, जिम्मी। नमस्ते नमस्ते।
3: यहाँ आप मस्ती कर रही हैं और बेचारे जीजा जी सूख कर काटा होए जा रहे हैं आपकी याद में। किरण दीदी वह गाना पहली पठौनी ससुर मोरे आए सबको सुना दीजिए ना।

0: थैंक यू रेनू भाभी, लो सिकंजी पियो और ताजा खोया खाओ।
1: किरण दीदी, ये सारे बच्चे कितने शौक से शिकंजे पी रहे हैं, जबकि रहते मुंबई और दिल्ली में हैं।
2: डिम्पी, सौम्या, गोलू सब इतने खुश हैं, सुबह सुबह झील में जाकर तैरते हैं, गिल्ली डंडा खेलना सीखा इन्होंने, और आंधी में दौड़ दौड़ कर अमिया बटोरा है। शहरों में तो खुली जगह के लिए हम लोग तरस जाते हैं।
0: नेहा बुआ बता रही है कि दादी को सांस की तकलीफ है, रोज सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता है, पर जब से यहाँ आई है एक बार भी उन्होंने इनहेलर यूज नहीं किया है।
3: बच्चा पार्टी ने हमको भी अमिया खाने को दी, लो तुम लोग भी खा लो। पर प्लीज प्लीज प्लीज किरण दी, बगिया माँ छैया अपार हो गाना सुना दीजिए ना।

0: लो देखो, रूठी दीदी को मनाने जीजा जी भी आ गए, पर किरण दीदी ऐसे थोड़ी ही जाएंगी।
1: अरे क्यों तंग कर रहे हो इनको?
2: लो जी, हम तो आपका साइड ले रहे थे और आप हैं कि आपने पाला ही बदल दिया।
1: शर्त तो माननी पड़ेगी, पर पहले पानी तो पूछ लो। लीजिए, शिकंजी पीजिए।

0: कभी ना बात, आप सॉरी बोलिए जीजा जी को और कहिए दीदी की हर बात मानेंगे हम।
1: किरण दीदी की ननद रानी अरुणी भी आई है भाभी को मनाने।
2: ननद रानी बहुत दिनों बाद आई है। किरण दीदी, ननद जी के लिए कुछ गाना हो जाए।

0: यह क्या खुसुर खुसुर हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है?
1: अरे दीदी कान छोड़िए, बताते हैं। आप सबको गांव घूमने का बहुत मन था ना? अरुणी को कच्ची अमिया खाना था और जीजा जी को तो खेत के मुलायम भुट्टे।
2: हमको गन्ने खाने का और जिमी को बरे। अरे वो देखो दादी बरे ले आई।
3: सॉरी किरण दीदी, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया था, पर यहाँ आकर रेनू भाभी और नेहा बुआ से भी मिल लिए।
2: दीदी गुस्सा मत होइए, तो एक बात बोले, जीजा जी बता रहे थे कि जब आप शादी के बाद आई है ना, तब से दो गाने आप बहुत सुनाती थी, तो प्लीज वो गाने आज सुना दीजिए।

0: जिमी देख देख देख, अरुणी तुम भी आओ, देखो कैसे तालाब में भैंस और बच्चे एक साथ नहा रहे हैं।
1: किरण दीदी अब तो मुस्कुरा दो, अरुणी बोल रही है, जो गाना है वो सुना दीजिए।

0: चलो चलो, रात हो रही है, तुम सबकी तो शहर पहुँच कर खबर लेंगे और आप और अरुणी को तो खाना ही नहीं देंगे। चलिए बताते हैं।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: हुक्कई से खेलन जइबो सा।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत कर रहे हैं हम आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगनी में, जिसको लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूं आपकी अपनी आर जे उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। मौसम का बदलाव देखते हुए, यानी कि जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के साथ हल्की हल्की धूप निकल रही है और इस मौसम में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, स्पेशली वो बीमारियां जो पानी से होती हैं या फिर जो मच्छरों के कारण होती हैं। और आज के अपने स्वास्थ्य संगनी में हम बात करने जा रहे हैं उसी बीमारी में से एक, जो आजकल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं डेंगू। 2024 के बीच तक WHO को 7.6 मिलियन से अधिक डेंगू के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 3.4 मिलियन मामलों की पुष्टि की गई है और इनमें ही 16,000 से अधिक मामले गंभीर, प्लस 3,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डेंगू जो कि एक गंभीर बीमारी है और अगर सही वक्त पे इलाज ना मिले तो इंसान की मौत भी हो जाती है। मच्छरों से होने वाली ये बीमारी जो बहुत ज्यादा आम है, लेकिन इसके सिम्टम्स कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है ये नॉर्मल बुखार है, जुखाम है, ठंड लग रही है और पैरासीटामोल खाते रहते हैं जब तक प्लेटलेट डाउन नहीं हो जाती। तो डेंगू क्या होता है, किससे होता है, क्या सिर्फ पानी के भराव से होता है और डेंगू को लेकर ऐसी बहुत सारी मिथ बातें आपके पास होंगी जो आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूर, जिसमें कई लोग आपको घरेलू उपचार बताते हैं कि डेंगू हो जाए तो ये खाना चाहिए, डेंगू हो जाए तो वो खाना चाहिए, जिससे और भी ये समस्या गंभीर हो जाती है, बीमारी गंभीर हो जाती है। डॉक्टर के पास कब जाएं, क्या लक्षण होते हैं डेंगू के और डेंगू क्या होता है, हम आपको बताते हैं आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगनी, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट एनजीओ रेडियो कैनसली की खूबसूरत पहल के तहत। आज आपकी आर्जुनदी बात करेगी डेंगू पर। स्टे ट्यून्ड।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहाँ पढ़ाई के

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खास पेशकश को आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे डेंगू को। डेंगू बुखार हमेशा से एक ध्यान खींचने का मामला रहा है और एक जानलेवा मच्छरों के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी आपकी जान भी ले सकती है अगर आप सही वक्त पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जानलेवा साबित होती है। और ऐसी बहुत सारी मौतें होती हैं इस मौसम में, स्पेशली जब बारिश होती है, धूप निकलती है, पानी भरता है और आसपास मच्छर बहुत ज्यादा पनपने लग जाते हैं, तब डेंगू भी बढ़ता है। ये बीमारी डेंगू वायरस द्वारा प्रसारित होती है, जिसे एडीज मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने का मौका मिलता है। डेंगू खासकर ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं डेंगू फैलता कैसे है, डेंगू बुखार की प्रमुखता क्या क्या होती है। तो ऐसे मच्छरों के काटने के माध्यम से प्रसारित होता है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं, जिनको मुख्यतः एडीज मच्छर कहा जाता है। वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और इसके बाद ही जब आपको काटता है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में उस वायरस को ट्रांसफर करता है और ये आपके बॉडी में डिवाइड होकर, आपके सेल्स में डिवाइड होकर फैलना शुरू करता है। चलिए आपको बता देते हैं कि डेंगू होने में कितना वक्त लगता है। अगर आपको किसी ऐसे मच्छर ने काटा है जिसके अंदर डेंगू वायरस मौजूद है, तो आपको 8 से 12 दिन में इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों के खून में डेंगू का वायरस होता है, उन्हें काटने से मच्छर संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपको डेंगू नहीं है और आपके फ्रेंड को डेंगू है और सेम मच्छर ने उसको काटा है और उसके बाद उसने आपको काटा है, यानी कि अगर आपको, आपके दोस्त को किसी मच्छर ने काटा है और वही मच्छर आपको आके भी काट रहा है, तो ये डेंगू आप तक फैल सकता है। मच्छर कैरी करता है उस खून को और वही खून यानी वही वायरस आपके बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से आपको भी डेंगू हो सकता है। किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होने में 2 दिन पहले बुखार कम होना या ज्यादा होना हो सकता है। इसी के अलावा आपको ठंड लग सकती है, चिल्स आ सकते हैं। डेंगू बुखार के लक्षण की अगर बात करें, तो अचानक बहुत तेज बुखार आता है जो 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। अगर अचानक से आपको बहुत तेज बुखार आने लगा है, स्पेशली शाम के वक्त यानी कि इवनिंग होते ही आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, प्लस अगर आपको ठंड लग रही है, 3-4 रजाई भी ओढ़ ले रहे हैं उसके बाद भी ठंड लग रही है, तो हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं मलेरिया या फिर डेंगू का ही लक्षण बता रहा हो। इसके अलावा गंभीर सर दर्द होना, अगर आपको बुखार के साथ साथ सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण होता है डेंगू होने का। साथ ही साथ जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, यानी कि आपके पैरों में, आपकी मांसपेशियों में, हाथों में, जोड़ों में, कंधों में, कहीं भी अगर दर्द होता है, चलने में आपको थकान महसूस हो रही है, तो ये वो सारे लक्षण हैं जो इस चीज का दावा करते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है। इसके अलावा आंखों के पीछे दर्द होना, जी हाँ, कई लोगों को आंखों के पीछे दर्द नॉर्मली भी होता है, ये उनको भी होता है जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी होती हैं, यानी कि जो दूर तक नहीं देख पाते, जो आंखें बहुत गड़ाकर देखते हैं, अक्सर उनके साथ भी ये किस्सा होता है। लेकिन अगर आपको बुखार भी आ रहा है, सर में दर्द है, जोड़ों में भी दर्द है, चलने में थकान हो रही है, प्लस आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, आपको आंखों के पीछे दर्द महसूस हो रहा है, तो ये बताता है कि आपको डेंगू हो सकता है। सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, इसके अलावा आपका जी मिचलाता है, यानी कि आपको उल्टी करने का मन करता है बट आपको उल्टी आ नहीं रही होती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो या कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि उल्टी हो जाएगी और पूरा दिन आपका उसी में जाता है, बट आपको उल्टी होती नहीं। और ऐसा डेंगू में भी होता है, जी मचलाता रहता है लेकिन उल्टी नहीं होती, और कई बार आपको उल्टी हो भी सकती है।

0: मतलब सब लोगों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, कुछ के बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ का ऐसा होता है कि भैया जी मिचलाने के बाद उल्टी आ सकती है, कुछ का सिर्फ जी मचलाता है, और अगर इसके साथ साथ आपको उल्टी भी आ रही है और आपका उल्टी करने का मन करता है तो हाँ, ये आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आपको डेंगू हो चुका है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा खुजली महसूस हो रही है, अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है कहीं भी और आप लगातार खुजलाने के बाद भी वो शांत नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि आपको डेंगू है। इसके अलावा थकान का होना, जी हाँ, आप आमतौर पे जो काम करते हैं अगर उसमें अचानक से बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, आप खाना पीना सही तरीके से खा रहे हैं, आप पानी सही तरीके से पी रहे हैं, हर एक तरह का पोषण आप सही तरीके से ले रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा के काम करने में आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है और अगर आपको लगता है कि एक दो दिन होकर ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3-4 दिन तक लगातार चल रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि ये डेंगू के लक्षण होते हैं। तो डेंगू के लक्षण में अचानक तेज बुखार आना, गंभीर सर में दर्द होना, जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, जी मिचलाना, उल्टी करना, खुजली और थकान, आमतौर पर ये वो सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसान या फिर एक व्यक्ति के अंदर डेंगू हो चुका है। आमतौर पर जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनको डेंगू का बुखार आने में लगभग 10 दिन या उसके अंदर का वक्त लगता है। हालांकि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है उनके लक्षण इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, यानी कि अगर आप कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले हैं, इम्यून सिस्टम वाले हैं, तो हो सकता है आपकी जो सिम्टम्स हो वो इससे भी ज्यादा खराब हो, उससे भी ज्यादा बदतर हो, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा जानलेवा भी हो सकता है अगर आप लगातार पैरासीटामोल खाकर, कॉम्बीफ्लाम, एबुजैसिक तरह की दवाइयों को खाने के बाद सोचते हैं कि आपका डेंगू ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि डेंगू आपकी प्लेटलेट्स को कम करता है, बहुत तेजी से कम करता है, और अगर आपकी प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होती है तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा हाँ, ये आप बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको नजर आ सकते हैं जब आपका बुखार उतर जाता है आमतौर पर 1 से 2 दिन में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं जो बताते हैं कि हाँ आपको डेंगू है। मसूड़ों या नाक से खून का आना, मल पेशाब या उल्टी में खून की मौजूदगी, त्वचा के नीचे खून का बहाव, जो खरोच आपको ऊपर तक दिखाई दे सकती है, गंभीर पेट में दर्द हो सकता है, लगातार उल्टियां आती हैं, आप पानी पीते हैं आपको उल्टी आ जाती है, आप कुछ खाते हैं आपको उल्टी आ जाती है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि लगातार उल्टियां आपको हो रही हैं, गंभीर पेट में दर्द है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में पानी की कमी भी मौजूद हो जाती है, आप डिहाइड्रेट रहते हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकता है, सुस्ती व कंफ्यूजन, ठंड और चिपचिपे हाथ पैर, आपको बहुत ठंडा भी लग सकता है, प्लस आपके हाथ पैर बहुत ठंडे लग सकते हैं, बहुत तेजी से आपका अगर वजन कम हो रहा है, बेचैनी हो रही है, थकान हो रही है, तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं, वो सारे लक्षण हैं जो इस चीज का दावा करते हैं कि हाँ आपको डेंगू है। तो डेंगू की पहचान कैसे करें, चलिए आपको बता दें कि डेंगू की पहचान करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसमें डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जाते हैं जो आपको डॉक्टर्स या फिर किसी भी पैथोलॉजी में, डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट के अंदर क्या होता है ये भी हम आपको बता दें, ये टेस्ट डेंगू वायरस के NS1 अंश की जाँच करता है, डेंगू के लक्षण के पहले सप्ताह के दौरान ये टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा IgM एंटीबॉडी टेस्ट, ये जांच कुछ एंटीबॉडीज की तलाश करता है जो शरीर में डेंगू बुखार होने पर ही बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। इसके अलावा IgG एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है, RT-PCR टेस्ट आपके लिए करवाया जा सकता है, इसके अलावा LFT और RFT का भी टेस्ट करवा सकते हैं। LFT जो आपके लिवर के लिए कराया जाता है, LFT में सीरम होता है जिसका नाम है बेलारूबिन, इसकी जांच करी जाती है और इससे पता करते हैं कि आपके शरीर में डेंगू है या नहीं है। आपको बता दें बेलरूबिन की मात्रा ज्यादा होने पर ही आपको ज्वाइंडिस के सिम्टम यानी कि पीलिया भी नजर आती है। RFT हो सकता है, इसके बाद चेस्ट एक्सरे या फिर ECG का टेस्ट आपसे करवाया जा सकता है। ये वो सारे टेस्ट हैं जो आपको डॉक्टर्स जरूर सजेस्ट करेंगे अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आते हैं, बुखार, सर में दर्द, थकान, बेचैनी, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ठंडे हाथ पैर, बहुत ज्यादा ठंड लगना, कभी बदना, तो आपको डॉक्टर के पास सलाह जरूर लेने जाना चाहिए, पैरासीटामोल खा के काम नहीं चलाना चाहिए, खुद को डॉक्टर ना खुद को डॉक्टर ना समझे, फार्मेसी से दवा लाकर अपना काम ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सजेशन लें और वो आपको कुछ इन टेस्ट में से जरूर एक बताएंगे करवाने के लिए, जो आपके किसी भी पैथोलॉजी में आप करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको डेंगू है कि नहीं है। चलिए इसके अलावा बात करेंगे कि डेंगू का इलाज कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी। मैं हूं आपकी अपनी आरजे उन्नति और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाली कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूँ आपकी अपनी आरुणी और सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को जो कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञान असली की है। आपने ट्यून कर लिया 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आज हम बात कर रहे हैं इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में होने वाली सबसे ज्यादा बीमारियों में से शामिल एक बीमारी, इसका नाम है डेंगू, जिसे हम डेंगू भी कहते हैं। अभी तक हमने जाना डेंगू कैसे होता है, किससे होता है, लेकिन अब बात करेंगे कि डेंगू से बचना कैसे है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो है हाइड्रेशन। डेंगू बुखार से निपटने के दौरान हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि आपको लगातार पानी पीने की जरूरत होती है। बहुत सारे तरल पदार्थ जिसमें पानी, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं, इसका आप सेवन कर सकते हैं, पी सकते हैं। ये शरीर में खोए हुए तरल पदार्थ को भरने में मदद करता है, वायरस के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपका सपोर्ट करता है। अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, वैसे पानी आपको गर्मियों में भी पीना चाहिए, जो कि आप नहीं पी रहे हैं, 2 से 3 लीटर पानी आपको पर डे पीना चाहिए। प्लस अगर आपको किसी तरह की बीमारी है और आपकी मेडिसिन चल रही है तो और भी ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको अंदर से डिहाइड्रेट कर देती हैं। आप थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, चक्कर महसूस करते हैं और कभी कभार पानी कम होने की वजह से आपको लगातार उल्टियां भी आ रही होती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने बॉडी में यानी अपने शरीर के अंदर पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में रखें और सिर्फ पानी ही ना पिए, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं या बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से कम होते हैं, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस ऐसी चीजें आती हैं। उन मिनरल्स को भी ध्यान में रखते हुए ORS ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और अगर आप सादा पानी पी रहे हैं तो गर्म करके उसमें एक चुटकी पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि गुलाबी नमक भी डाल सकते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करने में मदद करेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरी चीज की, जो बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसको आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है आराम करना। भरपूर मात्रा में आराम करके आप अपने शरीर की मरम्मत करते हैं। रात में सही वक्त पर अगर आप सोते हैं, आप भरपूर मात्रा में नींद लेते हैं, तो आपके शरीर की मदद होती है, वो अंदर से खुद को ठीक करने में काम करता है। लेकिन अगर आप भरपूर मात्रा में आराम नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये आपको और भी ज्यादा थका देता है और भी ज्यादा बीमार कर देता है। तो भले ही आप बीमार ना हो तो भी 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, और अगर आप बीमार हैं, डेंगू से लड़ रहे हैं या किसी ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में आराम लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद को आराम दें, और अगर आपके घर में किसी को डेंगू है तो आप उसे भी आराम दें। इसके अलावा दर्द निवारक दवाइयां आपको दी जाती हैं। डेंगू बुखार या फिर तेज बुखार और बेचैनी पैदा कर सकता है, इसके लिए आपको पैरासीटामोल यानी कि ओवर द काउंटर दवाई दी जाती हैं, जो बुखार को कम करने, बेचैनी को कम करने में मदद करती है। लेकिन अगर आप डेंगू की दवा ले रहे हैं या फिर आपको डेंगू हो रखा है, तो एस्पिरिन जैसी दवाइयों से दूर रहिएगा, क्योंकि एस्पिरिन खून को पतला करने में मदद करता है। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या कोई आपके घर में हार्ट पेशेंट है, तो आप उसके लिए एस्पिरिन अपने घर में जरूर रखें। यह मदद करता है हार्ट अटैक से बचने के लिए। लेकिन अगर आपको डेंगू हो गया है तो एस्पिरिन जैसी दवाइयों से आपको दूर रहने की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डेंगू बुखार में मतली आना, उल्टी होना, दस्त जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए कोशिश करें लगातार इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें, प्लस किसी न किसी को अपने साथ उस वक्त जरूर मौजूद रखें। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी न किसी को हमेशा अपने साथ रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डेंगू बुखार के जो जोखिम कारक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर कहाँ पर ज्यादा है। सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर वहां पर सबसे ज्यादा आता है जहां मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं। ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थान पर यात्रा करने से बचें इस मौसम में जहां मच्छर बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ओडोमास या फिर ऐसी कुछ दवाइयां जो मच्छरों को दूर भगाती हैं अपने ऊपर जरूर लगाएं। कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई रोल ऑन जरूर इस्तेमाल करें ताकि मच्छर आपको ना काटे और आपसे दूर रहें। मच्छरों के काटने से बचिए। प्लस हम आपको बता दें कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी यानी साफ रुके हुए पानी में पनपता है, तो अगर आपके घर में कहीं पानी का भराव है तो उसको
खाली कर दें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेंगू का मच्छर ही, बाकी और दूसरे मच्छर यानी कि मलेरिया का मच्छर भी पानी में ही पनपता है। तो आसपास इस मौसम में जहां पानी भर जाता है, स्पेशली हमारे छतों पर टीन में रखा हुआ कोई बॉक्स रखा है, कोई डिब्बा रखा है जहां पानी भर चुका है, तो कोशिश करें उस पानी को फेंक दें, कूलर का पानी निकाल दें, उसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें, गमलों के पानी को निकाल दें, हर दिन फ्रेश रखें, पानी ढक कर रखें, क्योंकि यहीं पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं। मच्छरों के संपर्क में आने से बचें। अगर आप बहुत ज्यादा मच्छरों के संपर्क में आते हैं तो आपको डेंगू वायरस हो सकता है। इसके अलावा एक और वायरस है जिसको हम मलेरिया कहते हैं, वो हो सकता है। डेंगू मच्छर की पहचान सिर्फ साफ पानी से ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर निशानों से भी होती है। डेंगू मच्छर जो होता है वो सफेद और व्हाइट कलर का होता है, उसके पैरों में भी ये स्ट्रिप्स होती हैं। लेकिन अब आप मच्छरों के साथ स्टंट ना करें देखकर कहीं उसकी टांगे सफेद हैं कि नहीं है। सिंपल सी बात है, मच्छरों से दूर रहें। मच्छरों पर नियंत्रण का अभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इस वक्त बारिश हो रही है, गलियों में पानी हो रहा है, गलियों में पानी भर रहा है, कीचड़ बहुत ज्यादा हो रही है और इसी दौरान मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं। तो अगर आपकी गली में ऐसा कुछ है तो आप नगर पालिका से सहायता ले सकते हैं। वो आपके गली में आकर मच्छर भगाने वाली दवा का स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपके मोहल्ले आपकी गली में मच्छर कम पनपेंगे। इसके अलावा अगर आपको पहले भी कभी डेंगू हो चुका है तो हो सकता है आपको दोबारा से डेंगू हो जाए, तो इसका खास ख्याल रखिएगा, मच्छरों से दूर रहिए। और अगर आप घर के अंदर रहते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, नगर पालिका की मदद लें, काला हिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा गुड नाइट ऑल आउट जैसी जो भी चीजें आती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओडोमास का इस्तेमाल करें। बच्चों को स्पेशली बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि छोटे बच्चों में डेंगू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उनकी इम्यून सिस्टम बड़े लोगों की तरह नहीं होती है जिसके कारण वो वायरस के संपर्क में जल्दी आ जाते हैं। फिलहाल आइए लेते छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं और बताते हैं कि डेंगू हो जाने पर आपको क्या चीजें खानी चाहिए और किससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आशंति मौजूद है। कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना स्वास्थ्य संगनी। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी अर्जुनती और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। अभी तक हमने बात की डेंगू की और अब हम बात करेंगे कि डेंगू होने पर आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना होता है, तो हाइड्रेशन के लिए पानी, नारियल पानी प्लस आप हर्बल चाय ले सकते हैं जिसमें कैमोमाइल टी, अदरक पुदीना जैसी चाय शामिल होती है। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ में आप विटामिन सी जैसी चीजें ले सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर फल जिसमें संतरे, पपीता, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, विटामिन सी से भरपूर जितने भी फल होते हैं आप उन्हें ले सकते हैं जिसमें नींबू, आंवला, करौंदा भी शामिल रहता है। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा आप पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं जिसमें पालक, केला, ब्रोकली विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप मूली के पत्ते भी खा सकते हैं। बेरीज में आप ब्लूबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी और एंटीऑक्सीडेंट वाली बेरीज खा सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में आपकी मदद करती है। लहसुन और अदरक आप शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन स्रोत में आप पनीर, दही, दूध, सोया, मिक्स दाल, राजमा, छोले, चना, छेना, सहजन, सत्तू और टोफू ले सकते हैं, बट वही लीजिए जो आपके डाइजेशन पर आपको हल्का महसूस हो। बहुत ज्यादा भारी खाना खाने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखिएगा। प्रोटीन आपके शरीर को ठीक करने और आपके शरीर में आई कमजोरी को ठीक करने में मदद करता है, प्लस आपके शरीर की मरम्मत करने में मदद करता है। तो प्रोटीन को अपने आहार में जरूर शामिल कीजिए। और प्रोटीन सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अभी हमारे बीच में। अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी भैया आपको अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना चाहिए। हमारे भारतीय खाने में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। 12 से 13 ग्राम प्रोटीन दिन का होता है, बट आपको प्रोटीन अपने वजन के अनुसार लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है और आपके डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आपको प्रोटीन वाली चीजें कम लेनी है, तो आप अपनी प्रोटीन की मात्रा अपने वजन के अनुसार जरूर लें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज आप अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन में शाकाहारी में पनीर, दूध, दही, सोया, मिक्स दाल, ये सारी चीजें शामिल होती हैं जो आप ले सकते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आप दूध से बनी चीजें हजम नहीं कर पाते हैं, तो आप सोया दाल, राजमा, छोले, चना, सहजन, सत्तू और टोफू ले सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं यानी कि आप नॉन वेज खा सकते हैं, तो चिकन, मटन, मछली और अंडा आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें हम कि अगर आपके प्लेटलेट बढ़ाने वाली बात की जाए, तो आप विटामिन ए से भरपूर मात्रा में सब्जियां ले सकते हैं जिसमें कद्दू, गाजर, चुकंदर, दूध और पपीता शामिल होता है। विटामिन सी ले सकते हैं आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी। जिंक के लिए आप साबुत अनाज ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, या आपको जिंक की टैबलेट दी जा सकती है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करेंगी, और साथ ही अगर आप प्रोटीन भी शामिल करते हैं तो ये और भी ज्यादा आपकी मदद करता है। अनार आप खा सकते हैं। आयरन की भरपूर मात्रा अनार में मौजूद होती है, तो ये आपके आयरन को बढ़ाने में मदद करता है। कद्दू, गाजर और पालक आप साथ में ले सकते हैं। चुकंदर और गाजर खा सकते हैं। प्लस अगर आपको थकान बहुत ज्यादा हो रही है, तो थकान से लड़ने के लिए आप अपनी कैलोरीज और प्रोटीन के अलावा गुड फैट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो आपको घी, मक्खन, पनीर और खाना पकाने वाले तेल या फिर एवोकाडो जैसे फलों में मौजूद मिलता है। गुड फैट आपके दिल को भी सपोर्ट करता है, आपको एनर्जी देता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, डालडा जैसी चीजें खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, तो ये आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है। तो खाने पीने के मामलों में जंक फूड खाना मना है, यानी कि बाहर से आप फास्ट फूड नहीं खाने वाले हैं, जैसे बर्गर, फ्राइज या फिर कोई अन्य फास्ट फूड आते हैं वो आपको नहीं खाने हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ जिसमें डोनट, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, ऐसी चीजें नहीं लेनी है। अगर आप चिकन ले भी रहे हैं डेंगू के वक्त में, तो कोशिश करें आप चिकन सूप लें जिसमें तेल की मात्रा कम रखें। बहुत ज्यादा भारी मांस नहीं खाना है। रेड मीट से आपको थोड़ा दूर रहना है। मसालेदार खाना नहीं खाना है जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला आता है, वो आपको नहीं खाना है। इसके अलावा आपको कैफीन से दूर रहना है, बहुत ज्यादा शुगर से दूर रहना है जिसमें कॉफी और चाय, सोडा, इन सारी चीजों से दूर रहिएगा। प्लस शराब का सेवन बंद कर दीजिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी है। आपको वही चीजें खानी है जो मदर नेचर में मौजूद है, यानी कि जो प्रकृति आपको देती है, जिसमें फल सब्जियां आती हैं, जिसमें दालें आती हैं, जिसमें अनाज आता है, साबुत अनाज आता है। लेकिन अगर आप वो चीजें खा रहे हैं जो बाहर मार्केट में मिल रही हैं, जिनका स्वाद बहुत अच्छा होता है प्लस जिनकी स्मेल बहुत अच्छी है, और आप उनकी तरफ जाते हैं, तो आपके सेहत को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मॉनसून के सीजन में कोशिश करें कि बाहर से चीजें ना खाएं, टिक्की समोसे चाट पकौड़े ज्यादा ना खाएं। इससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, प्लस कॉलरा भी हो सकता है, हैजा हो सकता है, क्योंकि बाहर इस वक्त बैक्टीरिया वायरस की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से पनप रहे हैं, और उड़ती हुई धूल, भीगे हुए चीजों पर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा नजर आता है। तो उनकी खाने की कोशिश ना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये तो था प्रोग्राम आज का, जिसमें हमने बात की डेंगू के बारे में, जाना क्या होता है डेंगू, कैसे होता है, कैसे बचाव करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसी के साथ घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान में नहीं आ पाती है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं को कमजोरी, थकान या चक्कर आना, इन सभी लक्षणों के साथ तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए, और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। आप दोनों का स्वागत है। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव का, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र, वो कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद को कुपोषित और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं।
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आ जाते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा तो ये केवल थकान नहीं हो सकती है, या आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार वो गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है। वहाँ खून की जाँच होती है, पता चलता है कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवाना चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच क्या है?
1: और पूरी तरह गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से या 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.0 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अगला, IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरत विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से ही बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण है।
0: किस तरह का भोजन?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता का ध्यान दे, खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिलना चाहिए।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या चीज?
1: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी होने वाला एनीमिया पाया गया है और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो या आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते।

0: IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ENSC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है।
2: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC की जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IVFCM की भूमिका पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है, बच्चे बड़े

0: बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरणनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे
1: अंशिका।
0: हां जी, और आ गए हैं हम दोनों लोग आपके पसंदीदा शो जो कि दो सहेलियों से बनके होता है, जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
0: भाई कहते हैं ना कि सहेलियों में जब तक नोकझोंक नहीं होगी, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होगी, आपके घर क्या बना है थोड़ा सा दो ना, या फिर चीनी चाय पत्ती कम हो जाए अगर हम मांगने जाते हैं, और अगर ये चीजें नहीं हो ना तो सहेली वाला फिर मजा ही कहाँ आ जाता है, क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल भाई, सहेलियों में तकरार, प्यार लेना देना करना कहना सब बराबर होना चाहिए।
0: और कहा जाता है कि घंटों घंटों बातें करना, अगर बैठ करके हम लोग बातें करते हैं और घंटों कैसे बीत जाते हैं ना, ये भी एक सहेलियों में ही ये बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं कि वो ताकत होती है। मैंने एक बारी कहीं सुना था कि औरतों में चार सहेलियां थी और वो बैठी हुई थी, और उनमें जो पुरुष थे उनके घर के, उनमें एक शर्त लगी कि हम आपसे शर्त लगाते हैं कि, मतलब वो उन लोगों ने आपस में लगाई थी शर्त, पुरुषों ने, कि हम लोग आपस में शर्त लगाते हैं और तुम लोग देखना ये चार जो औरतें बैठी हैं ना, सहेलियां बैठी हैं, ये आपस में बात नहीं करेंगी आज। ठीक है,
1: ओके,
0: हाँ आपस में बात ये लोग नहीं करेंगे। अब भाई शर्त तो उन लोगों में लगी थी, चार दोस्त थे इधर बैठे हुए थे और उन्हीं की वाइफ, सब लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे। अब एक घंटा बीता क्योंकि उनकी वाइफ को पता था कि जो एंड तक अगर जो जीतेगा जो पेयर उसको हम लोग पार्टी देंगे।
1: ओके,
0: अब भैया क्या हुआ, चार के कहते हैं कि चार औरतें बैठी हों और बिना बोले हुए, आपको इमेजिनेशन है इस चीज का कि वो बिना बोले रह सकती हैं?
1: बिल्कुल नहीं।
0: एक दूसरे को इशारा कर करके, भाई चलो 45 मिनट बीत गया, एक दूसरे को इशारा कर रही है कि भाई, मतलब उलझन हो रही थी कि कैसे बोले। आखिर के 5 मिनट में उन चारों ने हाथ पकड़ा और जोर से ऊपर हाथ ऊपर करके चारों ने बोला कि हम तो जीत गए। और इसका मतलब है कि वो सब लोग हार चुके थे, और उनके हस्बैंड जब आए उन्होंने ये बोला कि तुम चारों लोग जीती नहीं हो, तुम चारों लोग हार गई हो, क्योंकि शर्त थी कि एक घंटे तक आप लोग बोल नहीं सकते हैं और 5 मिनट पहले ही आप सब ने बोल दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब महिलाएं साथ में बैठी हों, जब चार सहेलियां बैठी हों, तो वो बिना बोले नहीं रह सकती हैं। ये जो कहानी आपको बताई, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, समझ में आया?
1: जी मैम।
0: तो भाई इसीलिए कहा जाता है कि जब चार यार यानी कि चार सहेलियां मिल जाए कहीं पे, तो वहां चार चांद होता ही होता है। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम लेकर के हम आते हैं, क्योंकि आज है हमारा ब्यूटीफुल सा वेनेसडे, एंड वेनेसडे के दिन हम लेकर के आते हैं अपना विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम, यानी कि महिलाओं को संपूर्ण रूप से समर्पित। तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं इस प्यारे से मौसम को और प्यारी सी दोपहर में, एक साथ एक ही फ्रेम में,
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हम, और चलिए भाई बातें तो हैं बहुत ही प्यारी, क्योंकि अभी मैम ने जो स्टोरी सुनाई ना, वो सुन के यही लग रहा था कि मतलब इसे को कहते हैं कि सहेलियां जो होती हैं वो आपकी लाइफ की कहीं ना कहीं जान होती हैं। शॉपिंग करनी हो, खाने जाना हो, कुछ भी करना हो, आपको कहीं अगर खाली बैठना भी हो ना, अगर हम कभी बैठते भी हैं तो हम सीधा हमारी फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, दोस्त को, और बस शुरू हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: तो ऐसी दोस्ती मीठी सी होती है, प्यारी सी होती है, जिसकी खनक हर किसी की लाइफ में बहुत जरूरी है।
0: एग्जैक्टली। और कहा जाता है ना कि जिस जिंदगी में, जिस लोगों की जिंदगी में अगर दोस्ती नहीं है, वो किसी से भी हो सकती है, आप मेल से फीमेल से। देखो दोस्ती करना दिल से करना, और दिल वाली जो दोस्ती होती है ना, वो कभी भी जाया नहीं होती है, और वो उस दोस्ती का ना मतलब नहीं होता है, वो बेमतलब की दोस्ती होती है
1: जी।
0: और जब बेमतलब की दोस्ती हो ना, तो उसमें अहम, क्रोध और लालच, ये सब चीजें नहीं होती है। आज कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं ना हम।
1: यस मैम,
0: मेरे मुंह से कुछ अच्छा अच्छा निकल रहा है।
1: वो अच्छा अच्छे का अच्छा सा कारण है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले।
0: चलते हैं पोयम की ओर हम।
1: बस यही था।
0: चलते हैं हम पोयम की ओर, वरना ये
1: चलना
0: ना
1: है।
0: ये मेरा टॉप सीक्रेट, कभी ये सबके सामने रिवील न कर दे, मुझे तो यही डर लगता है। देखो
1: आप भरोसा करें,
0: देखो मेरी हाथ की मेहंदी।
1: हाँ देखी मैंने,
0: और अभी अभी आपने कुछ महान लोगों के मुंह से सुनी लिया है। अब तो मेरा दिल और धक धक कर रहा
1: है, जो होने वाला है वो हमने आज ही सुन लिया।
0: तो मेरा तो दिल वैसे ही धक धक धक धक कर रहा है,
1: वो तो मैंने आपके फेस को देख के पढ़ लिया था कि धक धक धक धक।
0: मैं शर्मा रही थी ना, मैं शाय कर रही थी ना।
1: आई नो वेरी वेल।
0: चलें रास्ता दें प्लीज,
1: रास्ता दें। तो भाई आज बात हुई दोस्ती की, चलिए कुछ दो लाइनें कहने की कोशिश करते हैं।
0: हाँ जी,
1: हमारी और आपकी दोस्ती, हमारी और आपकी दोस्ती हमारे दिल में बसती है, हमारी और आपकी दोस्ती हमारे दिल में बसती है, और ये सभी को राज भी बहुत आती है। तो चलिए कुछ इसी दोस्ती की खनक के साथ चलते हैं और आज करते हैं बात, सुनते हैं एक प्यारी सी पोयम की शुरुआत आरजे समता के साथ।
0: ओके, वाव, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम डायरी बनाओ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी है ना अभी तक।
1: सुनिए,
0: मतलब रोज एक शायरी जो आप मेरे लिए बनाते हो, मेरे लिए लिखते हो, वो भी आपको लिखनी है।
1: ओके,
0: और एक शाम के समय जब आप खाली बैठो तो एक बहुत ही प्यारी सी। और मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप ऐसी शायरियां बहुत सारी बना के मुझे दोगे ना, तो मैं आपकी बुक को जरूर से उसको मैं क्या कहते हैं फेमस कराऊंगी।
1: अरे थैंक यू मैम, आपकी जरा
0: इतनी अच्छा आप बोलते हो कि मैं आपको क्या बताऊं।
1: थैंक यू।
0: चलो चलें
1: चलें।
0: तो आज की जो प्यारी सी पोयम मैं लेके आई हूँ वो ऑब्वियस सी बात है कि आज हमारी खूबसूरत सी एक महिला की ओर है, और हर एक महिला अपने में खूबसूरत होती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि अमिताभ का एक गाना याद है मुझे कि किसी की आंखें खूबसूरत होती हैं, किसी के बाल खूबसूरत होते हैं, किसी के गाल खूबसूरत होते हैं, तो किसी की चाल खूबसूरत होती है। क्योंकि उस ईश्वर ने हर एक महिला में कुछ ना कुछ सुंदर चीजें डाली ही डाली हैं,
1: और कोई पूरा का पूरा खूबसूरत होता है।
0: कम टू द पॉइंट।
1: यस,
0: चलो
1: सुनाइए। बिल्कुल।
0: चांदनी की ये प्यारी सी किरणें रात के इस अंधेरे में मुस्कुराती हैं। यादें तुम्हारी जो दिल के करीब हैं, मीठी सी खुशबू हर पल बिखेरती है। धड़कनों की ये अनकहीं सी बातें सिर्फ तुम्हारा ही नाम गुनगुनाती हैं। दूरियों का कोई वजूद ही नहीं यहाँ, ये आंखें हर पल बस तुम्हें ही बुलाती हैं। बरखा की पहली सी बूंद तुम मेरी सूनी आंखों में एक नया ख्वाब हो। इन सर्द हवाओं के इस मीठे एहसास में तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरा प्यार हो। अब तो हर सुबह की धूप में भी बस तुम्हारी ही एक झलक नजर आती है। इस खूबसूरत से सफर में मेरे सनम तेरी हर अदा मुझे अपना दीवाना बनाती है।
1: वाह, सबसे शानदार लास्ट वाली लाइन थी। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई बात हो रही थी महिलाओं की,
0: तो ये एक दीवानापन पुरुषों के लिए क्यों?
1: बताते हैं। अब जब बात सुन सहेली की है तो हर दिन कुछ नया, और आज की ये लाइंस थी उन महिलाओं के लिए जिनको कि अपनी लाइफ में एक ये होता है ना कि कहीं ना कहीं हम इंतजार करते हैं कि हमारी लाइफ में एक हम सफर हो, जो हमारी खुशियाँ, हमारा दर्द, हमारा कहीं ना कहीं एक पेन जो है वो बांटे और हमें बहुत प्यार दे। तो आज की ये पोयम उनके लिए थी जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत का, किसी के
0: आगाज करने जा रहे हैं,
1: इंतजार कर रहे हैं, और कुछ का इंतजार तो पूरा भी हो गया है। बस एक वो कहते हैं ना कि रेसिपी पूरी तैयार है और फाइनल टच देना बाकी है,
0: परोसना है
1: बस। तो किसी की कोई है ऐसा जिसमें बस फाइनल टच देना बाकी है, बाकी पूरी जो रेसिपी है वो रेडी है।
0: हाँ जी,
1: तो ये आज उनके लिए था, और आई होप किसी को अच्छा भी लगा हो, क्योंकि मैंने किसी सोच से आज ये निकाली थी पोयम।
0: हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़े। अब रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
1: यस, तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ शुरू करने से पहले भी दो लाइन आपको बताते हैं कि कहते हैं वाइफ इज ऑलवेज राइट।
0: वाइफ इज ऑलवेज राइट,
1: हाँ,
0: नो नॉट एट ऑल,
1: एक
0: इज ऑलवेज नॉट राइट।
1: ओके, तो मतलब पतियों के लिए तो ये होता है ना कि पत्नी इज ऑलवेज
0: राइट, पतियों के लिए ही तो नहीं होता है कि वो मतलब हमेशा के लिए वो सही होती हैं, ऑलवेज राइट नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं। पति ही तो नहीं चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमेशा के लिए सही है।
1: अच्छा, ऐसा भी होता है।
0: हाँ, आप अपनी बात को पूरा करें फिर मैं आपको बताती हूँ।
1: अच्छा, तो मैं ये ऐसे कहना चाहती थी कि कहते हैं वाइफ इज ऑलवेज राइट, चलो सुनाते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: ओके, हाँ ये तो ठीक है,
1: ये तो मैंने बस उसको
0: फिक्स्ड किया
1: इधर उधर से ला करके।
0: जी चले,
1: तो चलिए और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताते हैं। और आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और अपनी अंदर की जो शक्ति है उसे हमेशा समेटिए, समेट कर रखिए, एक सार रखिए। क्योंकि कहते हैं कि दुनिया से हार जाओ तो एक बार के लिए जीता जा सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार जाते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। इसलिए कभी भी एक बार के लिए आपका शरीर थका हुआ हो सकता है कि बहुत सारा आपने काम किया, लेकिन कभी अपने मन को किसी भी तकलीफ से थकने मत दीजिए। और अगर वो थक जाए तो एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ भी होती है कि जब मन थक जाए ना, तो हमेशा मन को एक नई एनर्जी देने के लिए उनके पास जाना चाहिए जो आपको लगे कि आपकी, देखिए कई बार जब हम दुखी होते हैं मैम, तो उस टाइम पे हमें ये नहीं चाहिए होता है कि कोई हमें सलाह दे। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई परेशान होता है तो उसे सलाह की नहीं, सहारे की ज़रूरत होती है। इसलिए हमेशा उनके पास जाएं जो आपको सहारा दे और सहारे के साथ एक नई एनर्जी भी दे सके।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: इसलिए अपने मन को कभी दुखी नहीं करना और हमेशा हमेशा अपने मन की ही सुनना, क्योंकि सब गलत हो सकते हैं, पर कभी भी आपकी जो एक अंदर की जो वाइब होती है, जो आवाज़ होती है मन की, वो कभी गलत नहीं होती।
0: एग्जैक्टली कहा जाता है ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को कमज़ोर और हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं अगर अपने लिए बताऊं तो पिछले 5-6 महीनों से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय समझ रही थी, लेकिन और फील भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार भी थी, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा हुआ पिछले हफ्ता भर पहले,
1: जी जी,
0: कि 15 दिन पहले कह सकते हैं,
1: जी जी,
0: कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और वो बदलाव मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आज महिलाओं का दिन है। तो कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी रियल लाइफ को शेयर नहीं करते हैं किसी से, तो आगे वाले को भी नहीं मालूम होता है। तो जो रियल फैक्ट है एग्जैक्टली ये है कि कुछ बदलाव नहीं, बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो गया मेरी लाइफ में। तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम सब बताएंगे आज, आपको रिवील करेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज जैसा कि महिलाओं का दिन है, तो बहुत सारे टॉपिक्स आज हम ऑलरेडी यहाँ पर ले करके आए हैं आपके लिए। एंड कल सैटरडे को कुछ लोगों को हमसे शिकायत थी, मतलब कुछ लोगों को ये था कि भाई यार हमारे गाने नहीं पूरे हुए हैं। तो आज क्योंकि हमारा मूड भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो चाहते हैं कि जिन लोगों के सॉन्ग्स नहीं हुए थे, लाइक इट्स कुमार जी और मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं बाकी लिसनर्स के, तो जिनको भी लगता है कि हम आपके सॉन्ग नहीं हुए थे, तो एक से दो फटाफट जो पहले आएगा दो सॉन्ग्स हम उनके पसंद का चलाने वाले हैं। ठीक है,
1: वाह। तो मतलब इसे कहते हैं कि जब मूड बहुत अच्छा हो और आपने किसी अच्छे से
0: तो फायदा उठा लेना चाहिए,
1: तो फायदा उठा
0: जब
1: लेना चाहिए।
0: मूड अच्छा हो, जैसे कहते हैं ना कि घर में कि हस्बैंड आते हैं या पापा आते हैं या भाई आते हैं, पापा आते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि पहले उनका मूड देखते थे। हाँ। कहते थे कि अगर DDLG का ये डायलॉग मुझे याद है कि उसकी छोटी बहन कहती है, वो उसको छुट्टी लेने के लिए यूरोप के लिए छुट्टी लेने जाती है, तो उसकी छोटी बहन कहती है कि दीदी और अभी बहुत सारी जब तूफान होता है तो उसमें अपनी कश्ती को नहीं डालना चाहिए वरना डूबने का डर होता है, सिमरन को कहती है उसकी सिस्टर।
1: जी जी।
0: तो हम लोग भी हमेशा से पापा का मुंह देख करके ही अपनी बातों को रखते थे कि यार भाई पापा का मूड अच्छा है तो चलो आज ये मांग लेते हैं। तो ऐसे ही जब किसी का मूड अच्छा हो ना, तो मतलब मौके पे चौका मार लेना चाहिए। तो जिनके भी सॉन्ग्स अगर नहीं हुए थे, जिन्हें लगता है सैटरडे को, तो सिर्फ
1: तो फिर तो मैं भी मौके पे चौका मारूं।
0: नहीं, तुम शांत रहो, अभी नहीं, ठीक है। तो दो लिसनर्स के सॉन्ग ही हम प्ले करेंगे, बस दो। तो दो जो पहले आओ पहले पाओ, तो फटाफट लिख करके भेजें नाम एंड अपना फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। लेकिन उसके पहले आगे चलते हैं हम ब्रेक की ओर, जो कि हमारा सेगमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा वाला है। तो आइए चलते हैं हम इस गाने की ओर और उस गाने को सुनने के उस पार आएंगे।
1: बस यूं गए और यूं आए, आप करिए हमारा इंतजार और सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे ही आपकी RJ समता और साथ में है RJ
6: अंशिका।
5: तो फटाफट शुरू करते हैं अपना नया सेगमेंट, यानी कि नया आज का टॉपिक, जो कि आज है विमेन्स स्पेशल। तो कुछ महिलाओं के लिए ही हम लेकर के आएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आइए जानते हैं कि नया टॉपिक क्या है।
6: तो आज हम बात करने वाले हैं जिस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, वो है PMMD। यानी कि ये क्या होता है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो महिलाओं में सबसे ज्यादा तब होता है जब वो एक हम कह लें कि ऐसे स्टेज में होती हैं जहाँ पर वो इनसिक्योर फील करने लगती हैं। इनसिक्योर फील करने का मतलब है कि जैसे जब ऐसी सिचुएशन हो, जैसे जब एक महिला होती है कि वो इनसिक्योर फील करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इनसिक्योर फील करने का मतलब कई बार ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए। और ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा तब होता है जब वो माँ बनने वाली होती है, तब उनमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा आ जाती है। इस डिसऑर्डर का बढ़ना तभी पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैम की कई जो महिलाएं होती हैं वो जब मतलब प्रेग्नेंट होती हैं, उस स्टेज में होती हैं, तो वो छोटी से अगर झुकती भी है ना जरा सा, तो बहुत ज़्यादा उनको ये होता है यार नहीं नहीं नहीं इतना मत झुको, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको इफेक्ट पड़ जाए बच्चे।
5: पता है, लेकिन ना मुझे लगता है कि चलो हम अगर एक हिसाब से अगर प्रॉब्लम तो होती है, हम मान रहे हैं,
6: नहीं वो तो होती है,
5: लेकिन ना कुछ लोग ज्यादा उसको बड़ा बना भी देते हैं।
6: जी यही होता है। देखिए नॉर्मली जब एक महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो हाँ भाई केयर की जरूरत तो है ही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि आप एक के साथ दो दो जानों को लेकर के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो केयर की जरूरत होती है।
5: बिल्कुल।
6: लेकिन कई बार हम एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं, बिल्कुल बिस्तर से उठिए मत, इतना खाना है तो इतना ही खाइए, डॉक्टर ने जो दवाएं ली है वही आपको लेनी है, और बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, हम इस तरह करते हैं। तो ये एक सिचुएशन जब आ जाए कि कोई भी महिला अपने बच्चे को लेकर के, अपने होने वाले बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाए, उसकी बहुत एक्स्ट्रा केयर करने लगे, उसकी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि अरे उनकी फीलिंग्स तो बेकाबू एक पॉइंट पे हो जाती है, जब वैसी सिचुएशन आ जाती है तो वो PMDD कहलाता है। यानी कि एक ऐसा लेवल आपकी मेंटल स्टेटस का कि वहाँ पे हमें हर चीज एक्स्ट्रा केयर दिखाई देती है, हमें लगता है कि हमें हर चीज की, हर उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। ये एक तरह से अगर आप ऐसे लेंगे इस बात को, तो कई बार हम जब किसी पे गुस्सा होते हैं या कुछ भी ऐसी बातें हो जाती हैं तो वहाँ पे ये होता है कि किसी किसी का गुस्सा बहुत बेकाबू होता है। आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन जब गुस्सा करते हैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि अरे वो तो कभी नाराज़ होती नहीं थी, इतना ज़्यादा कैसे नाराज़ हो गई। तो यही चीज़ है कि भावनाओं का एक तरीके से बेकाबू हो जाना, आपका ये ना समझ पाना कि मुझे कहाँ रुकना है। कई स्टेजेस में हम यही नहीं समझ पाते हैं, जिसे भी PMDD होता है तो वो अपने मेंटल बैलेंस में ये नहीं समझ पाता है कि उसे कहाँ रुकना चाहिए।
5: लेकिन मैं PMDD का फुल फॉर्म तो आपने बता दिया, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है कि मतलब ऑलमोस्ट टाइम कभी भी ऐसा हो सकता है?
6: प्रेगनेंसी के दौरान मैम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी ये कई महिलाओं में पाया जाता है।
5: अच्छा।
6: जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में अकेली नहीं रह सकती हैं।
5: हाँ।
6: अगर उनके घर के सभी जेंट्स कहीं बाहर
5: तो हम भी ऐसे ही हैं।
6: नहीं
5: सच्ची हम नहीं रह सकते, हम अकेले रूम में नहीं सो सकते, तो क्या हमको वो है?
6: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कहने का सेंस ये है कि हाँ। बहुत ज्यादा डर लगना इन मतलब जैसे अगर
5: नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लगता
6: हाँ, वही वही मतलब था मेरा कि हाँ ये तो सही था मुझे अच्छा लेकिन ये मेरी वो हो गई कि मुझे पहले ही क्वेश्चन करना चाहिए था कि आप डरती भी है ना आप तो दूसरा
5: नहीं नहीं क्यों हम भी एक ह्यूमन बॉडी रखते हैं
6: नहीं नहीं अरे ऑफ कोर्स
5: ठीक है मेरे पास भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो इमोशंस हैं जो भी ये फियर एक होता है सब में होता है बट मुझे तो सबसे ज्यादा फियर मैं बताऊं अंशिका मुझे पानी से है
6: पानी से
5: फियर है और जब भी मैं बोटिंग वगैरह पे जाती हूँ जैसे मैं अभी गई थी ना उज्जैन तो मैं वहां पर अच्छा तो मुझे लगा कि अंशिका कहेगी अच्छा उज्जैन गई थी मैं उज्जैन गई थी अभी मैंने चलो रील कर दिया तो मैंने वहां पर बोटिंग करी और मेरा ना थर मैं कांप रही थी जब तक मैं उतर नहीं गई वहां से तो मुझे लग रहा था कि अभी बोट पलटेगी और मैं पानी के अंदर जाऊंगी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है पानी
6: जी,
5: से
6: जी, जी।
5: बट एक फियर खत्म करना था और वो तो फिर आपको पता ही है कि वो भोले बाबा की नगरी ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पर तो एक फियर रहता है बट एक अकेला रूम में बैठना सोना वो भी हमको है बट उतना नहीं है हाँ मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि घर के कुछ सदस्य बाहर चले जाते हैं किसी खास उसमें तो क्या कहते हैं रहना ही पड़ता है बट वो वाला फियर नहीं है कि हाँ भूत आएगा मतलब भूत ऊत के लिए तो हम लगता है कि हाँ ये सब बनावटी कहानियाँ होती हैं क्योंकि मैं खुद ही ऑलरेडी एक बहुत बड़ी भूतनी हूँ मुझे लोग कहते हैं घर में क्या अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं अपने तो हजम नहीं हो रही है तुम्हें
6: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हजम नहीं हो रही है मैं बस थिंकिंग कर रही थी थोड़ा सा सोच रही थी
5: नागेश्वर जी आ गए हैं लिख रहे हैं सास बहू को प्रणाम एंड शुभ दोपहरिया
6: शुभ दोपहरिया आपको भी और प्रणाम स्वीकार है तो मैं ये कह रही थी कि आपको बिल्कुल नहीं है मैम आप बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि ये क्या मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये क्यों मतलब कैसे है अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट क्या पॉइंट है एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए आप घर में अकेले हैं ठीक है आपके घर में कोई नहीं है आपको ही रहना है
5: हाँ।
6: तो कई बार आपने
5: पूरे घर में
6: हाँ पूरे घर में हाँ। आपको ही रहना है ऐसा
5: फिर का तुमको बुला लेंगे कभी ऐसा हुआ
6: अरे जरूर
5: ठीक है चलो
6: तो ये लगना जैसे अब मैं अपनी बात अगर करूँ तो मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं और मुझे अकेले रहना होता है तो मुझे कोई फियर नहीं लगता है मतलब मैंने डोर लॉक कर लिया आराम से मैं आराम से बैठी हूँ मतलब मैं ये है कि मैं जागूंगी मुझे नींद नहीं आएगी वो ठीक है लेकिन मुझे डर नहीं लगता है इस स्थिति में आपको 24 घंटे ऐसे लगेगा कि आपके पास कोई ना कोई है कोई आ रहा है कोई घर में चल रहा है कोई वहां पे है या आपको मोस्ट द टाइम ऐसा फील होगा आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप अकेले हैं PMDD में यही होता है कि हमें सेफ्टी फील नहीं होती हमें ये कभी नहीं लगेगा कि हम सेफ हैं और हमारे आसपास कोई नहीं है और हम बड़े अच्छे से एक अच्छे वे में PMDD में यही होता है कि आपकी मेंटल स्टेटस जो आपका होता है मेंटल बैलेंस वो उस कंडीशन में पहुंच जाता है कि आपको 24 घंटे ये लगता है कि आप खतरे में हैं
5: आपके पीछे कोई है
6: हाँ।
5: आप बैठे हैं तो भी आपको लगेगा कि यार ऐसा तो नहीं कोई पीछे है
6: हाँ।
5: जो मुझे मतलब देख करेगा हाँ देख रहा है हिट करेगा या जो भी है
6: ऐसा फील होना हर वक्त ये महसूस होना कि मैं अनसेफ हूँ चाहे आप कितने भी सेफ क्यों ना हो और एक इसकी कंडीशन और होती है कि जो महिलाएं जो भी ड्राइव करती हैं या कार चलाती हैं और उनको ये होता है अगर तो उनको हर वक्त ये लगता है कि अगर मैं कार चलाऊंगी तो अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा
5: हाँ।
6: या मैं किसी का एक्सीडेंट न कर दूं या मैं गाड़ी रॉन्ग वे में न चलाऊं ऐसा उनको 24 घंटे फील होता रहेगा आप सही दिशा में भी जा रहे हैं ना सही ड्राइविंग भी कर रहे हैं तब भी आपको ये लगेगा कि आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए ये एक मेंटल स्टेटस बन जाता है और ये क्यों बनता है इसका सबसे बड़ा कारण होता है नेगेटिविटी को देखना और नेगेटिविटी को सुनना कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना चाहिए लेकिन वो हमारे पास कब आती है जब हम नेगेटिविटी को देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं आजकल आप न्यूज़ देखते हो या कुछ भी ऐसे हम अखबार में कहीं आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ मान लीजिए पढ़ ली जैसे कुछ लोगों को होता है कि अगर उन्होंने कोई मर्डर की न्यूज़ पढ़ ली या देख ली या किसी से सुन लिया कुछ तो वो उसको इमेजिन करने लगते
5: अच्छा रात में अगर देखो तो वो ज्यादा इमेजिनेशन होने लगता है
6: जी मैम
5: आई मीन अगर आपने कोई भी ऐसे भूत वाली मूवी या थ्रिलर मूवी देख ली या फिर कुछ ऐसे एक्शन मूवी देख ली या फिर कुछ क्राइम देख लिया तो वही पूरे आपके दिमाग में घूमता मतलब हाँ। हमेशा से घूमता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ ऐसा हो
6: हाँ।
5: हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो तो वो ना वो पूरी थ्रिलिंग चलती रहती है दिमाग में
6: और यही कारण होता है देखिए जैसे हम कहते हैं ना किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में कभी अपने आप को इमेजिन करने ही नहीं चाहिए
5: पर ऐसा हो जाता है अंशिका ये कहने वाली बात होती है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं पर जैसे तुम अभी बोल रही हो ना लेकिन ऐसा हो जाता है मतलब हम लोग खुद नहीं करते हैं
6: बट वो
5: हो जाता है ऐसा
6: लेकिन जैसे कुछ जिन महिलाओं में ये डिसऑर्डर होता है उनके लिए ये इतनी आम सिचुएशन, जैसे मेरे साथ आपके साथ भी होता है, जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कहीं मेरे साथ ना हो जाए, लेकिन हम 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उस चीज को भूल जाते हैं, हमें वो रिमेम्बर नहीं रहता है कि हमने आधे घंटे पहले कोई नेगेटिव ऐसी कोई न्यूज सुनी थी। लेकिन जिन्हें ये डिसऑर्डर होता है उनके मन में वो नेगेटिविटी बैठ जाती है, उन्हें ये हो जाता है कि ये मेरे साथ भी तो नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई थ्रिलर मूवी देखी, उसमें हमने ये देखा कि रात को चोर आएगा और वो उसको मारता है या उसके साथ कुछ भी करता है, तो उनके मन में वो नेगेटिविटी हो जाएगी कहीं कि ऐसा तो नहीं रात में मेरे साथ भी होगा, और फिर वही वो इमेजिन करने लगते हैं। कहीं ना कहीं पूरा आपके इमेजिनेशन का खेल होता है, सच कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमारी मेंटल जो एक कंडीशन होती है वो ऐसी हो जाती है कि हमें ये सच लगने लगता है।
5: तो भाई कंक्लूजन आपका यही निकल के आ रहा है अभी इस इतने बड़े टॉपिक का कि आपके अंदर जो भी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप इतना तूल ना दें कि वो आप पे हावी हो जाए।
6: बिल्कुल।
5: तो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई भी ऐसी सोच का ही, मैं आपको हमेशा से कहती आती हूँ कि सब खेल पूरा सोच का ही होता है, तो आप अपनी सोच को अच्छा रखें ताकि ऐसा कुछ भी नहीं आपको फियर लगे या फिर कुछ हो। मतलब ये मैं कह लूँ तो ये मुझे देख के हंस रही है, हाँ मेरी सोच अच्छी है अगले इंसान को लेकर।
6: नहीं नहीं मैंने नहीं, आपको थोड़ी वो गलत फहमी हो गई, मैंने वो देख के नहीं हंस रही थी, मैं कुछ और देख के हंस रही थी।
5: जाने जिगर जाने मन
6: जी,
5: तुमको है मेरी कसम,
6: वही
5: जो मुझे ना मिला
6: वही
5: मर जाऊंगी मैं सनम,
6: वही वही
5: आओ सुना देते हैं वाला,
6: यही यही वजह है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, मैं आपको देख के क्यों स्माइल करूं।
5: तो चले हम ये वाला गाना सुना देते हैं क्योंकि ये गाना गीता जी ने अभी भेजा है, और मैंने कहा था कि दो लिसनर्स का, तो अभी मुझे एक ही का ही मिला है गीता जी का, बट कोई नहीं, आइए सुन लेते हैं इस प्यारे से गाने को, और उसके बाद सीधे आएंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता।

0: एस्टिमुलेट होता है।
1: बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और रमेश जी हैं बहराइच से, एंड तबिश खान आप दोनों मैम की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
1: थैंक यू तबिश जी।
0: एंड उस्मान खान, गुड आफ्टरनून आरजे मैम, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। एंड नागेश्वर जी ने लिंक भेजी है। हाँ जी नागेश्वर जी, हम आपकी सॉन्ग को जरूर से जरूर प्ले करेंगे। एंड हेलो गीता जी, एंड कुमार टेलर्स लिख रहे हैं जय माता दी दोनों मैम को।
1: जय माता दी आपको भी कुमार जी।
0: एंड एंड एंड एंड रमेश जी ने बहुत ही बड़ा सा मैसेज भेजा है। और उसके बाद में तबिश खान जी, मैंने आपको कल भी बोला था ना कि आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, एंड धर्मेश जी तो आपने बोला था कि हाँ मैम अब हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर से आप दोनों की बातें शुरू हो चुकी हैं, तो प्लीज आप लोग बातें ना करें। एंड एंड एंड जाना ना कहीं मिलके तुझे कसम। नहीं धर्मेश जी, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि केवल दो ही सॉन्ग हम लेंगे, तो एक नागेश्वर जी का मैंने ले लिया। पढ़ दीजिए, रमेश जी लिख रहे हैं कि मेरे मैसेज को पढ़िए। ओके, इंसान जब भी ये सोचता है कि वो इस टॉपिक पर अब ना सोचे, जिस टॉपिक पर ना सोचे, तो वो उस टॉपिक पर और ज्यादा सोचने लगता है, और जो उसे मनोवैज्ञानिक डर की ओर ले जाता है। इससे आगे का रास्ता नेगेटिविटी से होते हुए डिप्रेशन की ओर ले जाता है। जो जितना ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होगा वो उतना ही अधिक सोचेगा और परेशान होगा। नकारात्मक सोच और प्रवृत्तियां इंसान को दुखद रास्ते पर ले जाती हैं, और इंसान में अपने को समाप्त कर लेने जैसी प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं।
1: वाह, बहुत ही अच्छी बात कही आपने रमेश जी, और वाकई में कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। हमें सोचना चाहिए और खुद को नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो चलिए अब हम आज के टॉपिक को यानी नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। अंशिका, कई बार होता है कि हम लड़कियां, हम औरतें जो हैं वो अपने आत्मविश्वास को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं गिरा के भी काम करते हैं।
1: जी मैम,
0: कई बार होता है। कई बार आपने सुना होगा कि कई गर्ल्स जो जॉब में होती हैं वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के भी काम करती हैं। कई बार होता है कि उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि अपनी फैमिली को कुछ न बताते हुए भी वो काम करती हैं कि यार चलो ना, जॉब ही तो है, कर रहे ना, 2 घंटे की है, 4 घंटे की, 6 घंटे की है, फिर तो मुझे घर जाना ही है, ठीक है। तो वो काफी चीजों को अपने अंदर छिपा लेती है, जिससे उनका धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंट खत्म होता है।
1: जी मैम,
0: पता है,
1: अभी आपने बताया,
0: कहीं सुनी है ये बात?
1: हाँ सुनी भी है।
0: सुनी है ना, तो मैंने अभी बताया तो वो नहीं, लेकिन कहीं सुनी तो होगी ना।
1: जी जी।
0: कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, और इस क्राइम को आपको, खास करके महिलाओं को, बिल्कुल भी सहन नहीं करना है। अगर आपके साथ में आपके, अगर आप स्कूल के जॉब में हैं, कहीं किसी के जॉब में हैं, अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, और या किसी कारण से आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि डीमोटिवेट किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, जैसा कि अंशिका ने अभी थोड़ी देरी पहले बताया, कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है।
1: जी,
0: और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने के बाद अंततः वो आपको खत्म करने के कगार पर ले आता है। तो कहते हैं ना कि चाहे घर हो, ऑफिस हो, या कहीं और भी हो, सबसे पहला होता है काम अपने आप को संतुष्ट करना, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर ये दोनों चीजें आपने बरकरार रखी, तो अगर आप 60 ईयर की भी हो जाएंगी ना, 60 साल की भी हो जाएंगी ना, तो आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मगौरव कभी खत्म नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा मैम ने, और कहीं ना कहीं जो अभी उन्होंने बताया पॉइंट वो भी बिल्कुल सही है, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी जो एक कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टार्टिंग में अभी हमने कहा था कि मन की हारे हार होती है और मन के जीते जीत, वही यहाँ पे लागू होता है कि जब हमारा मन किसी चीज़ से हार जाता है तो वो आप समझिए कि फिर वो आप दोबारा कभी उस चीज़ को कर ही नहीं सकते। और रिस्पेक्ट तो ऐसी चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं ना, कांच बहुत नाजुक होता है, एक बार आपने पत्थर मारा वो टूट गया, तो आप दोबारा उसको कितनी भी कोशिश कीजिए, कोई नामुमकिन है वो कि वो जुड़ जाए।
0: हाँ।
1: वही उसी तरह ठीक किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, कि अगर हमने एक बार उसको ठेस पहुंचाई तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए वो हो गया, वो हम भले कह लेंगे अरे नहीं ठीक है हमने माफ कर दिया, बट वो मन में एक कसक हमेशा रह जाती है।
0: एग्जैक्टली तो चाहे वो इंसान हो, घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो या जॉब, कहीं पे भी हो, कहने का सेंस और केवल यही है कि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट या सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं भी आपकी ठेस पहुंच रही है तो उसको कभी भी आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अगर आपने एक बार इग्नोर किया ना तो जो भी इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट

0: खेल रहा है या खेल रही है, उसको हमेशा से मौका मिल जाएगा कि ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई बातें खुद पर बीतती हैं तभी एहसास होता है कि हाँ ये चीजें हम पे बीती तो हमें उसका एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना कि तुम क्या जानो,
1: हाँ,
0: हम
1: मुझे
0: पे बीती
1: पता
0: है ना, हम पे बीती है ना, हम जानते हैं। तो सेम वही है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी बरकरार रखनी है तो उस इंसान को बिल्कुल त्याग दीजिए, उस जगह को त्याग दीजिए जहां से आपको ठेस पहुंचे और जहां से आपको केवल और केवल अपने आप को गिराने के सिवा कुछ नहीं मिले। अच्छा बोला ना अंशिका,
1: बहुत अच्छा।
0: और मैंने ऐसा किया भी है ना
1: जी।
0: क्यों साइलेंट हो गई?
1: नहीं कुछ थोड़ा सा रिवाइव हो गया था तो इस वजह से।
0: क्या
1: था? कुछ
0: याद आ गया था,
1: कुछ याद आ गया था।
0: तो वो याद अभी हम इनसे पूछेंगे कि क्या याद आ गया था।
1: इमोशनल भी हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि जो यहाँ पे अभी मैम आपको बता रही हैं और कह रही थी, जब तो कहते हैं ना कि आवाज़ में एक वो चीज़ पता चल जाती है, और जब मैम अभी आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि फोकस होकर के, और इतने अच्छे से वो आपको अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे है क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारी मैम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ बैठी हैं और अपनी आवाज़ में जो शायद उनके ऊपर है, हो चुका है, वो उन्होंने अभी अभी बताया है। तो कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत चाहिए मैम, आपने किया है। और मैं बाकी सभी फीमेल से जो भी सुन रही हैं उनसे कहना चाहूँगी, और जो मेल सुन रहे हैं उनसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये कहना है कि किसी भी फीमेल के साथ में, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, इस तरीके की जो एक हरकत है या जो भी पॉइंट्स है वो आप कभी ना करें। क्योंकि कितना दर्द होता है ना, वो वही इंसान एक जिसके ऊपर होता है वही जान सकता है। और हील करना सबके बस की बात नहीं,
0: सबके बस की बात भी नहीं होती अंशिका। और बहुत ज्यादा अगर कोई हील करके अपने आप को मूव ऑन कर रहा है ना, तो ये उस पर एक असीम ईश्वर की अनुकंपा होती है शायद, मतलब मैंने जो फील किया है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो असीम अनुकंपा है, असीम कृपा होती है, असीम उनका प्यार होता है जो हील करके आगे बढ़ जाते हैं। और जो पीछे छोड़ आते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन कहनी होती है कि गो टू हेल। तो ये बहुत ही ईजी वर्ड है, गो टू हेल, बट अगर आप कह के देखेंगे ना तो आपको इतना अच्छा फील होएगा कि मन करेगा कि भी मैं नाचूं उस इंसान के लिए, कि सिर्फ ये कह देना गो टू हेल।
1: बिल्कुल। तो
0: चलें सॉन्ग सुना दूं?
1: यस।
0: नागेश्वर जी ने एक लिंक भेजी थी बहुत ही प्यारी सी, पहला पहला पहले प्यार का पहला गम। ओ माय गॉड। नागेश्वर जी, आपको पता था क्या कि मैं अभी बहुत सेंटी सेंटी बातें करूंगी और कुछ मतलब टची बातें करने के बाद ये गाना आप डेडिकेट करेंगे?
1: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है,
0: बहुत ही प्यारा सा गाना है, आइए सुन लेते हैं। और जिसमें जुगल हंसराज हैं, मयूरी कांगो और पापा कहते हैं जिस मूवी नेम, और ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, आइए सुन लेते हैं साथ में। एंड उसके बाद में हम आएंगे अपने फिर से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए सुनते रहें हमारे साथ।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में हैं
6: RJ अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग वाकई में यार बहुत ज्यादा वाला बात करते हैं चैट बॉक्स में। मैंने कल भी अलर्ट किया था, देखो भाई मैं 3 दिन तक आप सभी को अलर्ट करूंगी एंड 4th दिन मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। साफ साफ सुथरी बात, नो बकवास। मेरे शो में इस तरीके से कोई बातचीत कोई भी अलाउड नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सुन सहेली में इस तरीके से बात और जो आप लोग करते हैं, तबिश खान हो गई और पता नहीं कौन कौन से नए नए नाम से आप लोग मुझे तो लगता है कि एक ही इंसान ने कई आईडीज भी बना के रखी हुई है। तो फिर आप लोगों ने शुरू कर दी आपस में बातें, तो ना करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो वरना मुझे जैसे परसों से मैं बोल रही हूँ, कल भी बोला था, आज भी बोला है एंड कल, तबिश आपको और जो भी बात कर रहे हैं मुझे, ये कोई सिर्फ एक ईंट पत्थर के नाम से आए हैं, पता नहीं कौन है, तो उनको और फिर आप आईडी बनाते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ब्लॉक करती रहूँगी तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, मुझे कोई भी नहीं वो है। और मैंने कहीं पर भी कॉल नहीं की, मैं मना कर रही हूँ फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट।
6: जी मैम, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बात करते हैं। और जो भी अभी आपसे सीरियसली कहा गया है, आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए और ऐसी चीज़ें ना करें। तो चलिए बताते हैं कि महिलाओं में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है मैम, और कॉमन हो गई है।
5: हाँ।
6: पहले हम ये कहते थे कि 2-1 महिलाओं में, लेकिन अब कॉमन हो गई है कि आंत में सूजन हो जाती है और फिर उसकी वजह से पेट में दर्द होना और धीरे धीरे पेट फूल जाना, ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। सबसे पहले मैं बताती हूँ क्यों होती है। महिलाओं में एक सबसे बड़ा कारण होता है उनके इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी आंतों में सूजन हो जाती है। दूसरा कारण होता है पानी की कमी। जैसे जब हिचकी कभी आती है तो हम क्या कहते हैं कि आंतों में प्रॉब्लम है।
5: Okay.
6: अगर जरूरत से ज्यादा हिचकी आती है आपको, इट मीन्स कि आपकी आंत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और वो आपको वही एक साइन होता है। जैसे किसी को, मतलब मुझे भी कभी कभी हिचकी आती है, तो 1-2 बार आई, मैंने पानी पिया और वो ठीक हो जाती है।
5: इट मीन्स कि पानी की कमी हो गई है।
6: किसी को बहुत रेगुलर आती है, मतलब आपने किसी को देखा होगा आ रही है तो 5 मिनट तक आ ही रही है, वो पानी पी रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा, इट मीन्स कि पानी की कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कमी हो रही है, प्रॉपर
5: कमी हो रही है,
6: बेहद कमी। आपको प्रॉपर मात्रा में पीने की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं ना कि दिन भर में 8 ग्लास पानी पीजिए या 10 ग्लास पानी पीजिए, किसी की कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा पी सकते हैं,
5: बिल्कुल।
6: लेकिन अगर आपको हिचकियां शुरू हो रही हैं तो इसका मतलब ये साइन है कि आप दिन भर में शायद 2-3 ग्लास भी नहीं पीते हो, ये एक साइन दिखाता है। इसलिए पानी प्रॉपर मात्रा में पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है ना हमें मैम कि पानी ना पीने से सिर्फ हमारी बॉडी जो है फिजिकली वीक होती है,
5: बिल्कुल,
6: बट ऐसा नहीं होता है, आपकी मेंटली कंडीशन भी वीक हो जाएगी।
5: हाँ, ये तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, खुद का आजमाया हुआ है कि अगर हम जैसे कभी कभी लगता है ना कि पानी ना पियो तो उस दिन ज्यादा चिड़चिड़ापन लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं।
6: बिल्कुल, तो पानी जरूर प्रॉपर मात्रा में पीते रहें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपकी आंतों में सूजन शुरू हो जाती है। दूसरा कारण होता है खाली पेट दवाई लेना, कोई भी मेडिसिन अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, या कोई भी ऐसी चीज है, और जिनकी आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि खाली पेट, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि बिस्किट खाया, टोस्ट खाया, कुछ भी, चाय पिया, लाओ मुझे दवाई दे दो, मैं दवाई ले लेती हूँ, या पेन किलर, नॉर्मल मान लीजिए बॉडी पेन है या आपके सिर में दर्द है, कुछ भी है, तो हम पेन किलर खाते हैं। लेकिन किसी किसी की हैबिट होती है पेन किलर खाने की, कि जरा सा कुछ शरीर में पेन हुआ नहीं कि बस पेन किलर तुरंत ले लिया। और कैसे लिया, सुबह उठे, ब्रश किया, चाय पिया, बिस्किट लिया या जो भी हल्का फुल्का, और बस लाइए मुझे दवाई दे दीजिए। ये एक अच्छी आदत बिल्कुल नहीं होती है। दवाई हमेशा प्रॉपर नाश्ता करने के बाद, चाहे आप एक रोटी ही खाइए, लेकिन प्रॉपर आपके वो मील होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दवाई में पावर होती है। हम क्यों कहते हैं कि जो एमजी बड़ों को दी जाती है वो बच्चों को नहीं दी जा सकती, या बहुत जैसे जिनकी 60, 70, 80 की एज होती है, उन्हें हमेशा बहुत कम एमजी की दवाई दी जाती है। उसी तरीके से अगर आप दवाई को खाना खाने के बाद खाते हैं तो वो उसकी एनर्जी को मेंटेन कर लेता है, लेकिन अगर हम खाली पेट दवाई खाते हैं तो वो पूरी की पूरी एनर्जी रिवर्स होकर हमारी बॉडी पे आती है, फिर आपको रिएक्ट होता है और फिर हमें नुकसान पहुंचता है।
5: नागेश्वर जी भी पूछ रहे हैं कि भूख कम लगना, क्या ये भी आंतों की समस्या हो सकती है?
6: नहीं,
5: भूख कम लगना ये आपको दो कारण से हो सकता है। या तो आपको एसिडिटी है, क्योंकि एसिडिटी के कारण भी आपको भूख कम लगती है, और या तो इम्यून सिस्टम आपका वीक हो गया है।
6: राइट, ये दो कारण हो सकते हैं। और आंतों में सूजन का एक सबसे बड़ा कारण होता है खराब खान पान। खराब खान पान से मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खा रहे हैं, बाहर की चीजें खा रहे हैं। खराब खान पान का मतलब एक ये होता है कि हमारा कोई टाइम नहीं है, कोई एक तय शेड्यूल नहीं है। सुबह का नाश्ता 2 बजे खाया जा रहा है, रात का खाना 1 बजे खाया जा रहा है। इस तरह जिनका शेड्यूल होता है, जो लेट से खाते हैं, उनकी आंतों में सूजन आने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। और ये महिलाओं में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हमारी घर की महिलाओं का भी कोई शेड्यूल नहीं होता। उन्हें भी ये लगता है कि अरे सब हो जाए, सब काम हो जाए, उसके बाद हम खाना खाएं।
5: मतलब एक जैसे होता है ना कि चलो सबको खिला लो, या फिर किचन साफ कर लो। रात में तो यही होता है कि अच्छा ठीक है सबको दे लेते हैं, और अब जब खड़े ही हैं लगे हाथ तो हम पूरा किचन साफ कर लेते हैं, और किचन साफ करने के बाद लगता है यार गर्मी है, थोड़ा नहा भी लो फिर खाते हैं। फिर 1 घंटे के बजाय वो 1.5 घंटे ऐसे ही हमारा बीत जाता है। तो कभी भी आप ये काम ना करें, क्योंकि जो शेड्यूल बना होता है ना, कहते हैं ना कि जिस टाइम पर आपको भूख लगी हो उस टाइम पर आपको अगर खाना ना मिले, नहीं है तो कुछ भी आप खा सकते हैं। मतलब ये है कि हाँ थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उतनी देर के लिए आपको मतलब आपकी आंतों को, आपकी पेट को राहत मिल सकती है।
6: बिल्कुल, अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी देखिए हमारी बॉडी, हम ये कहते हैं ना कि अरे महिलाएं हैं, उन्होंने दिन भर घर का काम किया तो बॉडी ने फिजिकल एक्टिविटी तो की ना, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक एक्सरसाइज वाली फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है और दिन भर का काम अलग होता है।
5: बिल्कुल,
6: इसलिए आप ज्यादा टाइम ना निकालें, 15-20 मिनट ही निकालें सुबह मॉर्निंग में, लेकिन अपने लिए निकालिए। चाहे आप चाहें तो टहलिए, मतलब वॉक करिए, या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैवी नहीं, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहने के।
5: और अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आपको योगशाला है ना हमारा, आप योगशाला सुने, क्योंकि जैसे होता है ना कि कहीं नहीं जाना है और सिर्फ मोबाइल उठानी है और उसको ट्यून करना है, सुबह 6 से 6:30 बजे योगशाला जो लेकर के आती है आपकी आज सप्ताह।
6: बिल्कुल, और करें योग, रहे निरोग, और सुबह सुबह जब सहेली की आवाज में योगा मिलेगा तो सहेलियां और कहां जाएंगी, यहीं आएंगी।
5: बिल्कुल, तो करें योग, रहे निरोग के साथ में अब हम यहां लेंगे ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले बता दूं कि सुपर से भी ऊपर वाली मैंने एक मेलोडी सॉन्ग्स लगा रखा है। अब आप लोग बताइएगा सुनकर के कि आपको कैसा लगा। हम आएंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट आज के टिप ऑफ द डे को लेकर के, क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल, तो बस यूं गए यूं आए, आप सुने और एंजॉय करें इस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: आपसे प्यार है, कह तो दिया और कितनी बार बोलूंगी कि हाँ आपसे प्यार है। तो भाई आपसे प्यार है, बेशुमार है, और उसके बाद में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हाँ ये प्यार और ये बेशुमार हमेशा से रहे। खुश अंशिका,
1: बहुत ज्यादा
0: यही सुनना चाहती थी ना,
1: यही सुनना चाहती थी। हाँ
0: बस हम चाहते थे तुम यही सुनना चाहती
1: सुन ली।
0: ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं आज के रियल सॉरी टिप ऑफ द डे, एंड उसके बाद में हम आपसे लेंगे आज के लिए विदा।
1: तो आज का टिप ऑफ द डे ये है कि महिलाओं को हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने भी बताया ना कि आंतों में सूजन हो जाती है, तो सिम्टम्स तो आप थोड़ा लेट में उसको नोटिस करेंगे, लेकिन अगर आप हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप कराएंगे तो कहीं सिस्ट हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो वो हमें पता चल जाएगी।
0: एग्जैक्टली, तो आज का जो टिप ऑफ द डे बहुत ही अच्छा था, जो कि महिलाओं को लेकर के था। एंड हेलो नीना जी, कैसी हैं आप, एंड धर्मेंद्र मोहन जी, अब हम लोगों को दे इजाजत, जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया। जोर से बोले तो सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो जय माता दी, हम तो ये सुनाई देता है मुझे। ठीक है, तो कल जोर से बोलेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। एंड कॉलेजन गोंडा में आपके लिए है सरप्राइज, जो है सरप्राइज हम आपको 2 मिनट के बाद देंगे, लेकिन अभी देंगे हम आपको 2 मिनट का रेस्ट, एंड आप कॉल कर सकते हैं एंड सुन सकते हैं आपका अपना कॉलेजन गोंडा। तो हम दोनों को दे इजाजत, हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

होते होठों पे मेरे, गीत ना होते, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ एंट्री ली है मैंने, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अंशिका। तो आज आप मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं अपना फेवरेट कॉलिंग प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। तो हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है उनके फेवरेट वाले प्रोग्राम में। वही कॉलर ट्यून है, आप कॉल करेंगे और आपको आपके फेवरेट वाले सॉन्ग्स को सुनने का मौका मिलेगा। तो चलिए आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी जो पहली फरमाइश है वो किसकी है और कौन है जिनके हैं कि उनका पहला सॉन्ग सबसे पहले पहले हम सुनाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली फरमाइश है जो कि है देवी प्रसाद जी की, जिन्होंने सॉन्ग भेजा है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि अभी हमने सुना। और अब आती है बारी अगली फरमाइश की, जो कि है कुमार टेलर्स जी की, जीना है तो हंस कर जियो। और इसके बाद में हम सुनेंगे सुनील कुशवाहा जी के सॉन्ग को, जो कि है तेरी उंगली पकड़ कर चला। तो भाई दोनों ही सॉन्ग्स मुझे तो लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं जीना है तो हंस कर जियो।

आंचल में पला मैं तेरा लाडला। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये, और हम सभी को कहीं ना कहीं इस सॉन्ग को सुन करके अपनी अपनी मम्मी की याद तो आ ही गई होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो चलिए आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है सबलू जी की। और आइए सुनते हैं सबलू जी का सॉन्ग, और सबलू जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे राजू जी के सॉन्ग को। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सबलू जी का सॉन्ग।

0: छुपाता है।
1: बिल्कुल, कोई कहता है कोई छिपाता है और हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। बेहद ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि भेजा था सबलू जी ने। और अब बारी है हमारी नेक्स्ट फरमाइश की, जो कि हमारी नेक्स्ट फरमाइश है राजू जी की। और राजू जी ने सॉन्ग भेजा है दोनों जहां की मस्ती में चूर। और इसके बाद हम सुनेंगे रमेश जी के सॉन्ग को, और रमेश जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी इरशाद जी के सॉन्ग की। तो भाई सॉन्ग्स हैं बहुत ही अच्छे, तो एंजॉय कीजिए आप सभी और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्या कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि फरमाइश थी राकेश जी की। और राकेश जी के सॉन्ग के बाद में अब बारी आती है सचिन शुक्ला जी के सॉन्ग की, जो कि उन्होंने लिखा था बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग कि उस चांद का क्या मुकाबला। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि फरमाइश थी सचिन जी की।

यह बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि आप सुन रहे हैं फरमाइश है सचिन जी की। अगर आप भी अपने सॉन्ग की फरमाइश करना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई भी सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉल करना है 6393316429 पे और अपनी फरमाइश को यहाँ हमारे पास देना है और फिर हम आपके सॉन्ग को ज़रूर से ही प्ले करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को।

ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि आप अभी सुनने जा रहे हैं, तेरी बाहों में जीना मरना है, जो कि फरमाइश है हमारे बहुत ही एक लिसनर है, जो रेगुलर लिसनर है, जिनकी फरमाइश है, जिनका की नाम है इरशाद जी। और इसके बाद में हम सुनेंगे अलीशा जी के सॉन्ग को तेरी कसम तू है, तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, जो कि उन्होंने डेडिकेट किया है आर जे आयुषी को। तो आइए सुनते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में स्टेडियम।

बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग चल रहा है, दिल कहता है तेरी जिंदगानी बता दूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट जो फरमाइश है वो है अलीशा जी की, और अलीशा जी को बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुनना है। और अलीशा जी के सॉन्ग के बाद में बारी आती है गुलकशा जी के सॉन्ग की, और गुलकशा जी के सॉन्ग के बाद हम सुनाएंगे निशा जी का सॉन्ग। तो आप सभी के सॉन्ग्स हैं और आप सभी इन प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को सुनिए और इन्जॉय करिए। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाले सॉन्ग की तरफ, आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो कि आप अभी सुन रहे हैं, जो कि फरमाइश है निशा जी की। तो आइए सुनते हैं निशा जी के इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, और इसके बाद में हम सुनेंगे धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को, और धर्मेंद्र जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी दीपांशी जी के सॉन्ग। तो आइए इंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। स्टे ट्यून।

बेहद ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि था आजा तेरी याद आई। और इसी के साथ हमारा टाइम भी हो गया है जो कि आपको बाय-बाय बोलने का। तो आज का कॉलर ट्यून गोड्डा प्रोग्राम आपको मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे अंशिका के साथ कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। लिसनर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और रेडियो ज्ञान स्लिप 9.6 FM को सुनते रहिए। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगी आपको आपके अपने प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय बाय और अपने सॉन्ग को सॉन्ग सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहाँ होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: घड़ी ने इशारा कर दिया है और आपके शो यानी कि गोधुली का वक्त हो गया है। भाई, हर शो में हम किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ हाजिर होते हैं जो अपने एरिया के होते हैं एक्सपर्ट, और बहुत सारी बातों के साथ साथ वो अपनी जिंदगी के कुछ किस्से भी हमसे साझा करते हैं। इससे होता कुछ यूं है कि हमको ये पता चलता है कि ये लोग अलग से नहीं आते, हमारे और आपके बीच के ही होते हैं। बस शायद काम करने का तरीका इतना अलग होता है कि कहीं ना कहीं उस एरिया में एक्सपर्ट की तरह हम सभी लोगों के लिए, समाज के लिए काम कर रहे होते हैं। मगर आज पहली बार मैं इस स्टूडियो से ऐसा कहूंगा कि मैं जिस शख्स के साथ आज बैठा हूं, मैं जमीन के अंदर से और चांद और अंतरिक्ष तक पहुंच गया हूं। वजह धीरे धीरे आपको साफ होती जाएगी कि मैं ऐसा आखिर क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत सच है कि आज जो पर्सनालिटी बैठी हुई है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में, हम गर्व महसूस कर रहे हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दरअसल आज हम साथ में बैठे हैं हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर GS श्रीवास्तव सर के साथ। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: ये बहुत बड़ी बात है कि रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में आप आए हैं, और आपका वक्त मिलना, आपसे बातचीत करना, ये हमारे और हमारे श्रोताओं के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि अभी तक जिंदगी में आपका जैसा भी सफर रहा, उसको आप बता करके आशीर्वचन हम सभी को सौंपे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस प्रोग्राम की, और चलते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि यानी हमारे गेस्ट की तरफ। सर का पूरा नाम हमने बताया, डॉक्टर GS श्रीवास्तव है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI से। सर, हम चाहेंगे कि पहले अपने बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय आप दे दें, ताकि जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो आपके बारे में जान सके।
5: मेरा जन्म रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ, और मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई, और कालांतर में मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा रायबरेली ज़िले से किया, और उसके बाद फिर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जियालॉजी विभाग में मैंने एडमिशन लिया। तो मेरा जो ग्रुप था वो जियालॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स था।
4: ओके।
5: तो इसलिए मैं केमिस्ट्री में नहीं गया और जियालॉजिस्ट बन गया।
4: ओके सर, आपने ये बताया तो है कि आप जियालॉजिस्ट बन गए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक सफर होगा, मतलब कहीं से तो जिंदगी दिशा देती है, सभी की अपनी अपनी दिशाएं होती है, आपकी क्या रही, कैसे हुआ ये?
5: मैं पढ़ने में अच्छा था, और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, और इसलिए मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह मिला, और तुरंत ही एडमिशन हो गया।
4: वाओ।
5: और किसी वजह से केमिस्ट्री में मुझे 75% उन दिनों इसको कहते थे डिस्टिंक्शन मार्क, तो वो नहीं आ पाए। तो फिर ये हुआ कि केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है और बाकी करेंगे।
4: जैसे हम लोग के साथ होता है कि जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक महसूस होता है इसको छोड़ देते हैं, तो वही आपके साथ भी हुआ।
5: जी
4: अच्छा, फिर क्या हुआ सर?
5: और फिर कुछ डेस्टिनी कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, हम लाइन में खड़े हुए थे और एक सज्जन पीछे खड़े हुए थे, तो ऐसे ही बात हो रही थी कि भाई जियोलॉजी और फिजिक्स के साथ में फिर और क्या हो सकता है केमिस्ट्री के अलावा। तो उन्होंने कहा कि स्टेटिस्टिक्स, मैं कहा भाई ये क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये भी गणित जैसा ही है, तो मैंने स्टेटिस्टिक्स लिख दिया। मैंने कहा ठीक है अगर मैथमेटिक्स जैसा है। तो फिर थोड़ी देर में फिर पूछा मैंने कहा और फिर दूसरा क्या हो सकता है, तो बोले कि जियोलॉजी होता। मैंने कहा जियोलॉजी क्या चीज़ है, तो बोले कि पहाड़ वगैरह में आप जा सकते हो। तो जो आई वॉज सो फैसिनेटेड, तो मैंने उसको काट करके जियोलॉजी लिख दिया और पैसा जमा कर दिया। एक बार फीस अगर जमा हो गई तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते
4: जी।
5: और इस तरह मैं जियोलॉजी में मैंने फिर MSc किया लखनऊ विश्वविद्यालय से।
4: क्या बात है सर। वैसे इससे पहले जो बातचीत हमने माइक से पहले की थी, जब आप आए आप बैठे, तो चूंकि आप नासा के साथ भी काम कर चुके हैं, आप भारत को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में आप बता दें, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और नहीं जानते हैं कि आपके डिपार्टमेंट का काम क्या है, तो प्लीज उसके बारे में।
5: जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्य रूप से मैप बनाता है, यानी मानचित्र बनाता है
4: जी,
5: जो कि एक दूसरा विभाग है सर्वे ऑफ इंडिया
4: जी,
5: तो वो एक बेस मैप बना के हमें देता है। बेस मैप का मतलब है कि जहाँ पर हाइट और कौन सा क्षेत्र वन से आच्छादित है, कौन सा कृषि से है, कौन सा वगैरह इस तरह का
4: जी।
5: लेकिन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसी मैप पर भूविज्ञान संबंधी जानकारी उपलब्ध करा।
4: सर जहां तक हमने भी सुना है इस डिपार्टमेंट में होता ही है कि आप जमीन के नीचे बहुत सारी चीजों को निकालते हैं। कॉमन मैन ने कभी आपसे कहा नहीं कि कभी आपने खुदाई की हो, सोना वगैरह निकल आया हो?
5: नहीं, इस तरह का होता है कि जब हम लोग मैप करते हैं
4: जी,
5: तो ये नहीं रहता कि यहाँ क्या मिलेगा
4: जी।
5: फिर हम वो मान लीजिए चट्टान हमने देखी
4: जी,
5: तो उसकी जब एनालिसिस होती तो मालूम होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए उन दिनों काफी अन्न का संकट था और खाद वगैरह की बात हो रही थी, तो ये हुआ कि हम लोग फास्फोराइट ढूंढे
4: जी,
5: तो किसी रॉक में गए, किट वगैरह रहते हैं, तो वहां से पहले सैंपल लिया जिसमें रहता है कि हाँ इसमें फास्फोराइट है, तो हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसकी उसका मानचित्रण होता है और फिर वो बनता है। इस तरह से मसूरी फास्फेट करके एक नई कंपनी खोली गई थी उत्तरा, आजकल उत्तरांचल कहलाता है, उन दिनों उत्तराखंड था
4: जी,
5: तो वहाँ पर हुआ। इस तो इसी तरह के और भी बातचीतें होती रहती हैं। सोना भी किसी कई नदियों में सोने के कण पाए जाते हैं, तो लोग उसको हम लोग प्लेसर गोल्ड बोलते हैं, यानी कि बालू छानते जाइए
4: जी, जी
5: तो छोटे मोटे कण मिल जाएंगे। कई बार कोई लकी होते हैं तो बड़ा कण भी
4: बड़ा
5: मिल जाता है। तो इस तरह के भी बहुत सारे, जैसे पन्ना में भी ऐसी संभावना है
4: जी,
5: तो पन्ना में भी लोग ऐसा खोदते रहते हैं और छनाई करते रहते हैं, तो उसमें हीरा वगैरह मिलता है पन्ना में, जबकि और जगहों पर सोना मिलता है।
4: ओके सर, सभी के साथ होता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं या साइट पे जाते हैं, तो कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं
5: जी जी,
4: तो हम चाहेंगे कि जो भी आपके लिहाज से कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हो जो आज भी आपको याद हो, प्लीज हमारे श्रोताओं से बताइए।
5: मैं ONGC में था इसके पहले
4: जी,
5: तो ONGC का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उन दिनों यही नाम था। तो जो तेल और गैस की खोज करता है, तो शुरुआत के 2 साल हम वहीं थे गुजरात में पोस्टेड, और अंकलेश्वर फील्ड नया हुआ था
4: जी,
5: तो वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक कुएं में आग लग गई,
4: अरे,
5: और वो बड़ा मुश्किल काम है कि उसको लपटें चल रही है, मई का महीना। बहरहाल पहला काम होता है कि हम मानचित्र बनाएं, तो हम लोगों ने दूर से फिर उसका धीरे धीरे करके चारों तरफ का मानचित्र बनाया, और फिर एक जगह ढूंढा कि यहाँ से तिरछा अगर होल करें तो मुख्य होल में वो मिल जाएगा और इस तरह से शायद कंट्रोल हो जाए। तो फिर ऐसा ही किया गया, दो दिन में ये काम भी पूरा कर लिया गया और वो चल रही लपटें। फिर ये देखा गया कि बीच बीच में लपट उठती है, फिर कम हो जाती, फिर उठती है कम, तो इसका अंदाज़ा लगा करके जब कम हुई तो उसी समय एकदम से उसके अंदर मड, पानी, ये सब चीज़ें एक साथ ही अंदर भेजी गई मशीनों के द्वारा
4: जी।
5: तो जब वहाँ पहुँचे तो सडनली वो आग भक से बुझ गई, और जब वो बुझ गई तो इसको कंट्रोल कर लिया गया उसमें वाल्व लगा करके, और अब दोनों कंट्रोल हमारे पास थे और सब लोग बड़े खुश, मतलब जुबिलियंट थे, एकदम नाच रहे थे कि हम लोगों ने जंग जीत लिया।
4: सही बात, मतलब जहां तक अभी हमने कई बार न्यूज में देखा है, इवन रोड पे चलते टैंकर्स हादसे का शिकार हो जाते, मुझे लगता है कि आपके करियर में और आपके डिपार्टमेंट में सबसे भयावह स्थिति यही होती है।
5: जी जी,
4: कहीं अचानक से इस तरह की घटना हो जाना।
5: जी, मैंने बहुत सारी इस तरह की घटनाएं और संस्मरण अपनी किताब पेजेस फ्रॉम डायरी ऑफ ए जियोलॉजिस्ट में संकलित किया है। अगर जो बच्चे, जो छात्र इसमें रुचि रखते हों वो जा सकते हैं। ये टाटा मैग्रा हिल ने इसको पब्लिश किया है, आप अगर अमेजन में जाएंगे तो मिल सकता है।
4: बिल्कुल, तो सर ने जैसा कि हमने कहा था ना कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। देखिए अब जमीन से हम लोग शुरू कर चुके हैं, सर ने अपना ONGC का एक्सपीरियंस हमसे साझा किया है और अभी हम नासा तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी बीच का और सफर है। सो सर ने बताया है कि बुक अगर जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट में, इस पोस्ट के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो इस बुक को पढ़ें, उनके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपने बताया कि ऑनलाइन अमेजन पे भी अवेलेबल है।
5: जी,
4: ये बहुत अच्छी बात है कि घर बैठे सर की लिखी हुई बुक आप तक पहुंच जाएगी। सर ONGC में आप थे
5: जी,
4: GSI में आए
5: जी,
4: ये ट्रांजिशन कैसे और क्यों?
5: GSI में मैं एक UPSC द्वारा एक एग्जाम होता है, जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे जियोलॉजी में MSc कर लेते हैं वो इस इम्तहान में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, और आजकल बहुत जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो बैठ सकते हैं, और फिर वो जब उनका चुनाव हो जाता है फाइनली तो फिर वो एज ए गस्टेड ऑफिसर Class 2, Class 1 हो जाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि और जगहों पर भी है कि IAS या एलाइड सर्विसेज के लोग वो शुरुआत में Class 1 लेवल से शुरू करते हैं, फिर सीनियर, जूनियर एंड सो ऑन।
4: ओके, तो इस तरह से आपका ये ट्रांजिशन रहा। कभी आपने सोचा नहीं कि आपके इस जॉब नेचर की वजह से आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई?
5: मुझे कुछ इंटरेस्ट था कि बाहर घूमना और जाना, और मुझे कभी बर्डन सब नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कि इस बहाने हम भारत के हर किसी कोने में जा सकते हैं। और मेरी बहुत जगह पोस्टिंग रही, लाइक हैदराबाद, जयपुर और साउथ में, तो इस तरह से मैं ज़्यादातर एसोसिएटेड रहा कि मैं ट्रेनिंग देता था। बिकॉज शुरुआत में मैं जब 4-6 साल JNK में काम किया, पहली पोस्टिंग मेरी जम्मू कश्मीर में हुई।
4: क्या बात है।
5: और एक्सपीडिशन बेसिस पर हम लोग जाते थे
4: जी,
5: तो उसमें लगता था कि 6 महीने आप अपने घर से दूर हैं और कोई संपर्क का साधन नहीं, सिर्फ चिट्ठी पत्री द्वारा होता था। और हमारा एक डाक रनर लाता था
4: जी,
5: एक बार जाता था 3 दिन वापस आता था, फिर एक दिन स्टे करता था, उन दिनों 2 रुपए उसकी प्रतिदिन की मजदूरी होती थी।
4: अच्छा।
5: तो मैं कभी अपनी पत्नी को लिखता था कि तुम्हारा एक ही चिट्ठी आई है और ये सरकार को 14 रुपए पड़े हैं इस काम के लिए।
4: सही बात है, वो मतलब दौर क्या था, आज तो हम कुछ भी होता है व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, और बहुत सारे ऐसे अब तो माध्यम हो गए हैं इंटरनेट के जरिए, लेकिन आपके दौर में बड़ा चैलेंजिंग था।
5: बहुत।
4: लेकिन कहीं ना कहीं मैं सच कहूं तो बड़ा फैसिनेटिंग सोच के लगता है कि वो दौर भी बड़ा फीलिंगफुल था।
5: जी जी,
4: वो इंतजार का मजा जिसे कहते हैं।
5: जी जी।
4: तो सर अभी आपने कहा कि आपकी पोस्टिंग इंडिया में कई कई जगहों पे हुई, कोई ऐसी जगह की कोई बात जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है, वो जगह, वो प्लेस, वो स्टेट, कुछ भी ऐसा शहर जहां आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा जुड़ी और बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस रहा वहां का?
5: मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि 4-5 साल जब वहाँ इस तरह से किए, बहुत सारी उसमें घटनाएं मैं जिक्र कर सकता हूँ। जो दूसरी बुक है हमारी उसमें बहुत सारे इस तरह के संस्मरण हैं।
4: सर दूसरी बुक का नाम?
5: नहीं, जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एलिमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एक हमने टेक्स्ट बुक लिखी।

0: नहीं समझेंगे, बट बहुत छोटे में कोई बात कह दी जाती है और उसका मर्म समझ में आ जाता है बिना किसी और को, तो उसको मुहावरा बोलते हैं।
1: जी
0: जैसे कि मान लो ये कहा जाए कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा,
1: आंगन टेढ़ा,
0: तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि सब लोग समझ जाएं कि हाँ इनको कोई खास पता नहीं है, ये नखरे कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
1: सही बात है।
0: तो ये बजाय डिस्क्राइब करने के छोटी सी बात में हो गया। और इसी तरह लोकोक्तियों में थोड़ा बहुत ज्ञान की बात भी रहती है, जैसे कि हमारे एक घाघ कवि हुआ करते थे जिनको कि मौसम के बारे में बहुत ज्ञान था, तो उनके बहुत सारे इस तरह के प्रेडिक्शंस हैं कि जैसे जब भुइलोट चले पुरवाई तब जाने वो बरखा ऋतु आई, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की हवा होनी चाहिए, 80% 90% ह्यूमिडिटी, और पूरब से हमको मानसून मिलता है, हमको मतलब अवध प्रांत या आसपास, क्योंकि पहले मानसून तो साउथ वेस्ट से आता है तो वो बर्मा तक जाके वापस टर्न करता है, तो फिर पहले बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेता है, तो पहले बंगाल फिर बिहार फिर उत्तर प्रदेश, तो तब हमको इस तरह से। तो वो कहते हैं कि भुइलोट का मतलब है कि जमीन से थोड़ा बिल्कुल ऐसा लगे कि धूल उठा रही है, यानी कि बहुत मॉइस्चर है, और उसके बाद फिर पूरब से हवा चलेगी तो समझो कि बारिश है, जो बहुत सही है मौसम विज्ञान की वजह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
1: सर मतलब ये कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि ये एक अवधि लोकोक्ति है और उसके अलावा साइंटिफिक बात है इसमें।
0: जी जी जी बहुत,
1: मतलब परफेक्ट यही होता ही है ऐसा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसमें जो बुक में बहुत सारे इस तरह के हैं, मैंने उसका तब ये भी लिखा कि ये मुहावरा है या ये लोकोक्ति है और इसका क्या मतलब है। बात यह कि और दूसरे लोग हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में समझते हैं, अवधि वाले तो अवध प्रांत के ही लोग समझेंगे, जैसे गोंडा रायबरेली वगैरह।
1: जी जी।
0: तो और लोग के लिए हिंदी में फिर उसका हमने विवेचना किया कि इसका ये मतलब है, और फिर साइंटिफिकली उसको जोड़ा कि जो मौसम विज्ञानी है उसकी निगाह से इसका क्या मतलब है। तो बहुत बहुत अच्छा है। हमारे जो पुराने लोग थे जो अनुभवी थे
1: जी,
0: वो सचमुच बहुत ज्ञानी थे,
1: बहुत ज्ञानी थे
0: जी, ऐसा कहा जाएगा
1: बिल्कुल। तो सर ये बुक ये कैसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अवध
0: ये प्रभात प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया है
1: जी,
0: और ये भी अमेज़न पर उपलब्ध है।
1: क्या बात है सर। हाँ। किस नाम से आपने बताया, अवधि के मुहावरे एवं लोकोक्ति।
0: हाँ।
1: और आपका नाम।
0: जी जी।
1: बाय डॉक्टर जी एस श्रीवास्तव।
0: जी हाँ, जी
1: क्या
0: हाँ,
1: बात है, अमेज़न से आप। मुझे लगता है ये मैं बुक लेने वाला हूँ पक्का, क्योंकि
0: जी जी।
1: इस बेल्ट का मैं भी हूँ
0: जी,
1: और इस वक्त आपको सुन रहे हैं हजारों लाखों लोग
0: जी,
1: इस बात के लिए कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि अवधि जिस भाषा को हम आज भी बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं
0: जी जी,
1: बहुत पहले आपने इस पे एक बुक लिख दी।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत सर करबद्ध निमन आपको सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सर हम अगर आगे बढ़े तो बहुत सारी बातें तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं इसमें, और वापस से आते हैं, चूंकि हमने कहा ना सर ने जमीन से आसमान तक का सफर किया है, तो जमीन की बात हमने की, अब हम चलेंगे बादल से होते हुए आसमान की तरफ, यानी नासा के साथ आपने जो काम किया है, इंडिया से बाहर आप गए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, फिर वापस से आप क्यों इंडिया आए इसकी भी वजह हम जरूर जानना चाहेंगे, और कैसी रही आप आज अपनी जिंदगी को पूरी अगर उठा कर देखते हैं तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, सारी बात हम करने वाले हैं बस इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: जी, तो एक बार वापस से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM के शाम के शो गोधुली में, आपके अपने RJ अतनान। और आज हमने बताया, हमारे साथ आज डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर GS श्रीवास्तव सर हैं, GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। सर, हम बातचीत कर रहे थे लगातार और आपने बताया किस तरह आपकी पैदाइश रायबरेली में हुई, कैसे केमिस्ट्री में कम नंबर आने की वजह से, कुछ नया पैटर्न होने की वजह से आपकी, मतलब कह सकते हैं, डेस्टिनी वहां से बदली। आज जो कुछ भी है आप, वो उस दिन की घटना बहुत बड़ी जिम्मेदार है और उसके बाद इतना सब कुछ हुआ। अभी हमने श्रोताओं से बताया था कि CBSE में भी आपका काफी योगदान रहा है और सर आपने NASA के साथ काम किया। सर, इसको हम जरूर आपसे प्लीज अब जानना चाहेंगे।
2: तो मैं जब 5-6 साल जम्मू कश्मीर में काम कर चुके, तो एक बार मुझे बस ये हुआ कि हमको डिप्यूट कर दिया गया कि आप जाइए इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, उन दिनों IPI कहलाता था, देहरादून में
0: जी।
2: तो फिर वहाँ भेजा गया और ये नीदरलैंड्स सरकार से पोषित था और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कभी नीदरलैंड गए तो उस समय एक प्रोफेसर स्कर्मर हॉर्न, जो कि इसी विधा के ज्ञाता थे, वो इंसिडेंटली प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और उनसे फिर जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जो विकसित हो रहे देश, उनके लिए बहुत अच्छा है जी। इस तरह से IPI की स्थापना हुई। तो मैं वहाँ जब गया तो अपने बैच में मैंने उस वहाँ पर भी बहुत सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन उन दिनों फेलोशिप नहीं हुआ करती थी। तो फिर ये हुआ कि वो लोग कह रहे थे कि आप इसी में ही आ जाइए एज ए प्रोफेसर, लेकिन मैं GSI छोड़ नहीं सकता था, मुझे बड़ा लगाव था कि ये हमारा पुराना पेरेंट डिपार्टमेंट है।
0: सही बात।
2: तो फिर वहाँ पर जब तक अभी हो रहा था तो पता चला कि नहीं, 5 साल के लिए फिर से कुछ फेलोशिप शुरू हो गई, तो मुझे फेलोशिप मिली। तो मैं नीदरलैंड्स के लिए 1 साल की फेलोशिप पर चला गया और वहाँ पर इसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है एम्स्टरडैम के पास में, तो वहाँ पर हम लोग ये हो गए। और फिर नया इंस्टीट्यूट एक एंस्केडे करके जगह है जो जर्मन बॉर्डर पर है
0: जी,
2: तो नए इंस्टीट्यूट में हम लोग पहुँच गए और वहीं पर फिर मैंने पूरा ये काम किया। एक NASA का प्रोजेक्ट था जो स्काई लैब से संबंधित था और उसका डेटा हम एनालाइज कर रहे थे कि जो फोटो से आता है या जो डिजिटल डेटा है, वो दोनों पर मैंने काम किया और वो बहुत अच्छा काम था। और मेरा फील्ड वर्क स्पेन में था, तो हमारे प्रोफेसर हमारे साथ गए और बहुत जगह पर घूमते रहे और उनका आखिर में कमेंट था बराबर में, वो पूछते थे मैं कहाँ हूँ, मैं बताता यहाँ, वो ऐसे पूछते रहे। तो आखिर में एक जगह पर उन्होंने कहा कि आपको किसने जियोलॉजिस्ट बनाया तो मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसा ना हो कि तो कुछ गलती
0: हुई। तो नहीं होगी
2: हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यू शुड हैव बीन नेविगेटर, यानी कि आप आप किसी एयर कंपनी में नेविगेटर हो सकते हैं, क्योंकि लोकेशन एक बार भी गलत नहीं हुई,
0: नहीं हो रही है।
2: तो हमने बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में पहला काम यही बताया जाता है कि आप कहाँ पर हैं,
0: कहाँ पर
2: मैप पर।
0: वाओ,
2: तो बहरहाल दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस तरह से फिर मैंने साल भर वहाँ काम किया, और तब तक एक अपने देश में करीब करीब 74 की बात है तो एक एटम बम यहाँ पहला पोखरण वाला हुआ।
0: जी जी जी,
2: जिस पर कि पूरे यूरोप में प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी कि आपके पास खाने का नहीं है और आप एटम बम क्यों बना रहे हैं। तो मैं सिवाय इसके कहने के कि हम तो शांति कार्य के लिए इसको कर रहे हैं, ये एटम बम नहीं है, हम बिजली बनाने के उद्देश्य से इसको हम विकसित कर रहे हैं। जैसे कि भाभा, आपको याद होगा भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये काम पहले से शुरू हो रहा था, और हमें वो परमाणु कार्यक्रम इसी बात के लिए था कि हम आगे चल करके बिजली बनाएंगे, लेकिन वो किसी के गले उतरी नहीं। बहरहाल काफ़ी फजीहत रही और तो लेकिन उसके बाद सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जब आगे चल के आर्यभट्ट 1975 में आर्यभट्ट गया पहला सेटेलाइट
0: जी,
2: तो फिर उन लोगों ने बहुत इसको प्रशंसा किया कि भारतीय काफ़ी होशियार हैं और बिना किसी की मदद के, सिवाय इसके कि हमने रशियन कॉस्मोड्रोन से इसको छोड़ा था, बाकी टेक्नोलॉजी हमारी थी, तो उससे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि नहीं आप अब यहीं आ जाइए और हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हो जाइए। बट मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने देश में वापस जाऊंगा, क्योंकि ये जो ज्ञान हमने अर्जित किया है इसको हम इस काम में अपने देश के कार्य में लगाएंगे। तो फिर मैं इस तरह से वापस आ गया।
0: मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं ज्यादातर यूरोप कंट्रीज के नाम पर है, पर अगर उनको करने वालों को देखे तो इंडिया से कई लोग गए,
2: बहुत गए, बहुत गए।
0: और ऐसे ही एक आपको भी ऑफर दिया गया
2: जी,
0: कि
2: जी।
0: आप उन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं, जहां से मैंने सीखा और ये ज्ञान अगर हमें अपने ही देश में लगाया जाए तो बहुत अच्छा। सर ये देशभक्ति वैसे एक शब्द तो है, बोला तो जाता है बहुत अलग अलग तरह से।
2: हाँ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे जानना चाहिए। और उन लोगों ने फिर बाद में जब मेरी थीसिस सबमिट हो गई तो हमारे प्रोफेसर का और जो रेक्टर वहाँ, यानी कि आप कुलपति कह सकते हैं
0: जी,
2: तो उनका ये रिमार्क था कि ये थीसिस आईटीसी को $1 मिलियन लाएगी।
0: ओके,
2: यानी क्योंकि वो नासा का प्रोजेक्ट था और $1 मिलियन में वो हो रहा, जबकि हम लोगों को 800 गिल्डर मिलते थे। गिल्डर का मतलब उन दिनों 4 रुपए या 4.5 रुपए होता था
0: जी,
2: लेकिन हम लोग ये सोचते थे कि इस बहाने हमको सीखने को मिला और एक नया ज्ञान मिला, और इसलिए हमको इस काम को अपने देश में के विकास में इसको इस्तेमाल करना चाहिए।
0: वाओ, क्या बात है। मतलब आपने पहले सीखा और आपने फिर सोचा कि भाई इस ज्ञान को क्यों ना फिर अपने ही कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी भलाई के लिए। सर बहुत बड़ी बात है, नासा तक हम पहुंच गए, फिर आप वापस से आए
2: जी
0: इंडिया और GSI में आए आप, लेकिन साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। और इवन हम बता दें कि रिटायर होने के बावजूद आज भी आप
2: जी
0: ऐसी खिदमत कर रहे हैं, आप कॉलेजेस में जाते हैं।
2: उसमें इस तरह से हुआ कि UGC से मैं काफी संबंधित रहा
0: जी,
2: क्योंकि वो उनकी जो बहुत सारी ग्रांट्स वगैरह आती थी तो उनको इवेल्युएट करने के लिए, स्पेशली जियालजी वाली जो मामला रहता था तो उसमें मैं जानने लगा, तो मेरा इवेल्युएशन काफी ठीक ठाक रहता था। इस वजह से उन्होंने हमको करीब करीब पकड़ लिया और फिर ये कहा कि बहुत सारे वीमेंस हॉस्टल के लिए ग्रांट्स चाहिए होता है
0: जी,
2: और आप जाइए। तो पहली बार मैं उड़ीसा गया और वहाँ काफ़ी अंदर, बिल्कुल उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पर गया
0: जी,
2: तो लोगों ने जो वहाँ के प्रोफेसरान थे कि बाकी जो UGC के आते हैं वो लोग तो यहीं से बैठ के देख लेते, मैं कहा नहीं मैं तो वहाँ तक जाऊँगा और वहीं देखूंगा। तो फिर उन लोगों को भी सबको जाना पड़ा और वहां गए और यथा योग्य जो हमको लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो मैंने उसमें किया, और मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। और कई बार पत्रकार लोग आके बताते थे कि साहब यहाँ वो धांधली हुई फलाना, मैं कहा मैंने धांधली के विवेचना के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मुख्य बात यही देखना है कि हॉस्टल है कि नहीं और उसमें अच्छे से बाथरूम वगैरह ये सब हैं कि नहीं, और अगर पूरा है तो हम तुरंत अगला ग्रांट दे देते जो करोड़ों में होता था। लेकिन मैंने कभी कई बार लोगों ने इस तरह का कुछ ये किया कि यहीं बैठ के कर लीजिए और हम लोग सब आपका सब साधन और कुसाधन उपस मुहैया करा देंगे।
0: जैसे कहा जाता है।
2: हाँ, मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
0: क्या बात।
2: और आप कतई नहीं इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। बस अगर सब सही है तो मैं तुरंत ग्रांट कर दूंगा। तो इसी तरह से मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो गया और जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा ग्रहण की, और आप लोगों को याद होगा कि एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी कि जो छात्र दे रहा है इम्तहान वो इम्तहान लेने वाले से अच्छा है, और उनको 100 नंबर में 101 नंबर दिए गए। ये प्रतिभा राजेंद्र प्रसाद की थी
0: जी।
2: तो जब वहाँ पर हॉस्टल में गए तो हमने देखा कि कमरा वैसा ही है, तो पूरी टीम ने, ऑफ कोर्स उस समय मैं चेयरमैन नहीं था यूजीसी कमेटी का, कोई और थे, बट मेंबर था, तो हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि हम लोग 200 करोड़ की ग्रांट देंगे और इनको कहेंगे कि ये पूरा हॉस्टल रिनोवेट किया जाए, और सचमुच ही इस तरह हुआ। बहुत फिर इस तरह से वेस्ट बंगाल में भी बहुत जगह गए, बिहार में गए, किशनगंज वगैरह बहुत इंटीरियर इलाके में, वहाँ भी इसी तरह के थे कि भाई यहाँ साथ में कोई टाइप करेगा, कोई ये करेगा। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाई हैंड लिख लेता हूँ और फाइनल रिपोर्ट उसी दिन दूंगा। जब एक फाइनल डिनर होता था कुलपति देते थे
0: जी,
2: तो उसी में मैं दे देता था। इसके पहले किसी को भनक नहीं लगती थी कि क्या उसमें
0: इवैल्यूएट किया।
2: हाँ, और बहुत सारे लोग इस तरह के प्रलोभन रहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा मैं किसी प्रलोभन में नहीं आया।
0: क्या बात है। मतलब ये कहते हैं ना कि हर शख्स अगर अपना काम ईमानदारी से करे,
2: जी जी जी,
0: उससे ज्यादा बड़ी देशभक्ति और राष्ट्रहित में कोई चीज नहीं होती। कि आप जिस पोजीशन, जिस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से कर।
2: जी जी जी, बिल्कुल।
0: बहुत प्यारी बात सर। मतलब ये बात जान करके, क्योंकि इससे पहले हुई बात में ये बात सामने नहीं आई थी,
2: जी जी,
0: अभी आपने बताया तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है। सर, आप GSI में भी वर्क कर चुके हैं, ONGC में भी, NASA के लिए भी एक प्रोजेक्ट में आप गए थे, इतनी सारी चीजों को किया। आज का भी सिनारियो आप देख रहे हैं, जमाना बहुत बदला है।
2: जी
0: तब से
2: जी, बहुत।
0: आप एक स्टूडेंट लाइफ भी जी चुके हैं, अब जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहें?
2: मैं तो ये कहूंगा ऑल द बेस्ट, क्योंकि देखिए बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। हमारे अपने टाइम के अपने गुण दोष थे, कम्युनिकेशन नहीं था, चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी, टेलीफोन बहुत कम लोगों के पास था वगैरह। फिर धीरे धीरे क्रांति आती गई, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, फिर सब चीज़ें मुहैया हो गई। लेकिन मैं ये छात्रों को कहूँगा कि प्लीज़ अपने ऊपर टेक्नोलॉजी हावी ना होने दें, आप जो है अपने खुद के मालिक रहे। इससे जो हम अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं, गूगल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी के साथ बहुत खराब चीज़ें भी हैं। तो कृपया अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और हताश मत होइए। पहली बात, हमारे बच्चे आजकल बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, और जो कि उसका एक कारण है कि आप किसी से शेयर नहीं करते, और माँ बाप को कई बार फुर्सत नहीं रहती, दोनों कमा रहे होते हैं, कहीं दोस्तों कोई अच्छे दोस्त नहीं होते जिनसे आप शेयर करें। तो मेरा कहना है कि कई दोस्त बनाइए, कई अपने माँ बाप से शेयर करिए, और ऐसा मत समझिए कि फेल्योर का मतलब है कि आप लटक जाएं फंदे में, ये बिल्कुल गलत बात है। आप हताश मत होइए और अच्छी अच्छी बातें गूगल से लीजिए और अपने ऊपर हावी ना होने दें, ऐसा मेरा कहना है।
0: बहुत प्यारी बात। जैसे आपकी जो बातचीत है उसमें मैंने भी एक बात निकाली कि आप नासा तक जैसी संस्थान के साथ काम कर चुके हैं जिनके लिए हम सिर्फ पढ़ते हैं, और इसके बावजूद आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को हावी ना होने दें। फिर मुझे आपका वो पार्ट याद आता है, अवधि के मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो इतना बढ़िया फ्लेवर है इस जिंदगी का आपकी, इतना अच्छा टेक्सचर मिल रहा है कि एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ लिटरेचर है, तीसरी तरफ अपने देश के लिए आप वापस भी आए, अपनी फैमिली के लिए आपने डिसीजंस लिए, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ के जो अलग अलग आयाम थे, एस्पेक्ट्स थे, सभी को आपने अपना 100% देने की कोशिश की। मतलब सभी रोल में आप नजर आए, एक पिता के रोल में भी, एक पति के रोल में भी। क्या बात है, बहुत प्यारी बात। सर चूंकि अब तो बस लगभग समय हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूंगा कि डॉक्टर जी एस श्रीवास्तव सर की जो जिंदगी है, अगर मैं कहूं कि उनके मूल्य हैं जिंदगी के अपने, तो वो क्या है?
2: मैं समझता हूं कि आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करिए, ईमानदारी से करिए, और ईश्वर हमेशा आपकी हेल्प करता है। अगर आप आपके अंदर कोई और किसी तरह का, आप फोकस्ड रहिए अपने काम के प्रति और ईमानदार रहिए, बस ये दो मूल मंत्र जो हैं वो आपको बहुत दूर ले जाएंगे। हमारे बच्चों में भी शायद ये बातें आई हैं, वो लोग भी बहुत अपराइट हैं और
0: क्या बात,
2: कोई दाएं बाएं कोई नहीं कर सकता
0: नहीं कर सकते
2: है। और इसलिए वो बड़े बड़े ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं ईश्वर की कृपा।
0: बिल्कुल, कहते भी हैं कि असर होता है, और जब परवरिश इतनी बेहतरीन हो तो साफ नजर आता है। और बड़ी ही प्यारी आपने बात कही कि ईमानदार रहे और फोकस्ड रहे, ये चीज उनको लाइफ में हर वो चीज देगी जो उन्होंने सोचा है, और उससे बढ़कर भी देगी जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं है। बहुत प्यारी बात कही सर। बात करने को कई दिन आपसे अगर मैं करूं तो सच कहूं वो भी कम पड़ जाएंगे
2: जी।
0: क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। बस जितनी बातें हमने की, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं तक साफ तौर पर पहुंच चुकी हैं। और कहीं ना कहीं हमारा बातचीत का अंश ये था कि अगर आज के युवा कोशिश करते हैं, आप रायबरेली जैसे बहुत छोटे से शहर से निकले और आप नासा के प्रोजेक्ट तक साथ में काम करने गए, आप इतने बड़े डेजिग्नेशन पे भी रहते हुए ना आप अपनी चीजों को भूले, आप जमीन से जुड़े रहे, आप साहित्य से जुड़े रहे, आप अपनी जिंदगी के मूल्यों से जुड़े रहे, और आज आपके बच्चों में भी वो चीज आ रही है, तो मैं कहूंगा कि सर आपने एक सफल जिंदगी जी है। और शायद आज जब आप वापस मुड़कर देखते हैं पूरे सफर को, तो कहीं ना कहीं एक दिल में सेटिस्फेक्शन जरूर रहता है। और मुझे लगता है एक लाइफ के लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट हो नहीं सकता कि जब मुड़कर देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ मिले।
2: जी धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच सर। और हमारे श्रोताओं से हम कहेंगे कि भाई आपको ये आज का टॉक शो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए। डॉक्टर जी एस श्रीवास्तव सर से हमने बातचीत की, जो कि बताया आपको कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड रह चुके हैं GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और एक बार वापस से हम अपनी तरफ से, इस पूरे FM स्टूडियो के तरफ से, और साथ ही साथ गोंडा की तरफ से, लिसनर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर।
2: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जैसा भी लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। और हाँ, सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: मेरा मेरा मेरा इस मामले में ये कहना है कि नो कमेंट।
1: सर आप प्रेस को बुलाकर कहते हैं नो कमेंट।
2: मगर सर क्या ये सच नहीं है कि आप ही जॉर्डी की अगली एल्बम रिलीज कर रहे हैं, जो गाने उसने आपके लिए यूरोप में रिकॉर्ड करे थे?
1: नो कमेंट।
3: मार्केट में एल्बम खुलता है और आर्टिस्ट जेल के अंदर। दिस इज माय विजन।
4: इस आंगन में खेलने वाला लड़का आग सलाखों के पीछे है।
3: नेगेटिव चलता है मीडिया।
4: पीतमपुरा का ये वही घर है जहाँ से जॉर्डन को धक्के

बहुत साल पहले यहाँ एक जंगल होता था, घना भयानक जंगल। फिर यहाँ एक शहर बन गया, साफ सुथरे मकान, सीधे रास्ते, सब कुछ तरीके से होने लगा। पर जिस दिन जंगल कटा, उस दिन परिंदों का एक झुंड यहां से हमेशा के लिए उड़ गया, कभी नहीं लौटा। मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूं, किसी ने देखा है उन्हें? देखा?

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

सिंड्रेला भाई, सिंड्रेला का सपना तो सबने देखा होगा और सिंड्रेला की कहानियां सुन के तो बड़े ही हुए होंगे हम लोग, लेकिन कहानियों पे जब हम जाते हैं तो हमारे हिस्ट्री में क्या कम कहानी है जो सिंड्रेला को पढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल सिंड्रेला तो हमारी मतलब फैंटेसी रही है, लेकिन भाई अब मैं बात करूँगी हमारे ट्राई कलर की। भाई आज है आपका 22nd of July और 22nd of July को आर जे बीना आपके साथ है लाइव। 6:03:30 पे हो चुकी है शुरुआत आज की शाम की आपके फेवरेट वाले शो गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला की। और मैंने कहा ना कि इतिहास से थोड़े से मैंने मतलब पन्ने खोलने क्या चाहे और मुझे पूरा इतिहास याद आ गया। फिलहाल आपको बता दूं कि आज वो दिन है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला दिन है, मतलब वी हैव टू फील प्राउड टूडे बिकॉज आज ना सिर्फ एक स्पेशल डे है बल्कि हम सभी के लिए हमारे इतिहास का वो स्वर्णिम मतलब अवसर है जिसको कहते हैं ना कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी हाँ, आज है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, यानी कि आज ही के दिन हमने अपना जो देश का झंडा है उसको अडॉप्ट किया था और ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। 22 जुलाई 1947 को भारत संविधान की जो कहते हैं ना कि पराकाष्ठा को अपने पग में ला रहा था और वापस से स्वतंत्र होने के पायदान पे चल रहा था। स्वतंत्रता के कुछ ही दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया और आज का दिन खास है क्योंकि ये भारत की संविधान सभा द्वारा स्वसम्मत से स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्र ध्वज द्वारा अपनाया गया। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को अगर समझने की कोशिश की जाए तो हमें लगता है कि हमारा राष्ट्र ध्वज तो ऐसे ही किसी ने बना दिया होगा, लेकिन नहीं, राष्ट्र ध्वज की अगर कहानी समझने बैठ जाए ना तो एक लंबा समय लग जाएगा इसको समझने के लिए। तिरंगे की जो मूल जो रूपरेखा है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी, वेंकैया नाम था इनका। 1931 में कांग्रेस ने तिरंगे का जो स्वरूप है उसको स्वीकार किया था। 1947 में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल करके वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। केसरिया रंग साहस त्याग और वीरता का, सफ़ेद सत्य शांति और ईमानदारी का, और हरा रंग समृद्धि विकास और प्रकृति से जुड़ा हुआ। तीनों रंग अपने आप में एक कहानी लिखते हैं, हर किसी की वो कहानी जो सबकी कहते हैं ना कि जिंदगी के पन्नों पे फिट बैठती है। तिरंगे के महत्व की बात करें तो तिरंगा हमारे देश की एकता अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक भी है। स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों और देशवासियों के सम्मान का प्रतीक माना गया है हमारा तिरंगा। हर भारतीय के लिए ये गौरव सम्मान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तिरंगे को आज़ादी मिलने से पहले या कहें आज़ादी से पहले तिरंगे को अपनाना एक बड़ी पहल थी, लेकिन पहली बार जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ये फहराया गया तब इसका जो गौरव था वो और बढ़ा। भले 22 जुलाई को बन के तैयार हो गया, अपना लिया गया, सब कुछ हो गया, पर जो कहते हैं ना कि फीलिंग है स्वतंत्र आसमान में उड़ने की वो 15 अगस्त को ही आई। सबसे खास चीज ये है कि हर देश का अपना अपना ध्वज है और हमारे देश का ध्वज हमें पता नहीं क्यों बार बार गौरवान्वित करता है। जब भी कोई जीतता है, जब कोई मेडल लाता है, जब देश अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ता है तो तिरंगा ही तो पहचान के रूप में सामने आता है। तो चलिए तिरंगे को सम्मान देते हैं और एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं अपने ट्राई कलर वाले तिरंगा के लिए। बस आज के दिन मैं एक ही निवेदन आप लोगों से करूंगी कि झंडे खरीदने का हम सभी को शौक है और इसे शौक ना बनाएं, इसको सम्मान के रूप में अगर हम लोग अंगीकृत करें तो तिरंगे के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तिरंगा खरीद के इधर उधर फेंकना मुझे लगता है कि अपमान की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए गाने की शुरुआत करते हैं आज की शाम के लिए और आज
आपको पता है आपका दिन है, तो चलिए आप लोग क्या करने वाले हैं ये तो मुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चाटू में भी धीरे धीरे लोग दिखने लगे हैं, सोनिया दिख गई हैं, सोनिया तिवारी गुड इवनिंग। सोनिया 7:45 का आप इंतज़ार करें, 7:45 पे आपकी फरमाइश डेफिनेटली प्ले हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आप लोग के साथ, जो हमें हमारे तिरंगे से और जुड़ेगा। ठीक है, लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्रेक।

नाचना जरूर है, माँ मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना।

सो जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आज तिरंगा के अंगीकरण का खास दिन है और आज ही के दिन हमारा ये खूबसूरत तिरंगा अंगीकृत किया गया, और ना सिर्फ अंगीकृत किया गया बल्कि हमारे तिरंगे को वो पहचान मिली जिसके लिए तिरंगा तरस रहा था। और मैं अगर बात करूँ तो कहते हैं, छूता है आकाश तिरंगा, बादल के है पास तिरंगा, भारत की है आज तिरंगा, छूता है आकाश तिरंगा। भातर कहते हैं, भातृ का, बहन का, माता पिता का प्रेम है तिरंगा। दूर हवा में लहराता तिरंगा, सूरज को चमकाता तिरंगा। हम गाते हैं इसका गाना, जनगण मन है गीत सुहाना, इस झंडे के नीचे आना है अभिमान हमारा। जब गुलाम था भारत प्यारा, तब झंडा था यही सहारा, इस झंडे से दुश्मन हारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगे ने है की कुर्बानी, उनकी ही ये ध्वजा निशानी, वे थे सब स्वदेश अभिमानी। हम सबसे है बड़ा तिरंगा, अडिग भाव से खड़ा तिरंगा, सबके मन में चढ़ा तिरंगा, सबके मन में चढ़ा तिरंगा। केके जी, तिरंगा कॉम्प्लेक्स के ओनर भाई जो भी हैं, आपसे मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत खूबसूरत नाम रखा, या आप अगर कॉम्प्लेक्स में हैं तो आप बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए, क्योंकि आज के दिन तिरंगा को अपनाया गया था। ये तिरंगा जो आज 15 अगस्त, 26 जनवरी और हर उस महान मौके पे फहराया जाता है जब देश के स्वाभिमान की बात होती है। गुड इवनिंग सारे लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग धर्मेंद्र मोहन, आवाज विकास से आपका स्वागत है। सबलू कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत है। सोनिया गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? और केके जी गुड इवनिंग, धर्मेश त्रिपाठी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और लिखते हैं कि सबलू जी की जनता से सरकार है, फिर जनता फिर सुरक्षित नहीं, जनता पुलिस ने काफ़ी अत्याचार किए, जंतर मंतर पर भारी भीड़ के कारण दिल्ली पुलिस ने निषेधाज्ञा धारा 163 लागू करते हुए संसद मार्च की अनुमति देने से इनकार किया। इसके अलावा ये सब जो न्यूज़ की बातें हैं, इन सभी को हम लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार को जो सही लगेगा वो करेगी और हम इसके साक्षी बन के साथ रहेंगे। और मुझे गाना जो बचपन में मुझे कई बार सुनाया जाता था, और मुझे ऐसा लगता है कि हम गर्व से इस गाने को गाते थे, और वो था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला,

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्कूलों में हर जगह हमने इस गीत को सुना है और दिल से जब भी इसको गाया होगा तो स्वाभिमान तो महसूस किया ही होगा हमने कि स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर बढ़े जोश क्षण क्षण में, कांपते शत्रु देख के मन में मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पा।

0: झंडा ऊंचा रहे हमारा।
1: तो ये तो बात हो गई हमारे तिरंगे की, लेकिन आज मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आज है वेंसडे और अंताक्षरी वाले दिन को तो हम लोग नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो फटाफट से लड़के और लड़कियों की टीम अगर रेडी है तो रेडी स्टडी गो होने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे जैसे आपके यस आ जाएंगे मैं आपको रूल बताना शुरू कर दूंगी। फटाफट से टीम ए और बी के मेंबर्स लिख के भेज दीजिए, आप लोग जल्दी से यस टाइप करके भेज दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए दोनों ही टीमें रेडी हैं। और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और शुरू करते हैं आज की अंताक्षरी और यार आरजेबीना वाले स्टाइल में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए, गर्व महसूस करते रहिए अपने तिरंगे पर। और अगर आप हमारे देश से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली सुनते रहिए 93.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, आपके साथ आरजेबीना मौजूद है, आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजेबीना वाले के साथ।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

तो चंदा को नीचे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चांद सितारे ऑलरेडी चैट रूम में अवेलेबल हैं। और मुझे पता है आप लोग के साथ ये शाम बहुत ही रंगीली है, और इस रंगीली शाम में मैंने जैसा कि बताया कि लड़के और लड़कियों की टीम ऑफ कोर्स रेडी होगी, और रेडी होने के साथ देखें किसका किसका मैसेज आ चुका है। वैसे दोनों ही टीमें बराबर दिख रही हैं, और सबके साथ सबका मतलब कहते हैं ना, आवाज़ सुनने का टाइम आ चुका है। तो आगे बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस इवनिंग को सेलिब्रेट करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वाइब बहुत अच्छी आ रही है, ठंडी हवा बाहर चल रही है, और इस ठंडी बहती हवा के साथ सुरों का जो मेल है वो बेहतरीन है। तो आर यू रेडी? सो रेडी हैं तो फटाफट से पहले रूल समझ लें। फर्स्ट राउंड में हम लोग लेटर राउंड रखेंगे। लेटर मतलब जिसकी टीम गाना गाएगी उसे पहला लेटर मैं ही दूंगी, और नेक्स्ट लेटर भी आपको आपकी टीम देगी, मतलब मैं ही दूंगी। तो फिलहाल आप लोग अपनी अपनी टीम से जल्दी से आ जाइए। देखिए सविता दुबे भी आ गई हैं, गुड इवनिंग सविता जी। तो अंताक्षरी खेलने के लिए सभी के सभी रेडी हैं, मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी स्किप करने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम आपको भोजपुरी अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा खल गया था बिकॉज आप लोग थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, गाने सुनने के तो शौकीन हैं अवधी और भोजपुरी, बट यू आर नॉट फ्लुएंट टू सिंग या कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से कॉन्फिडेंट फील भी करा दूंगी, आप परेशान ना हो, आपके साथ आरजे बीना आपके लिए अवेलेबल है। और चलिए बताइए कैसे हैं आप सभी, और इस शाम की बेहतरीन शुरुआत करते हुए मैं पहला लेटर जो है वो कॉल करने वाली टीम को ही बताऊंगी।

तो एक बार की बात है कि मैं ऐसे बैठी हुई थी और मुझे सोचते हुए एक चीज़ समझ आई कि यार लाइफ में कितना भी भाग दौड़ लें हम लोग, लेकिन एक समय एक ऐसा होना चाहिए, टाइम पूरे टाइम में ऐसा होना चाहिए, पूरे 24 आवर में एक समय ऐसा होना चाहिए जब हम सिर्फ खुद के लिए बैठे हों। खुद के लिए मतलब, हाँ अब आप ये कहेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो खुद के लिए ही तो कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो खुद के लिए ही तो खा रहे हैं। नहीं, जब आप सोच सकें, जब आप खुद से खुद को मिला सकें, थोड़ा समय ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब खुद से खुद की पहचान होगी तभी तो जज्बातों की शुरुआत होगी। क्या बोलते हैं, क्या बात, मतलब सही बात है कि नहीं है? मुझे बिल्कुल सही लगता है ऐसा कि मतलब हमें समझना चाहिए भावनाओं को। और चलिए, आप लोग का इंतज़ार तो कर लिया मैंने, लेकिन इंतज़ार के साथ मुझे ये बात तो याद ही है कि आज स्पेशल डे की बात हो चुकी है और एक और ख़ास दिन की बात करने वाली थी मैं, लेकिन मैं सोचा कि कुछ आपको और बता दिया जाए। कि एक मज़े की बात आप समझिए कि आपने तंबाकू के बारे में तो सुना होगा, टोबैको। हाँ, वही वही जो जिसे हमारे यूपी बिहार में सुरती कहते हैं, ठीक है? तो इनकी भी एक स्टोरी है अपनी। एक बहुत बड़े से बिजनेसमैन थे, उनका नाम नहीं मैं ऑन एयर लूंगी, नहीं बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। तो उनका जो था सिस्टम ये था कि उन्होंने कुछ डॉक्टर से बात की और अपने मतलब यूएस के ही थे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और वो वहाँ से उन्होंने महसूस किया कि यार तंबाकू का बिज़नेस शुरू करना चाहिए और तंबाकू काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ है जिससे कि अच्छा मतलब इनकम हो सकता है। तो उन्होंने डॉक्टरों से बात की, मतलब जैसे कहते हैं ना कि तंबाकू तो सेहत के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने डॉक्टरों से क्या बात की, उन्होंने डॉक्टरों को खूब पैसे खिलाए और वहाँ के डॉक्टर्स ने एक बढ़िया सा रिसर्च पेपर निकाल दिया कि तंबाकू खाने से सेहत अच्छी होती है, सांस लाने लेने में दिक्कत नहीं होती, ये सब चीज़ें करके उन्होंने निकाल दिया। तो जैसे कोई इंसान वहाँ पे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले कि दवाइयाँ तो काम करेंगी लेकिन एक काम करिए आप, तंबाकू ये क्या कहते हैं ये वाली सिगरेट पीना शुरू कर दीजिए, इसमें ये वाली तंबाकू रहती है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे करते करते लोगों ने इसको मतलब कंज्यूम करना शुरू कर दिया क्योंकि डॉक्टर लोग सलाह दे रहे थे इसकी। फिर जो लोग जो डॉक्टर मतलब बेसिकली उन्होंने पैसे नहीं खाए थे, उन लोगों ने देखा कि भाई ये तो एक नशे की शुरुआत हो रही है, एक तरह से टोबैको कंज्यूम करना तो नशा ही है। तो फिर उन्होंने दोबारा रिसर्च पेपर निकाला, उन्होंने बताया कि टोबैको मतलब एक बाकायदा एक्सरे निकाला, जिस इंसान ने 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल सिगरेट कंज्यूम किया था उसके फेफड़े की मतलब पूरा एक्सरे वगैरह निकाल के लगाया, तब लोगों को जाके पता चला नहीं भाई ये तो नुकसानदायक चीज़ है। तो अगर इंसान चाह ले तो अपनी बुरी चीज़ को भी अच्छी चीज़ बता के दुनिया में बेच सकता है, ये मार्केटिंग पॉलिसी है। और अगर आपकी कहते हैं ना कि आपको चोरी करनी है और आप पुलिस से सेटिंग कर लें तो आप चोरी करने में आपको आसानी होगी, तो ऐसा ही जनाब ने किया था। अभी उनका नाम नहीं बताऊंगी, बड़ी महंगी सिगरेट आती है उनके नाम से, आपने सुना होगा नाम। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता, भाई मैं भी रिसर्च पेपर ही पढ़ रही थी तभी मुझे पता चला। तो भाई लोगों के कहने बहकावे में बिल्कुल मत आइए, आप करिए वो जो सही आपको लगे। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपको कह देंगे भाई तूने तो सही किया यार, तूने सर फोड़ दिया, सही किया यार, सही किया ना। सही वो नहीं जो सब बता रहे, सही वो है जो आपको लगे, जो करने के बाद अपनी आंखों से आप आंखें मिला सकें, सही वो है जिससे करने से किसी को नुकसान ना पहुंचे, सही वो है, ठीक है ना, इनफैक्ट आपको भी नुकसान ना पहुंचे। गुड इवनिंग सविता शास्त्री जी, कैसी हैं आप? तो भाई कॉल करने वाले अभी रेडी नहीं हुए, किसी टीम का भी कॉल नहीं आया, इसका मतलब क्या है आप लोग अभी सोने में लगे हैं? कोई बात नहीं, सो के उठ जाइए और मैं भी थोड़ा सा आप लोग की वार्म अप सॉन्ग प्ले कर देती हूँ जिससे आपको याद आ जाए कि अंताक्षरी शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, और अगर आप लेट में गाएंगे तो लेट तक अंताक्षरी नहीं चल पाएगी और टीम कहेंगी मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन चलिए, हर जन्म में रंग बदल के मैं तो आप लोग के साथ मिलती ही रहूंगी, आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो आपको सोच के बताना है। तो चलिए सुनते हैं रब ने बना दी जोड़ी से ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ।

0: तो चलिए अब ना जाएंगे ना आने देंगे किसी और म्यूजिकल ब्रेक को, और अब शुरुआत करेंगे आपके साथ एक प्यारे से गाने की। तो पहला लेटर जो मैं आप लोग के पास उछाल रही हूँ, या कहें मैं एक पहला जो लेटर आप लोग को देना चाह रही हूँ, वो है क। क से गाना सुनाने वाले दावेदार सबसे पहले कॉल करें, और देखिए कॉल आ भी गया तुरंत, मतलब क्या टाइमिंग है। चलिए देखते हैं, आवाज सुनते हैं किस टीम से कौन है। नमस्ते सुनते ही पता चल गया,
1: नमस्ते मैम,
0: टीम ए से कोई है। तो नमस्ते, और मैं आवाज अगर पहचान पाऊँ तो निशा बोल रही हूँ। गुड इवनिंग निशा, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, गुड इवनिंग, आप ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी आपसे बात कर रही हूँ। अंताक्षरी,
1: क्या हो रहा है?
0: कुछ हो नहीं रहा है, बस अंताक्षरी शुरू हो गई और आपने लड़कियों की टीम से कॉल कर दिया। अब आपको क से गाना सुनाना पड़ेगा, नहीं तो क क क क क
1: से जी आपसे एक बात कहना है।
0: मुझसे एक बात कहनी ऑन एयर? आप क्या कहने वाली है? ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगी कि मेरे दिल की धड़कने रुक जाए।
1: ये कह रही कि मैं कौन
0: नहीं नाराज नहीं हो गई थी, बस म्यूजिकल ब्रेक ओवर होने का इंतजार कर रही थी। तो गाना खत्म हुआ तो आपका कॉल रिसीव हुआ, और आप बताइए गा से गाना कौन सा सुनाएंगी?
1: हिंदी में?
0: हाँ, गा से हिंदी में ही गाना सुनाना है आपको।
1: जी हम कोशिश करते हैं।
0: का

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत गाना आपने गाया। और थैंक
1: यू। अपने शहर वाले बर्बाद हो रहे
0: बस इतना ही। ओके थैंक यू सो मच, वैसे इतना काफी है, आपकी टीम को पॉइंट दिला देंगे। थैंक यू निशा। तो निशा ने अपनी लड़कियों की टीम को भाई पॉइंट्स दिला दिए, और अब देखते हैं किसका कॉल आता है। और कॉल का इंतज़ार बरकरार है और लगातार मुझे लग रहा है कॉल्स आने वाले हैं। तो शुरुआत हो चुकी है अंताक्षरी की, एंड आज हमारे साथ कौन कौन है, कमल हैं, अनिल शास्त्री जी हैं, और गोरखपुर से आप हमें सुन रहे हैं, क्या बात है। और कमल नयन भी हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं। कमल जी आप कहाँ से सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए। आप थोड़ा इधर उधर मतलब होते रहते हैं, मतलब ऐसे तो आप गोंडा से ही हैं मुझे पता है, पर अभी कहाँ हैं ये तो आप ही बता पाएंगे। तो चलिए, सब लोग दूर दूर से, दूर देश से लोग सुन रहे हैं। और देखिए शाम सुहानी हो चुकी है, और इस सुहानी सी शाम में आप लोग की आवाज़ में कुछ गाना सुनने का मतलब मन है। और म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक एक फीलिंग एक्सप्रेस करने का ज़रिया भी है, चाहे दुख की बात हो चाहे खुशी की बात हो, हर चीज़ के लिए अलग अलग म्यूज़िक अवेलेबल हैं। आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा म्यूज़िक है। तो आज थोड़ा से म्यूज़िक के इतिहास की बात कर लेते हैं, कहाँ से कैसे इतिहास में आया हमारा संगीत। फिलहाल संगीत कहाँ से आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉल आ गया है वो मैं आप लोगों से शेयर करती, फिर इतिहास की बात भी करूँगी, वो मैं लेके आई हूँ कहाँ से आया। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या।
2: और कैसी है मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं अनिल जी, आपकी आवाज़ पहचान पा रही हूँ मैं।
2: जी हाँ।
0: न से गाना सुनाना है आपको।
2: न से
0: नल।
2: अच्छा तो फिर मैं सुना देता हूँ।
0: जी जी स्वागत है।
2: निगाह मिलाने को जी चाहता है, निगाह मिलाने को जी चाहता है, निगाह मिलाने को जी चाहता है। थैंक यू।
0: क्या बात है, और आपने बहुत खूबसूरत गाना चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करूंगी कि आगे भी आपकी जो डायरी है, मतलब इमेजिनेशन की डायरी, उससे अच्छे अच्छे गाने निकलेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद। तो अनिल जी की आवाज़ में हमने गाना सुन लिया, और अब देखते हैं अब किसकी बारी है, और बारी जिसकी भी है वो फटाफट से कॉल करता रहे। और आज किसी को मतलब आज रपट जाए तो हमें ना भूले, मतलब अगर आपका कॉल रिसीव नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, लेकिन आज अगर आप टाइम से कॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉल रिसीव होगा। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, बैक टू बैक कॉल आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि किसी को भी ऑन एयर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अभी कॉल देखते हैं किसका है। हेलो हेलो,
3: शुभ संध्या मैडम।
0: शुभ संध्या, गुड इवनिंग, कैसी हैं शिल्पी जी, स्वागत है आपकी आवाज़ का।
3: धन्यवाद धन्यवाद, बढ़िया है, आप बताइए।
0: मैं भी बिल्कुल खुश हूँ, और आप लोग की आवाज़ सुन के ओहो मंत्रमुग्ध हो रही हूँ।
3: अभी आपकी भी आवाज़ सुनना हम लोग पसंद करेंगे।
0: हाँ बिल्कुल, त से गाना सुनाइए आज आप।
3: त से तुम्हारी नजरें क्यों खपा हो गई,

0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और लिरिक्स थोड़ी सी इधर उधर हो गई, लेकिन
1: तुम्हारी नजर खुद खता हो गई।
0: कोई बात नहीं, कहीं भी खता हो जाए, लेकिन आप इतना सुरीला गुनगुना देती है ना, हमारी नजर हमसे जुदा हो जाती है, क्या कह रहे। थैंक यू सो मच। तो शिल्पी जी की आवाज हमने सुन ली, अगले कॉलर को ऑन एयर करते हुए आवाज सुनते हैं किसकी है। हेलो
2: हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपकी आवाज पहचानने की कोशिश करती हूँ। श्रीदेवी जी हैं क्या?
2: जी।
0: ओहो श्रीदेवी जी, देखा मैंने आपको पहचान लिया। चलिए सुनाइए गाना माँ से।
2: माँ से,
0: माँ से।
2: हेलो
0: जी जी, माँ से, माँ से, माँ से,
2: माँ कहेगा ना,
0: माँ से, माँ से, माँ से, मछली।
2: अच्छा ये बात है, बता रहे हैं।
0: माँ से माधुरी दीक्षित।
2: हाँ एक मिनट टाइम दीजिए।
0: टाइम तो नहीं मिल पाएगा,
2: मैं ना भूलूंगा वाला।
0: हाँ सुना दीजिए, मैं ना भूलूंगा ही सुना दीजिए।
2: हेलो
0: जी श्रीदेवी जी, बहुत समय आप ले रहे हैं, जल्दी से आप गाना सुनाइए। हेलो श्रीदेवी जी, सो वी आर अनेबल टू हियर हिम। और अगले कॉलर को मैं ऑन एयर करती हूँ, देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो
3: नमस्कार, शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, कैसे हैं सब्बू सामंत जी? और जैसा कि माँ से गाना सुनाना था और श्रीदेवी जी नहीं सुना पाए आपकी टीम से, तो मैं आपको लेटर फॉरवर्ड करना चाहूंगी।
3: जी बिल्कुल, कौन सा वर्ड है?
0: लेटर है माँ, माँ से सुनाना है।
3: मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जरा कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच सबू जी, और आपकी टीम को आपके इस गाने की वजह से पॉइंट मिल गया, थैंक यू सो मच। सो सबलू जी की आवाज़ हम लोगों ने सुन ली है, और अब देखते हैं किसका कॉल आ रहा है। लगातार कॉल आ रहे हैं, मतलब नो ब्रेक, नो ब्रेक एट ऑल। और मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा सुनते भी रहिए, क्योंकि बैक टू बैक एक ही टीम के मेंबर्स के अगर कॉल आ जाएंगे ना, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। चलिए सुनते हैं अगली आवाज़ किसकी है। हेलो
4: हेलो
0: हेलो, अगेन हमारे साथ मौजूद है हमारी सविता जी। कैसी हैं सविता जी, क्या हाल है? थोड़ी थोड़ी इधर भी हो रही होगी, क्या बताऊँ, मैंने तो देखा नहीं अभी। तो चलिए आपको मैं लेटर देती हूँ गाने के लिए।
4: लेटर क्यों,
0: यहाँ
4: से छोड़ा था ना
0: गाना? चल से गाना सुना, नहीं छोड़ने वाला सिस्टम नहीं है, पकड़ने वाला सिस्टम।
4: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: मैं आपको लेटर दूंगी, मैं लेटर दूंगी, बस आपको पकड़ लेना है। चल से सुनाइए।
4: जी जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
0: क्या बात है,
4: बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम।
0: क्या बात है, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, अगर आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए सविता जी की आवाज़ हम लोगों ने सुन ली, और इन्हीं के साथ इनकी टीम को पॉइंट भी मिल जाता है। अगले कैंडिडेट की आवाज़ सुनने की बारी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
5: शुभ संध्या बीना जी।
0: शुभ संध्या, काफी दिनों बाद हमारे साथ अनूप जी मौजूद हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं?
5: मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको मैं लेटर देना चाहूंगी। था से गाना सुनाइए।
5: था से थर्मस वाला?
0: हाँ था से थर्मस।

0: जिंदगी फिर भी कितनी खूबसूरत है, थोड़ा है। हाँ बेटा क्या कहा है, तुम्हारी अंगूठी अच्छा भी दे रहा है, थोड़े की जरूरत है।
1: थैंक यू सो मच, क्या बात है। तो भाई थोड़े की ज़रूरत ही थी और थोड़े ही गाने से आपको पॉइंट मिल जाएगा, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। और आज सच्ची बताऊँ आप लोग का एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और चलिए देखते हैं अभी किसकी आवाज़ है और इसी के साथ सुनते हैं आवाज़ किसकी। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: जी शुभ संध्या, मेरा शुभ नाम है अविनाश चली त्रिपुरा से।
1: ओहो अविनाश जी, कैसे हैं, क्या हाल है?
2: जी बहुत बढ़िया है, आप बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपके लिए लेटर सोच के बैठी ही थी। या से गाना सुनाइए आप।
2: या से
1: जी जी
2: ठीक है, ये सब सुना लेते हैं, एक बढ़िया सा गीत। इस दुनिया में देश कहीं
1: या से
2: हाँ तो इसमें, अच्छा तो इसमें देखिए या सब आता ना इस मतलब कि इसमें, अच्छा ठीक है तो नहीं मानते तो ठीक चलिए।
1: इस दुनिया में तो वो तो ई से शुरू होगा ना।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, ये सुना देते हैं या से। यारा वो, अच्छा
1: बिल्कुल सही गा रहे हैं आप, ये तो सही है। या
2: ही अच्छा यारा वो यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे बिछड़ के ये दिल न रह पाएगा। थोड़ा सा तो पागल थोड़ा सा दीवाना, तुझे दिल में रख के तुझे दिल में रखना। हो यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे बिछड़ के ये दिल न रह पाएगा।
1: थैंक यू सो मच, क्या बात है, क्या बात है अविनाश जी, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आप गाने भी बहुत अच्छे सेलेक्ट करते हैं, थैंक यू। तो अविनाश की आवाज़ में हमने सुन लिया है गाना और अब बारी है नेक्स्ट कॉलर की, चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ अगले कॉलर। इतने सारे कॉलर्स आज तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे बौछार हो रही है कॉलर्स के एक साथ।
2: हेलो
1: चलिए लड़कियों की टीम से हमारे साथ हैं शिल्पी जी वापस और चलिए इनकी आवाज में हम सुनेंगे गाना स से।
3: हाँ

0: कहूँ।
1: ओह माय गॉड, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाया आपने और मतलब सच्ची इस गाने को फील किया मैंने। थैंक यू सो मच। तो शिल्पी जी ने इतना सुरीला गाना सुना दिया और भाई सबका कॉल आ रहा है। और देखिए इस बार मैंने ये रूल तो बिल्कुल हटा दिया है कि इंसान मतलब कॉल करेगा तो मैं टीम वाइज लूँगी, मैं जिसका भी कॉल आ रहा है मैं उसकी टीम को पॉइंट दे दे रही हूँ। तो इससे ये होगा कि सबकी टीम को मौका मिलेगा। और जो कहते हैं ना कि हेलो हेलो, एक कॉल आया और मुझे लग रहा है कॉल डिस्कनेक्ट भी हो गया। और देखिए बड़े सारे कॉल एक साथ आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब आज बहुत अच्छे से खेलने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
2: हाँ नमस्ते,
1: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं
2: सुरेश कुमार?
1: शुभ संध्या, कैसे हैं सुरेश जी, स्वागत है आपकी आवाज़ का। पहले तो
2: आप ठीक हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मैं अक्षर दूँ?
2: हाँ दीजिए।
1: रस से सुनाइए कोई गाना।
2: रात से?
1: जी
2: हेलो,
1: जी जी रात से, रात से,
2: रात से। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो रही तेरे मंजिल का, न

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेश जी, इतना खूबसूरत सा गाना। वैसे आपने जब रुक जा कहा तो मुझे लगा ये वाला आप गाना सुनाएंगे, रुक जा चांद। मुझे लगा आप शायद ये गाना,
1: बहुत दिल एक मंदिर का था वो गाना जो आपने बताया।
0: क्या बात है, फिलहाल आपने जब ये वाला गाना सुनाया तो मैंने कहा वाह क्या बात है, एक और अच्छा गाना सुनने को मिल गया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, सुरेश जी की सुरीली आवाज़ में हमने एक बेहतरीन गाना सुन लिया, और लगातार बैक टू बैक गानों का जो ये सफ़र है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आज हम सुरों की दुनिया में ऐसे खेल रहे हैं, और खेलते खेलते मतलब हम कहाँ पहुँच जाएंगे कुछ पता नहीं है। और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि दोनों ही टीमें एकदम फौलादी रूप से तैयार मौजूद हैं मेरे साथ, और कोई भी आज पीछे नहीं हटने वाला, लगातार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल आ रहे हैं। और सच्ची बताऊँ ना तो मुझे बहुत खुशी है आप लोग के कॉल्स को देख के, एनर्जी बहुत हाई दिख रही है। चलिए देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो,
2: हेलो,
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपका नाम? क्या नाम है आपका? सुनीता।
2: सुनीता
0: कैसी हैं आप? सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और आपको मैं लेटर देना चाहूंगी। माँ से गाना सुनाइए आप।
2: माँ से?
0: जी,
2: माँ से। ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी।
0: सो थैंक यू सो मच। सुनीता ने गाना तो सुनाया, लेकिन इन्होंने भोजपुरी गाना सुनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको पॉइंट दे देती हूँ। कोशिश कहते हैं ना कि अगर हो तो प्रयास को सराहना मिलनी चाहिए, तो इनके प्रयास के लिए इनको सराहना मिलेगी, और इनको मतलब मैं ये जो कहते हैं ना गाना सुनाऊँगी, इनके गाने का पॉइंट दूँगी। तो चलिए अगले कॉलर को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग गानू, कैसी हैं आप? आपके कॉल का इंतजार था, मुझे लग रहा है कि आप कॉल कर रही थी, आपका कॉल लग नहीं रहा था, ऑन एयर नहीं हो रहा था।
3: जी मैम, कॉल नहीं लग रही थी, लगातार कॉल आ रही है ना, तो कॉल नहीं लग पा रही थी। और अच्छी हूँ।
0: बिल्कुल अच्छी होना भी चाहिए, बारिश का मौसम एंजॉय करो, और आज
3: एकदम ठंडा मौसम है, और लगातार कॉल आ रही है मैम, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग अच्छे से खेल रहे हैं।
0: जल से गाना सुनाना है आपको।
3: जैसे
0: जैसे
3: जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न बुलाना। जा रहे हो लौट कर आना, देखो तुम हमको न भुलाना।
0: अब भुला भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू। तो अनु की आवाज़ में हमने गाना सुन लिया। भाई सब बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती किसी का भी कॉल मिस हो। तो चलिए अगले कॉलर को ऑन एयर करते हैं, और देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो,
4: हेलो,
0: हेलो, हेलो, वापस से हमारे साथ अविनाश हैं। गुड इवनिंग अविनाश अगेन।
4: जी जी,
0: अगले लेटर के लिए आप तैयार रहिए, और अगला लेटर मैं आपको दे रही हूँ। चा से गाना सुनाइए।
4: चा से?
0: जी जी, चा से।
4: अच्छा ठीक है, गा देते हैं। चूरा के दिल मेरा गोरिया चली, चूरा के दिल मेरा गोरिया चली,

0: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
1: चलिए क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अविनाश ने बहुत प्यारा सा गाना सुना है, मैं अगले कॉल को ऑन एयर करना चाहूंगी क्योंकि बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं तो मुझे कॉल काटने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं सबको ऑन एयर कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग आशु जी, क्या टाइमिंग है आपकी कॉल करने की, और आपको मैं थोड़ा सा खतरनाक लेटर दूं?
0: अरे मैं इतना भी ना दीजिएगा कि जो ना ही सुना पाए।
1: चलिए हाँ से गाना सुना दीजिए। हाँ से
0: हाँ
1: से
0: हाँ से हाँ से हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, लोग हमें याद करेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच एक बेहतरीन सी मतलब गाने के सिलेक्शन के लिए। मैं अगले कॉल को ऑन एयर करना चाहती हूँ।

0: छेद इस जंगल से हम बैठे, चल घर जल्दी हो गई दे, चल घर जल्दी हो गई दे। थैंक यू मैम।
1: बिल्कुल मौशिना, शाम हो गई है, घर जाने का समय भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मौशिना ने गाना सुना दिया है और अपनी टीम को पॉइंट दिला दिया है। भाई आज क्या पार्टिसिपेशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सारे कॉल्स को ऑन एयर करना चाहिए और मुझे सारे कॉल्स एक साथ ऑन एयर करने का मौका मिले तो मैं सबको ऑन एयर कर दूँ। हेलो।
2: हेलो। हाँ मैम,
1: वापस से आपका स्वागत है। शिल्पी जी कैसी हैं?
2: बस मजा ले रहे हैं मैम।
1: मुझे ये दिख रहा है कि लड़कियों की एनर्जी बहुत हाई जा रही है और लगातार तीसरा कॉल है लड़कियों का। चलिए आपको मैं देती हूँ लेटर, थोड़ा मुझे थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा।
2: बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, कोशिश करते हैं।
1: चलिए आप गाना सुना दीजिए। रहने दीजिए, वो लेटर नहीं दूंगी नहीं तो सब फंस जाते हैं।
2: अरे एक बार दे दीजिए, देखते हैं।
1: नहीं रहने दीजिए, ट से गाना सुनाइए।
2: जैसे
1: ट से ट से ट से
2: टी
1: टी से। हाँ
2: अच्छा, से

0: थैंक यू।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच शिल्पी जी, थैंक यू सो मच। तो वही शिल्पी जी की आवाज़ में हमने गाना सुन लिया, और अब देखते हैं किसकी आवाज़ सुनने को मिलने वाली है। अगला कॉल ऑन एयर। हेलो
2: जी, मैं अनूप मिश्रा।
1: अनूप जी, वापस से आपका स्वागत है। और आजकल बड़े बिजी रहते हैं आप, लेकिन आज आप आए, इस बात की बड़ी खुशी है। चलिए मैं आपकी साथ इस खुशी को और दोगुना करूंगी। गा से गाना सुना दीजिए आप।
2: गा से। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
1: क्या बात है, इतना खूबसूरत सा गाना सुना दिया, मन कर रहा था रिकॉर्ड कर लूं, काफी दिनों बाद सुना मैंने ये गाना, क्या बात है, थैंक यू। तो मतलब अंताक्षरी का उद्देश्य सिर्फ हारना जीतना नहीं है लिसनर्स, मैं सच्ची बता रही हूँ। अंताक्षरी का उद्देश्य, द मोटिव इज़ ओनली दैट कि आप सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, आपकी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाना, आपके साथ एक बेहतरीन लम्हा बिताना, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अंताक्षरी। तो अब मैं जो आखिरी कॉल लेने जा रही हूँ, देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो हेलो, कॉल हो गया डिस्कनेक्ट, और देखते हैं किसका कॉल है। चंदा रे अभी तो जमीन पर आ। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है ये, बहुत सारे कॉल आते हैं ना तो नेटवर्क में भी इशू आ जाता है। हेलो हेलो
3: जी, वीना जी।
1: जी कैसे हैं सबलू जी, वापस से आपका स्वागत है, और आपको मैं लेटर देना चाहूंगी अगर आपकी अनुमति हो तो।
3: बिल्कुल दे सकते हैं।
1: पर से सुना दीजिए गाना।
3: पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। जी बिल्कुल,
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपके आवाज में गाना सुन के। तो चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करती हूँ बिना देरी किए, आवाज सुनते हैं किसकी। हेलो
4: हेलो, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, क्या बात है, मेघ आए।

0: बड़े बंठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली। हेलो तो आपके लिए मैंने कविता सुना दी। ये बताइए कैसी हैं आप? मुझे आपकी आवाज काफी दिनों बाद सुनने को मिल रही, तो इसलिए मेरे दिल की धड़कने थोड़ी सी बड़ी हुई हैं। कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैं। नहीं, वो कविता सुन नहीं पाए, वर्ड बताने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप वर्ड दीजिए।
0: फिलहाल अभी आप ऑन एयर हैं। ये वो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉल होल्ड पे भी हो जा रही है। तो ये बताइए आपकी तबीयत वगैरह एकदम ठीक है?
1: जी।
0: तो चलिए ध से गाना सुना दीजिए।
1: दीदी तेरे बोल कोई सुना ले, कोई सुना ले।
0: क्या बात है, मैंने सोचा कुछ देर बैठ के आप सोचेंगी, लेकिन आपने तो जैसे सोच के आई थी, धा मिलेगा तो मैं यही गाना गा दूंगी। हमको किसी का डर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। क्या बात है, थैंक यू सो मच प्रीति जी।
1: हेलो मैम, आप सुन ली?
0: थैंक यू सो मच। तो हमारी प्रीति जी ने भाई गाना सुना दिया है। चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, आवाज सुनते हैं किसकी है। आपको आवाजें ही बड़ी बड़ी सुनने मिल रही है। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपका शुभ नाम?
2: अमित कुमार।
0: अरे अमित तो हमारे लिसनर नहीं है, अमित हमारे लड़कों की टीम के, वो कह सकते हैं कि संजीवनी है जो हर विषम परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। सो रिज्यूम कहाँ हो गया भाई, कॉल कहाँ चले गए अमित?
2: हेलो हेलो,
0: हाँ हाँ अमित आपकी आवाज आ रही है। तो अमित सबसे पहले तो तारीफ है मैंने आपकी कि आप सुन ही नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज्यादा तारीफ अब नहीं करूंगी। ना से गाना सुना दीजिए।
2: ना से ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। जी मैम।
0: ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, क्या बात है, थैंक यू सो मच अमित, लड़कों की टीम को बराबर सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अमित से भी बात हो गई और लगातार देखिए कितने लोगों से बात हो रही है मेरी। आहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है, बड़ा सुहाना सा दिन है, मजा आ गया। तो चलिए अगले कॉलर को ऑन एयर करती हूँ, देखती हूँ आवाज किसकी है। हेलो
3: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्कार, शुभ संध्या। आपका शुभ नाम?
3: धर्मेंद्र मोहन।
0: ओ धर्मेंद्र मोहन जी, चैट रूम से, क्या बात है, कैसे हैं आप? कहाँ, मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: अपने घर से बात कर रहे हैं।
0: ये बात तो सही है, घर से तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोकेशन बता दीजिए, गोंडा शहर से या शहर के बाहर से?
3: अभी चंडीगढ़ है।
0: ओहो क्या बात है, चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। तो अब गाना सुनाने की बारी है, तो आप तैयार हैं?
3: जी।
0: चलिए गाना सुना दीजिए।
3: शा से
0: हाँ
3: से छाता वाला,
0: हाँ हाँ, वैसे मैंने श बोला था, शलगम वाला शीशा जिससे होता है,
3: शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है लबे आते आते होठों से मुस्कान टूट जाता है। बस मेरा।
0: क्या बात है धर्मेंद्र जी, बड़ा अच्छा गाना सुनाया, मैंने शब्द क्या बताया आपने तुरंत गाना ही पकड़ लिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
3: जो ध्यान से सुने मैम, जो ध्यान से सुनेगा वो शब्द पकड़ लेगा।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र,
3: थैंक यू सो मच।
0: तो भाई धर्मेंद्र जी से बात हो गई और लगातार बैक टू बैक कॉल, मैं सोच रही हूँ अब इस राउंड को मैं ख़त्म करूँ, अब मैं इस राउंड को ख़त्म करूँ और अब ये लास्ट कॉल होगा और इसके बाद ये राउंड यहीं ख़त्म हो जाएगा और देखते हैं अगली आवाज़ किसकी है। हेलो
4: जी मैम।
0: हेलो, वापस से अनु हमारे साथ हैं। अनु हेलो
4: जी मैम, आवाज आ रही
0: है। वापस से आपका स्वागत है। तो मैं आपको लेटर देना चाहूँगी, अगर आप रेडी हैं तो।
4: जी मैम।
0: रेडी है एकदम?
4: जी।
0: चलिए आप गाना सुना दीजिए। फ से।
4: किससे?
0: फ फ फ फ फ से फल। हाँ, फ से फल, फ से फूल।
4: पालिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना बोल तुम मेरे हो ना।
0: अब मैंने गाना सुन लिया लेकिन मैं पॉइंट नहीं दूंगी क्योंकि प नहीं था, फ था, फ से फूल।
4: फूल
0: हाँ।
4: अच्छे से मैम समझ नहीं आ रहा है कि आवाज साफ साफ नहीं आ रही, थोड़ा भनक के आ रही है।
0: फ फ फ से गाना।
4: फूल से गा दूं? फूल से?
0: फ से गाना है, कोई भी गाना आप सुनाइए। फ से फल। हाँ फ फ
4: फूल गा दूं चलेगा?
0: हाँ हाँ गाना तो सुनाइए आप।

0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। आपने फूल भेजा और हमने ले भी लिया, थैंक यू सो।
1: हमने ये बार पॉइंट के लिए दो दो गाने गाए हैं।
0: हाँ बिल्कुल, अब पॉइंट भी मिल गया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए भाई, हमारी दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। मतलब आज मेरा दिल कर रहा है कि दोनों टीमों को समोसे खिला दूं, लेकिन क्या करूं, ऑन एयर तो खिला नहीं पाऊंगी। बारिश का मौसम है फिलहाल, आप लोग बना के खा लीजिए, नहीं अगल बगल आपके कोई बढ़िया समोसे वाला हो तो मंगा के खा लीजिए। एक बदनाम समोसे की दुकान है हमारे शहर से 30-40 किलोमीटर दूर, वहाँ के समोसे अच्छे होते लेकिन दूर हैं तो मैं आप लोग को खिला नहीं पाऊंगी, तो मुझे माफ कीजिएगा। तो चलिए एक और कॉल है, उसको ऑन एयर करते हुए इस राउंड को यहीं समाप्त।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
2: नवीन राजपूत बात कर रहा था मैडम।
0: नवीन जी, ओके, चैट रूम में भी आप दिख रहे हैं और चलिए आप आ चुके हैं तो आपको लेटर भी दे देती हूँ। वैसे कहाँ से बात कर रहे हैं नवीन आप?
2: मैं मैडम शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा था।
0: क्या बात है, स्वागत है आपका, तब से तो दिल से स्वागत है। आपको गाना सुनाने के लिए मैं लेटर दूं, आप रेडी हैं?
2: जी जी मैम।
0: ला से गाना सुनाइए।
2: ला से
0: जी।
2: लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, माना कि मेरी जान। मैडम बस नहीं आता।
0: चलिए कोई बात नहीं, माना कि मेरा दिल लेगा वो, मगर अपनी जान
2: मेरी जान लेगा।
0: थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुरीला गाया आपने वैसे।
2: थैंक यू मैम।
0: तो नवीन राजपूत जी की आवाज़ में हमने एक बहुत प्यारा सा गाना भी सुन लिया। भाई लड़कों की टीम में आज बहुत तगड़ा वाला मतलब जोश दिख रहा है, और वहीं लड़कियां भी एकदम कमर कस के बैठी हुई हैं, आज सारे काम धंधे छोड़ के जीतने की तैयारी। और चलिए देखते हैं कौन कितना जीत पाता है। आप लोग के लिए तो मैं 10 मिनट आगे बढ़ा दूंगी अंताक्षरी। तो चलिए एक लेते हैं ब्रेक, छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सेकेंड राउंड की शुरुआत करते हैं। सेकेंड राउंड में मैं आपको दूंगी क्या शब्द? सोच रहे हैं क्या मिलेगा, शब्द मिलेगा और शब्द से गाना गाना होगा। अक्षर से तो आप लोगों ने बढ़िया गाना गाए और मतलब मेरा दिल खुश कर दिया, सबने बहुत अच्छी कोशिश की। कोशिश क्या छोड़ूं, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की। तो फर्स्ट राउंड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी लड़कों की टीम आगे चल रही है, 220 पे लड़के और 180 पे लड़कियां। सो लड़कियां थोड़ा पीछे चल रही हैं और इस बात की मुझे थोड़ा दुख है। तो चलिए एक कॉल और ले लेती हूँ मैं और ऑन एयर कर देती हूँ, देखती हूँ लड़कियों की आवाज़ है कि लड़कों की। हेलो।
3: हेलो मैम।
0: सो थैंक यू सो मच लड़कियों की तरफ से कॉल करने के लिए, क्योंकि लड़कियां अभी काफी पीछे चल रही हैं, तो एक लेटर मैंने सोचा लड़कियों को दे दूं, क्योंकि लड़कियों को
3: मैम इतनी देर से कॉल कर रही, लेकिन इतने कॉल आ रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है।
0: चलिए दा से गाना सुना दीजिए।
3: इससे मैम दा
0: जी।
3: दीदी तेरा देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना।
0: कोई बात नहीं, अब आगे सेकंड राउंड के लिए तैयार रहिए। सो लड़कियों की टीम हो जाती है इसी के साथ 200 पॉइंट पे, लेकिन फिर भी लड़के आ गए। अब मैं बराबर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि लेटर्स की बात थी, लड़कों को लेटर्स ज़्यादा मिले थे, तो इसलिए मैंने सोचा एक कॉल ले लेते हैं। अगर लड़कों का होता कॉल तो शायद लड़कों की पॉइंट मिल जाता। और फिलहाल लड़कियाँ 200 पे हैं और लड़के 220 पे हैं, तो लड़के आगे हैं, तो कोई बात नहीं, 20 पॉइंट्स का अंतर है। अब वर्ड वाली जब बारी आएगी तब देखते हैं कौन क्या गुल खिलाता है। दोनों ही टीमें तैयार रहें और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत प्यारा सा गाना सुनाती हूँ मैं आप लोग को, सुनने के बाद आपका दिल भी कहेगा आ हा हा हा मज़ा आ गया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अब बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

0: जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है।
1: भाई इतना प्यारा सा गाना सुनने के बाद भाई ये है पुराने वाले अंदाज की नई वाली साड़ी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि जब नई पुराने कपड़ों को नया लुक देते हैं तो वो एक नई ही वाइब छोड़ के जाते हैं। फिलहाल इस गाने का भी यही सीन है, ये है पुराने स्टाइल का नया गाना और सुन के भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो अगेन आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी शाम में और अब चलते हैं, शुरू करते हैं वर्ल्ड राउंड। एंड वर्ल्ड राउंड के लिए पहला कॉल आ चुका है, चलिए देखते हैं किसका कॉल है। हेलो तो सबसे पहले अनु ने कॉल कर दिया है लड़कियों की टीम से, तो आपको सबसे पहले मैं शब्द देना चाहूँगी तन्हा। तन्हा अनु तन्हा तन्हा
2: हेलो
1: तन्हा
2: जी मैम गा रही हूँ।

0: नामुमकिन, ऐसा ही कुछ गाना तो है।
1: पॉइंट
0: काट लूंगी मैं,
1: पॉइंट नहीं मैम, काटना नहीं, काटना नहीं, एक बार एक बार नहीं करना, अगली बार नहीं।
0: तो चलिए लड़कियों की टीम को मिल गया है पॉइंट 50, और अब देखते हैं अगला कॉल है किसका, आवाज सुनते हैं किसकी है। हेलो हेलो हेलो हेलो,
2: हाँ जी बीना जी, हेलो
0: जी जी जी जी जी जी जी अनब जी, वापस से आपको कॉल पे सुनते हुए अच्छा लग रहा है, तो आप रेडी हैं?
2: जी।
0: तो शब्द दे दूं मैं आपको?
2: जी।
0: खता।
2: खता तो तब हो के हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। थैंक यू मैम।
0: क्या बात है, जैसे मुंह में गाना लेके बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। लड़कों की टीम भाई अच्छा खेल रही है, लड़कियों की टीम वही अच्छा खेल रही है, मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं, लेकिन कॉल्स वैसे ही लूँगी मैं, सबके कॉल्स लूँगी मैं, अल्टरनेट कॉल नहीं लूँगी। चलिए देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
3: हेलो, नमस्कार,
0: वापस से अविनाश जी का स्वागत है। अविनाश जी, आपकी आवाज़ मैं पहचान पा रही हूँ,
3: तो जी जी बिल्कुल,
0: मैं आपको शब्द दूँ?
3: जी जी जी।
0: जिंदगी।
3: जिंदगी ठीक है। जिंदगी तो बेवफा है, एक

0: अपने मन कहलाएगा।
1: थैंक यू सो मच अविनाश जी। तो अविनाश जी ने बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाया। चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं। आवाज किसकी है पहचानते हैं। हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी मैम, मैं अमित।
1: अमित, ओके अमित, वापस से आपका स्वागत है। और मैं आपको देना चाहूंगी शब्द आंखें।
0: आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, प्यार कैसे होता है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो भाई अमित का कॉल आ गया, लड़कों की टीम से दो कॉल आ गए, अभी लड़कियों की टीम से एक ही कॉल आया है। क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। क्या मोहब्बत है, क्या नज़ारा है, अब तक जो दिल था तुम्हारा वो अब हमारा है, ऐसा कुछ। मैं मतलब लिरिक्स मैं भी भूलने लगी हूँ आप लोग की तरह। चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो
2: जी दीना जी,
1: वापस से हमारे साथ अनूप जी हैं और अगले 10 मिनट और हम लेंगे अंताक्षरी में टीम को मौका देने के लिए। तो शब्द है आपके लिए रोग।
3: मैं हूँ प्रेम रोगी, कोई दवा तो बताओ। जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। और लड़कों की टीम बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया खेल रही है। और चलिए देखते हैं अभी किसकी आवाज़ है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। सो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि लड़कियों की टीम थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, नहीं तो भाई पॉइंट्स लड़कों की टीम को मिलते जाएंगे और आप लोग कहीं ना कहीं पीछे होते जाएंगे। हेलो
4: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
4: गुड इवनिंग मैम।
1: सो वापस से सुनीता जी का स्वागत है। सुनीता हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आपको गाना गाना है दिल से। तो चलिए सुनीता जी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी, मैं अगले कॉलर को मौका देना चाहती हूँ, देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
5: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब प्रणाम, आपका शुभ नाम।
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: ओह राकेश जी, स्वागत है आपकी आवाज़ का। सो लड़कों की टीम से आप आ चुके हैं वापस हमारे साथ और आपको मैं वर्ड देना चाहूँगी, शब्द दूँ मैं आपको।
5: जी जी,
1: दिन दिन से गाना सुनाइए।
5: दिल,
1: दिन, दिन दिन दिन दिन दिन डे
5: जी जी। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल दिल हमारा है, दिल का रिश्ता ही बड़ा प्यारा है। जी जी, धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत प्यारा सा आपने गाना सुनाया, शुक्रिया। तो शिमला से कॉल आ गया भाई, अब लड़कों की टीम को क्या ही कहना, कोई शिमला से बात कर रहा है, कोई चंडीगढ़ से बात कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश से बात कर रहा है, सब मतलब इतनी दूर दूर से लगे हुए हैं, लेकिन लड़कियों की टीम कहाँ सो रही है आज। मतलब मन कर रहा है कि आज लड़कियों की टीम को मैं थोड़ा सा कंप्लेन कर डालूँ, सब सो गई हैं। हेलो
2: जी मैम।
1: तो वापस से अनूप जी की आवाज़ सुनने को मिल रही है और आज तो कोई भी लड़कों की टीम को जीतने से रोक नहीं सकता। चलिए मैं शब्द देना चाहूँगी आपको, कंगन। कंगना कंगना कंगना। हेलो,
3: मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करता है, मेरे यार दीवाने लड़के किस पे मरता है।
2: मैं थोड़ी सी लिरिक्स गड़बड़ है, मुझे पता है गड़बड़ है।
1: चलिए कोई बात नहीं, लड़कियों को भी मैंने पॉइंट दिया है एक लिरिक्स गड़बड़ होने के लिए, तो आप लोग को भी दूंगी। थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू मैम।
1: तो देखते देखते मुझे ये महसूस हो पा रहा है कि लड़कियां आज मन लगा के खेल नहीं रही हैं। हेलो
4: जी मैम।
1: सो अनु, आज आपने ही अपनी टीम की जो कहते हैं ना कि बोझ को उठा रखा है, अभी सारी लड़कियां गायब हो गई हैं अचानक से, तो चलिए मैं आपको लेटर देती हूँ, बूंदे।
4: क्या मैम?
1: बूंदे, बूंदे, बारिश की बूंदे होती है ना, बूंदे।
4: यही शब्द मिला था मैं मुझे देने के लिए, कठिन कठिन ही।
1: ये कहाँ कठिन है, तो आसान ही है।
4: पहली बात तो आपकी मेहरबानी है कि लड़कियां आ नहीं पा रही हैं। दूसरी बात, आप जितना कठिन वर्ड होंगे वही ढूंढ के मुझे देंगी।
1: आ, मुझे पता है, चलो मैं तुम्हारा वर्ड चेंज कर दूं, तिरंगा से गाना सुना दो। आज तिरंगा का वो भी है ना, अंगीकरण दिवस, तो सुना।
4: तिरंगा से?
1: हाँ, तिरंगा से सुना दीजिए।
4: जी मैम। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है।
1: क्या बात है, आगे?
4: जी
1: बस इतना ही?
4: आगे तो बहुत दिन हो गया, भूल गई। आप सुनाती हो तिरंगा से गाना, जो याद रहे मुझे। आप सुनाती ही नहीं हो।
1: मैंने आज ही सुबह, मतलब आप शाम को मैं जब आई तो मेरी प्लेलिस्ट सुनी ही नहीं तुमने, इतने सारे तिरंगे से गाने सुनाए थे। इनफैक्ट एक गाना तो मैंने भी सुना
4: तो था। मैं जानती हूँ कि मैम थोड़ा डिले खिलाती है, इसीलिए मैं थोड़ा डिले की आती
1: हूँ। ओह क्या बात है, इसीलिए डिले।
4: तो थोड़ा सोचती हूँ कहीं और भी सुन लूँ।
1: और गाने तैयार कर। थैंक यू सो मच। तो अनु की टीम को मिल जाते हैं पॉइंट इसी के साथ। भाई लड़कियों की टीम थोड़ी पीछे चल रही है, मुझे इस बात का दुख है। फिलहाल कोई बात नहीं, चलिए जैसा भी है जो भी है सब अपना ही है। तो लड़कियों की टीम को मिल जाते हैं इसी के साथ पॉइंट्स, सीधे सीधे 300। चंदा रे, हेलो हेलो हेलो भाई, ये क्या चल रहा है भाई, कॉल्स नहीं कनेक्ट हो रहे। हेलो
6: हेलो
1: हेलो
6: जी, बीना जी।
1: वापस से अनूप जी हमारे साथ हैं। अनूप जी, आपको मैं शब्द देना चाहूंगी, जादू।
6: जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर। थैंक यू मैम,
1: थैंक यू सो मच। और देखिए इस गेम में कुछ ही मिनट और बचे हैं, और देखिए अनु, आशु जी काफ़ी सारे कॉल कर रही हैं। आशु जी, प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी टीम से एक या दो लोग ही कॉल कर रहे हैं, लड़कों की टीम से सारी के सारे टीम मेंबर्स कॉल कर रहे हैं, इसलिए लड़कों की टीम का कॉल बार बार लग जा रहा है, और इसीलिए उनकी टीम को पॉइंट्स भी मिल जा रहे हैं। चलिए अगला कॉल देखते हैं किसका। हेलो हेलो हेलो तो कॉल के आवाज़ नहीं आई, नेक्स्ट कॉल से बात करते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो
7: हेलो
1: हेलो
7: हेलो जी मैम।
1: अमित हमारे साथ हैं, और अमित आपको गाना सुनाना है। हेलो
8: अमित। हेलो मैम।
1: ये क्या, अमित का कॉल कट गया, लड़कियों का कॉल लग गया। ओह माय गॉड। सो आशु जी, स्वागत है आपका, और फाइनली आपको देख के अच्छा लग रहा है। आपको गाना?
8: मैम बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है।
1: चलिए तस्वीर से गाना सुना दीजिए।
8: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से छिपाई है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो आशु जी का कॉल लग गया, और अभी देखते किसका कॉल है। हेलो
9: हेलो,
1: गुड इवनिंग, स्वागत है आपका वापस से। अविनाश कैसे हैं आप?
9: जी बहुत बढ़िया है।
1: सो
9: आज तो लेडीज फर्स्ट की जगह लेडीज लास्ट हो गई है, क्या बात हो गई।
1: आज लेडीज की टीम थोड़ी सी वीक चल रही है, आपकी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनका कॉल लग जा रहा है। तो चलिए मैं आपको शब्द देना चाहूंगी, रंग से गाना सुनाइए। रंग से?
9: रंग। अच्छा, रंग से सुना देते हैं एक गीत। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे।
1: क्या बात है।
9: ये गीत इतना ही आता है, लेकिन और भी गीत है रंग, जैसे रंग भर से भिजे चुने, ये भी गा सकते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने गाना सुना दिया, आपकी टीम को पॉइंट मिल गया। मुझे ये पता है कि आपको गाने आते हैं रंग से। थैंक यू
9: जी।
1: भाई लड़कों की टीम क्या कर रही है आज, मजा आ गया भाई। और इसी के साथ अब ये आखिरी कॉल था और इसके बाद अब मैं कॉल नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मैंने 10 मिनट का वादा किया था और मैं 10 मिनट ऑलरेडी ले चुकी हूँ आप लोग के एक्स्ट्रा। और इसी के साथ गाना था मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, रंग दे मुझे रंग दे। और आज सच में लड़कों ने रंग दिया है ये चैट रूम अपने पॉइंट से। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम बी, लड़कों की टीम ने इतना अच्छा आज खेला है। सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कों की टीम में लगातार कंसिस्टेंसी बरकरार रही। लड़कियों की टीम में कॉल शुरुआत में आए लेकिन उसके बाद लड़कियां कामकाज में लग गई मुझे ऐसा लगता है, और उन्होंने सोचा कि आज मैं नहीं जीतूंगी। इसी के साथ दो तीन लड़कियां ही लगातार रही जिसकी वजह से कॉल लड़कों का बराबर आता रहा और इसी के साथ लड़कों की टीम को पॉइंट्स ज़्यादा मिले क्योंकि वो लोग बराबरी से दौड़ते रहे, मतलब अंत तक दौड़ते रहे। इसी दौड़ने का नतीजा है कि यार लड़कों की टीम ने क्या मज़ेदार खेला है यार, बहुत खूब बहुत खूब। और सेम टाइम पे लड़कियों ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, मज़ा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार लड़कियां भी बहुत अच्छा खेलेंगी, लेकिन पॉइंट्स में डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और ये डिफरेंस ये शो कर रहा है कि आप लोगों ने थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा हल्का किया है, डोर छोड़ी है हल्की सी कि चलो यार जीतने दो वाला सीन कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मेरी तरफ से दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेली, लेकिन विजेता टीम तो भाई एक ही है। और लड़कों की टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, स्पेशली वो सारे लड़के। वो जो बहुत अच्छी बात ये लगी कि आप लोग एक जगह से नहीं, ऐसा बहुत सारा है कि लड़कियां भी, कोई मतलब गुजरात से सुन रहा है, कोई लखनऊ से सुन रहा है, कोई फैज़ाबाद, कोई अयोध्या, बहुत दूर दूर से लड़कियां भी जुड़ी। लेकिन लड़कों की टीम से मुझे ये दिख रहा है कि कोई तेलंगाना से कॉल कर रहा है, कोई शिमला से कॉल कर रहा है, कोई चंडीगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, मतलब इतनी दूर दूर से आप लोग कॉल कर रहे हैं, बाराबंकी से, मतलब क्या बात, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, शुक्रिया। एंड मैं क्या बताऊँ, लड़कों की टीम को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। एंड ये कहते हैं कि अगर एकता हो, एक साथ अगर दौड़ने और एक साथ मतलब अगर आगे चलने के अंदर जज्बा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना कर सकें। तो थैंक यू सो मच टीम ए एंड टीम बी, बट टीम बी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप लोगों ने बेहतरीन खेला। और कहते ना, हार की धूल से उठकर जो मुस्कुराना सीख गया वही इंसान जीत कर आसानी से तरीका सीख गया। आंधियां लाख रोकें, राह में कांटे बिछाएं, हौसले के दीप जलते हों तो मंजिल खुद बुलाएं। ठोकरों ने ही सिखाया कैसे पर्वत पार होता है, घाव ही बताते हैं जीत का क्या सार होता है। और जीत केवल ताज नहीं, एक तपस्या का फल है, हर पसीने की बूंद में भविष्य का उज्जवल काल है। थैंक यू सो मच लड़कों की टीम के लिए, ये पंक्तियाँ थी एंड स्पेशली लड़कियों के लिए भी थी। मेरी तरफ से मतलब दोनों ही टीमों ने अच्छा खेला है, बट कहते हैं ना कि कोई एक ही होता है, तो आज का सौदा खरा खरा रहा। और इसी के साथ लड़कों के लिए ये गाना प्ले करते हुए आरजेबीना को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून, आप कुछ बेहतर सुन रहे हैं तो आरजेबीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजेबीना वाला सुन रहे हैं। स्टे ट्यून। Yeah!

वेलकम इन योर शो फरमाइश विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून एवरीवन आज दिल के जज्बात कुछ इसी तरह उमड़ उमड़ के आ रहे हैं।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही ज्यादा नटखटी नटखटी बात मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की कटरी को नहीं खोली है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। सो मैं आ चुकी हूँ, फटाफट से अपनी फरमाइशी की कटरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद सितारे जितने भी जो भी आप लगाना चाहते हैं। टूटे दिल भी लग सकते हैं, जुड़े दिल भी लग सकते हैं और बहुत कुछ बिखर सकता है आज की इस महफिल में। तो अपने जज्बातों के पिटारे को खोल लीजिए और चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। अनिल वर्मा जी सादापुर से, नवीन राजपूत एमपी से, महेंद्र राजस्थान से, अनोखी शर्मा कमल नैन गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी स्टे ट्यून्ड, सबलू सावंत मुंबई से, मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, सुरेश कुमार जी चौक से, निबजी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, निबजी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, सबिहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सिंपल, और जिसका नाम मैंने मिस कर दिया है उसके लिए सॉरी और सभी सभी सभी का स्वागत है। सो बिना किसी देरी के एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। वैसे मेरा फरमाइशी गीत कैसा लगा आप सभी को, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं #ImranHashmi। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, पहली फरमाइश है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, अगर रोग बुरा है पहले से पता है तो ये रोग लगाना क्यों है, और जब फिर रोग लग गया है तो उस रोग का इलाज करो ना, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने से रोग का इलाज नहीं होने वाला है। कैंपेन्स लगाते है ना चलिए इश्क के नाम पर, इश्क एक लाइलाज बीमारी है, सावधान रहें और सतर्क रहें। सो एंजॉय करते हैं अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और दोस्तों ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। चलिए अब फाइनली हमारी आज की महफिल में इश्क मोहब्बत प्यार की बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। कुमार सानू अलका याग्निक की सुरीली सी रोमांटिक सी

किसी को दिल नहीं हो देना। ये गाना ये कहता तो है दोस्तों कि किसी को दिल नहीं हो देना, लेकिन इस गाने का कहना कौन मानता है। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी अनिल वर्मा जी की तरफ से, जो कि है सैदापुर से। अनिल वर्मा जी का कहना है कि तुम्हारा वो तीखा गुस्सा और लाल चटनी का स्वाद एक जैसा है। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं, मेरी कि किसी और की? तुम्हारा वो तीखा गुस्सा और लाल चटनी का स्वाद एक जैसा है, थोड़ा रुलाता है पर कम बखत इश्क, ओहो, पर कम बखत इसके बिना मजा भी कहाँ आता है। जैसे मोमोज के अंदर छुपा होता है ढेर सारा स्वाद, वैसे ही तुम्हारे इस गुस्से के पीछे छुपा है बेपनाह प्यार। तो शायद लाइंस मेरे लिए थी। ओहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश एंजॉय करेंगे दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में आई है नवीन राजपूत जी की तरफ से, जो कि है एमपी से। और नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है गाना तेरे प्यार में मैं मर जावा। सो एंजॉय करते हैं होगी प्यार की जीत पिक्चर का ये वाला गाना, जसविंदर नरूला और रूप राठौड़ की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। हमें ना बुलाना सजना, हमें ना बुलाना, ये कहोगी ना तो दो चार दिन में ही बुला के चला जाएगा। पगली पागल हो क्या, इससे ज्यादा दिमाग तो मेरे पास है।

हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना और दूर नहीं जाना, हमसे दूर नहीं जाना। इसके बाद में भी जो कहा है वो तो घोर अनर्थ है, वादा किया जो वादा करके निभाना। अरे भैया, कौन वादा करके आज तक निभाया है जो आपके सजना सजनी निभाएंगे? सब झूठी बातें, सब अफवाहें हैं। जो इन अफवाहों को सुन के गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करिए, थोड़ा सा वार्न हो जाया करिए, क्योंकि ये 440 वोल्ट के झटके से भी ज्यादा झटका देता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए दोस्तों कुछ तो फेर बदल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की, राजस्थान से, और उनको सुनना है गाना ईमान डोल जाएंगे। और वैसे भी इस गाने को सुन के डेफिनेटली सबके ईमान डोलने वाले हैं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा नहले पे दहला का, बहुत ही खूबसूरत सा नहले पे दहला वाला फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ये हुई ना बात, ये हुई ना और आक्षिक बात। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक इन योर शो फरमाइश, स्टे ट्यून्ड एवरीवन और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश हमारे पास में थी महेंद्र की राजस्थान से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्त चांदनी की गोंडा से। चांदनी को गोंडा से सुनना है बहुत ही सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट सा नगमा। एंजॉय करेंगे ये वाली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है ये आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और इनका कहना है कि जिम्मेदारियों के मशवरे मुझे ना दो। अच्छा, जिम्मेदारियों के मशवरे मुझे ना दो, मैंने भरी जवानी में ख्वाहिशें जला डाली हैं। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि माना कि ख्वाबों की बस्तियां वीरान हो गई माना कि ख्वाबों की बस्तियां वीरान हो गई, पर याद रखना मेरे दोस्त, राख के इन ढेर से ही अब नए आफताब निकलते हैं। राख के इस ढेर से ही अब नए आफताब निकलते हैं, और जिन्हें दुनिया बोझ समझती है असल में वही लोग हीरा निकलते हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है चांदनी की, उनको सुनना है गाना हैंगओवर्स। सो एंजॉय करते हैं जैकलिन फर्नांडिस का ये किक वाला गाना। और वैसे मेरा मानना है कि जिंदगी में जब तक किक ना मिले ना, तब तक इंसान हिट नहीं होता है। स्टे ट्यून्ड।

तेरी यादों का और हैंगओवर तेरी बातों का, किक का ये गाना हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हमारी आज की फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनोखी शर्मा की, और अनोखी शर्मा को सुनना है बहुत ही अनोखा सा दर्द भरा सा गाना। जो दर्द भरे गाने सुनते हैं उनकी प्लेलिस्ट में शायद ये गाना एडेड हो। फिलहाल हम एंजॉय करते हैं अनोखी शर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना। वो बंगला गाड़ी झुमके कंगना, सब दे देना उसको सजना, और आग लगे उसकी जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। सो अलका याग्निक की आवाज में एंजॉय करते हैं छुपा रुस्तम का ये बहुत ही खूबसूरत सा लगवा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तबिश खान, आपका स्वागत है।

हो वो बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगी उसकी जुबन को दिल मत देना मेरी सौतन को। जब ये गाना बजाने वाली होती हूँ, जब सारे दर्द भरे नगमे मैं प्ले करने वाली होती हूँ एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि काहे को नहीं सुनना है ना, नहीं जाना है ना दर्द की तरफ। लेकिन जैसे ही गाना बजने लगता है ना, इस लेवल का फील करती हूँ दोस्तों इन सब गानों को। ऐसा लगता है कि कितना ही कितनी बार मेरा दिल तोड़ा गया है, ऐसा लगता है, इस तरह फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मिनट, हर एक क्षण, हर एक पल कोई ना कोई मेरा दिल तोड़ता है। जबकि सब बकवास है, मैं किसी का दिल ना तोड़ू तो क्या कोई मेरा खाक दिल तोड़ेगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, और धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गाना क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। एंजॉय करते हैं एक बार फिर से हर रोमांटिक वाला नगमा, लेकिन इस बार दोस्तों धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। कलियां ना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, कितनी प्यारी लाइन है ना। प्यार में कितने पागल हो जाते हैं लोग, दिल बेताब हो ही जाता है।

बिछाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे साजन आने वाले हैं। पहले का प्रेम देख रहे ना कि कलियां मत बिछाना, मैं दिल बिछाऊंगी। और आज का प्रेम देख रहे हैं, कलियां मत बिछाना, मैं लाश बिछाऊंगी। बिछाऊंगी या बिछाऊंगा, यहाँ मैं कोई जेंडर स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पहले का प्यार देखिए, अब का प्यार देखिए। प्यार भी अब समझौता हो गया है दोस्तों, चाहे वो इमोशंस का ही समझौता हो, लेकिन है तो समझौता ही। कहीं ना कहीं से, किधर ना किधर से लिंक आके समझौते पर ही स्टिक हो जाता है, यू नो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की। सोनिया तिवारी को सुनना है गाना, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, और पिया पिया बोले मत वाला जिया। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा ओल्ड गोल वाला नगमा लता जी की बहुत ही सुरीली सी, बहुत ही प्यारी सी मंत्रमुग्ध आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई रियली लव दिस सॉन्ग।

जिया। वैसे पिया पिया मेरा जिया तो नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। हु इज पिया? आई डोंट नो पिया किसको कहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये गाना, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मेरी प्लेलिस्ट में पिछले 6-7-8 साल से है और अभी तक मैं इस गाने से बोर नहीं हुई हूँ। सबने इंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लता जी की आवाज में। और अब चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब अगला गाना जो बजने वाला है ना, वो सबके मींस सबके प्यार को अमर कर देगा। सही कहा ना मैंने सबलू जी? तो सबलू सावंत की फरमाइश है मुंबई से, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, और तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाही जहां। सो एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, लव यू आशा जी, मुझे बहुत पसंद हो आप सच में।

मैं मुमताज हूँ उसके ख्वाबों की, वो मेरा शाही जहाँ। हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा दिल ले गया ना, पूरा का पूरा दिल लूट ले गया। बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश थी मोहम्मद अजीज और आशा जी की आवाज में, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, चलिए चलते हैं अगले फरमाइशी गीत की तरफ। और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से, स्वदेश दुनिया की खबरों से। रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, ओहो जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी खट्टी मीठी कड़वी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, प्लीज फटाफट से जाके पेट पूजा करो और फिर से आ जाओ सीधे 9 बजे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी की महफिल में। सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखेरेंगे, आहा रूमानियत बिखेरेंगे, आहा सबके दिल पिघलेंगे, ओहो सबके जज्बात निकलेंगे, यू नो। सो एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना दिल जाने जिगर तुझ पे कुर्बान किया है और प्यार किया है तुझे प्यार किया है, कुछ ऐसे ही लिरिक्स से एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा आशिकी मूवी का नगमा। और मिलते हैं सीधे 9 बजे, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और रखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 OTT प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिय शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
7: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल हुई इज नॉट सो सिंपल। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन का ये बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट फरमाइशी, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से आपकी अपनी खट्टी मीठी कड़वी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और अभी आप लोगों ने जिस गाने को एंजॉय किया है वो फरमाइश आई हुई थी हमारे गोंडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर दीपक सिंह की और डॉक्टर अतुल शुक्ला की। सो उनकी ये थी फरमाइश एकदम टूटे हुए दिल की। जज्बात बिखरने चाहिए थे तो जज्बात तो बिखर ही चुके हैं और चलिए अब और भी जज्बात बिखेरते हैं। जितने जज्बात बिखेरना चाहें पूरा रायता बनाएंगे दोस्तों, रायता काहे को, पूरी की पूरी खिचड़ी बनाएंगे और एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीफ जी की बाराबंकी से और हमारे इन दिल पे काशिक मोहम्मद मुशीफ जी को सुनना है गाना, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। अच्छा जी, तब क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा हो।

बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, ऑब्वियसली रात नहीं होती, लेकिन फिर पता नहीं क्या क्या होता है। फिर एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और आवाज विकास गोंडा से धर्मेंद्र मोहन को सुनना है गाना मैं तेरा हो गया। सो बीबी हो तो ऐसी मूवी का ये वाला गाना एंजॉय करते हैं हम। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अच्छा बीवी कैसी होनी चाहिए, फिर हस्बैंड कैसा होना चाहिए, फिर ऐसे तो बच्चे कैसे होने चाहिए, फिर तो हर एक रिश्ते हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, ऊपर वाला किस लिए बैठा है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हो गया मैं तेरी हो गई। दोस्तों हमें एंजॉय क्या है ये गाना और सारा का सारा लोचा ये लोग समझ ही नहीं रहे कि एक दूसरे का होने के बाद में ही तो सारा प्रपंच, सारे नाटक, सारे ड्रामा, सारे सर्वाइवल के स्ट्रेटजीज और सारे सेक्रीफाइसेस ये सारे एक दूसरे के होने के बाद में ही तो होते हैं। असली मजा तो तभी आता है, तेरा होना मेरा होना तो ये सब ट्रेलर होता है, पिक्चर पूरा का पूरा तो बाद में होने के बाद ही पता चलता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। एंड अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना चिटियां कलाइयां वे, आहा ओ बेबी मेरी व्हाइट कलाइयां वे। मेरी भी व्हाइट कलाइयां हैं, मेरी भी चिटियां कलाइयां हैं और पता नहीं कब से खाली हैं। सो गानों पे नहीं जाना चाहिए है ना, सिर्फ अफवाह होती है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला गाना, महारानी वाला गाना हमारी अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि है श्रावस्ती।

सर चिटियां कलाइयां वे झुमके मांगने हैं, शॉपिंग करने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, चूड़ियां पहननी है, ये सब कुछ करना है, तो ये चैट बॉक्स में इस गाने की डिमांड क्यों कर रही हैं आप? आपको तो इस चीज की डिमांड, इस गाने को तो आपको उसको शेयर करना चाहिए था जिससे ये सब कुछ मांग रही हैं आप। फिर फटाक से आपको अब तक तो मिल भी जाता, इतनी देर से फालतू में कतार में लगी हुई है इस गाने को लेके। अब उस बेचारे ने सुना होगा, अब उस बेचारे की दिल की घंटी बजी होगी, अब उसके अकल में थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा, अब वो निकलेगा मार्केट के लिए। लेकिन हमारे गोंडा की मार्केट तो बा 9:30 बजे तक तो बंद ही हो जाती है। तो फिर आज तो आपकी चिटिया कलाइयां फिर से चिटिया कलाइयां ही रहने वाली हैं। कल फिर से आप उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा जो आप सबको, मतलब जो आपको सब कुछ दिला सकता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है। ओह माय गॉड, आई हाय गजल की। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जी की आवाज में एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जाना, फिर जाने जाना हो गए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल, मेहंदी हसन जी की गजल, हमारी आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई रियली लव दिस वाला गजल। वैसे मुझे गजल सारे पसंद आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 70 की उम्र में पार कर ही चुकी हूँ।

लगता रखता हूँ मेरी हस्ती का सामा हो गए। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल आशु मिश्रा जी की फरमाइश पे। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में एंजॉय करेंगे खुददार का ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ दुर्गा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड है।

0: सो दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। हाँ हाँ, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है निशा की पटेल नगर गोंडा से और अरमान की पटेल नगर गोंडा से। निशा को और अरमान को पटेल नगर गोंडा से सुनना है दोस्तों गाना इतना मैं चाहूं तुझे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। So guys, have a very, very, very great night. Take care of yourself and family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, सो मच लव, सो मच केयर टू यू गाइस। स्टे ट्यून, मिलते हैं कल, एंजॉय करते हैं मेरे दिल के करीब रहने वाला नगमा। आहा, निशा की फरमाइश पर और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। स्टे ट्यून। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किससे को ना चाहे
1: इतना मैं,
0: लेकिन उस चाहत का क्या फायदा जो आज है कल नहीं है, आज मेरा है कल

0: नफरत की हमारे शहर में लग न जाए आग, नफरत की हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो गाना 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हां, आइए। और आज तो भाई दिन बुधवार का है, जिस दिन की प्रतीक्षा मुझको रहती है बड़ी ही बेसब्री के साथ, क्योंकि आज के दिन जो हमारे श्रोता होते हैं वो बन जाते हैं वक्ता, हमको दिखाई पड़ रहे हैं। दादा चरण स्पर्श अनिल जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हमारे साथ अनोखी शर्मा जी भी हैं, भाई अभिनंदन आपका भी है इस प्यारे से शो में। और इच्छुक जी हैं हमारे साथ, और क्या बात है भाई, आवाज़ की मल्लिका भी हमारे साथ हैं, शिल्पी बनर्जी जी, शुभ संध्या से जी, चरण स्पर्श, कैसे हैं आप जी? आपका आशीर्वाद। और फ़ोन हमारे पास आ चुका है, और देखते हैं भाई आज का कार्यक्रम की शुरुआत, आज के कार्यक्रम की आधारशिला कौन रखता है और कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: ओहो नमस्कार, अगर मैं जी जी जी, आपकी मुस्कान बता रही, आपकी हंसी बता रही है कि आप वही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम वही है, पहचान लिया आप? जी, जी, कैसे हैं आप?
0: जी जैसा ऊपर वाला रखे।
1: अरे सर, मौसम तो बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है कि ऊपर वाले ने अच्छा ही रखा होगा आपको।
0: जी आपकी शुभकामनाएं रहेंगे तो जरूर अच्छा रखेंगे।
1: जी जी, बहुत बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ भी होंगे आप, उम्मीद है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआओं का असर यहाँ दिख रहा है।
1: जी सर, तो आज क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है, तो आज आशा जी का एक खूबसूरत गीत है।
0: हाँ क्या बात है,
1: उसी मैं पेश करना चाहूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: जी सर, तो इजाजत है?
0: जी जी, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, निवेदन है।
1: जी, और सर हाँ, अगर कोई त्रुटि हो जाए या कोई गलती हो जाए तो प्लीज पहले से माफ कर दीजिएगा।
0: 15 अगस्त के भाषण में कहा जाता है, इसमें नहीं कहा जाता।
1: चलिए ठीक ठीक है सर, हम शुरू करते हैं।
0: जी
1: जी, हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का,

रखेगा, और अगर आपसे ये टूट गया जान जा इतना ही समझिएगा, क्या फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी।

लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो

0: बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर आओ। थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, शानदार क्लैपिंग आपके लिए, क्या शुरुआत की। आओ हुजूर तुमको, क्या बात है। मतलब और ये जो हिचकी आपने ली है बहुत शानदार ली भाई।
0: सर इसमें पूरे गाने का कमाल जो है, जो कहते हैं कि पूरा बेस जो तैयार करता है वो इस हिचकी से ही रिलेट कर पाता है।
1: क्या बात है, नहीं हिचकी आपकी बड़ी शानदार रही और तो खैर आपके कंठ से अच्छा निकलता है।
0: थैंक यू सर, गाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है।
1: हाँ, और आपने भाई हमारे कार्यक्रम की आधारशिला रखी, कार्यक्रम की नींव रखी, इसके लिए हम आपके मुबारक, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और मुस्तैद हैं आपके।
0: जी थैंक यू सो मच सर। आज मौसम खूबसूरत है तो मैंने कहा कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो।
1: बस अभी 10:30 बजने दीजिए, इसके बाद हम सीधे शाइन पे बैठ के सितारों पर चलते हैं।
0: जी बिल्कुल, इंतजार रहेगा सर।
1: जी बहुत अच्छा, और प्रणाम आपको।
0: जी अरे सर प्रणाम ना कीजिए, आप हमसे बड़े हैं।
1: जी जी अच्छा, तो नमस्ते आप।
0: आप हमको आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार।
0: थैंक यू,
1: यू वेलकम। जी हाँ, देखते हैं भाई, और उनके जाते ही कोई और जुड़ चुका है मेरे साथ, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: नमस्कार
1: भैया। क्या बात है, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी दर्द भरी आवाज केवल दर्द कुमार की ही हो सकती है।
2: रोमांटिक गीत शुरू कर दिया हमने।
1: जी
2: कहते रोमांटिक गीत शुरू हो गया,
1: हमने शुरू किया है, ये तो श्रोताओं ने शुरू किया है भाई।
2: हाँ
1: तो मतलब
2: दर्द वाले दर्द में चले जाते हैं।
1: अच्छा, दर्द वाले दर्द में जाएंगे और रोमांटिक वाले रोमांच में जाएंगे।
2: अब रोमांटिक सुनाते हैं, मगर चलो दर्द है तो दर्द चली जा।
1: जी बिल्कुल दर्द।
2: जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले थी जा चली आई, जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग भरे, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग भरे, मेरा नसीब के मेरे कदम जा भी पड़े, ये बदनसीब मेरी कहाँ चली आई, जुबान पे दर्द भरी दास्तां

0: रात है वीरान जैसे महफिल है, उदास रात है वीरान जैसे महफिल है, ना हम सफर है न कोई मेरी मंजिल है, ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, युवा पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई,
1: धन्यवाद।
2: क्या बात है भाई दर्द कुमार जी, आज आपने मोहम्मद रफी को छोड़ा और मुकेश कुमार को पकड़ा, लेकिन दर्द वही रहा, क्या बात है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और अनोखी शर्मा जी ने लिखा है भाई भाषा
1: एक रफी साहब का है, थोड़ा सा कहो तो मौका है सुना दें।
2: हाँ,
1: कोई लाइन पे ना हो तो
2: नहीं नहीं आप एक स्टंजा सुना दीजिए बिल्कुल।
0: तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के निशान कर लूंगा, सफर के उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर दूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर दूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर दूंगा, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तुम वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर के उम्र का पल में तमाम कर लूंगा।
1: धन्यवाद।
2: क्या बात है भाई, मुकेश जी के साथ रफी आए। और अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछे अगर आप बुरा ना माने तो।
1: हाँ
2: जैसे आपने ये गीत गाया तो हमको लगा कि आपको अपना बीता हुआ कल बहुत याद आया, तो अगर ये गीत आपको डेडिकेट करना होता, किसी को समर्पित करना होता तो किसे करते?
1: तुम्हारी, कौन सा गीत?
2: यही तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
1: हाँ।
2: मतलब अगर ये कहना होता आपको जिस समय आपने आपको कहना चाहिए तो ये किससे कहते हैं आप?
1: अरे इसे याद आ गया तो या गा दिया।
2: नहीं नहीं वो तो ठीक है। हाँ मतलब अक्सर होता है कि कुछ गीत हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, उनका बड़ा गहरा रिश्ता हाँ। होता है।
1: और अच्छा अच्छा
2: बहुत प्यारा गाया आपने। अनोखी शर्मा ने लिखा वाह रफी साहब,
1: मतलब हमसे कोई गलती नहीं हुई।
2: आप मतलब आप हमारे सबसे मतलब वरिष्ठ हैं, आपसे गलती कहाँ हो सकती है, हम लोग तो सीखते हैं आपसे। बहुत
1: थैंक यू मेरे भाई,
2: बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा गाया।
1: थैंक यू मेरे भाई, बस भगवान इसे बनाए रहे। आप सबको, सभी लिस्टर को मेरा नमस्कार है भैया
2: जी। और सर स्पर्श आपको
1: ठीक है। थैंक यू
2: जी। जी हाँ भाई, तो इनको हम कहते हैं दर्द कुमार जी, और हमारे साथ बाहुबली जी भी आ चुके हैं। जी हाँ राधे राधे आपको भी, और देखते हैं हमारे साथ फिर कौन है। हेलो
3: नमस्कार।
2: अरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आवाज़ गोरखपुर से है।
3: जी हाँ जी हाँ
2: जी
3: हाँ जी, कैसे हो आप?
2: जी दादा चरण स्पर्श,
3: और बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं, खुश रहिए?
2: जी आपका आशीर्वाद।
3: तो आज मैं इशारा पिक्चर का एक गाना गाना चाहता हूँ मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।
2: अच्छा मतलब इशारे से कुछ कहना भी तो नहीं है आपको?
3: जी
2: नहीं, फिल्म का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझको इशारा।
3: नहीं इशारा पिक्चर है, उसमें आपके विश्वजीत जी हैं और बैजंती महाराज जी।
2: जी और फिल्म भी बहुत शानदार है,
3: और वो गाने का बोल है दिल बेकरार सा।
2: क्या बात है क्या बात है। सविता शास्त्री जी भी है, चरण स्पर्श जी अभी आपको भी सुनते हैं। जी
3: गाना सुना आपने?
2: बिल्कुल सुना है।
3: नहीं आप तो हैं हमारे एकदम विचारधारा के, तो आप तो जरूर सुने होंगे, आपके पास कलेक्शन भी बहुत प्यारा प्यारा होता
2: है। अरे नहीं ये सब आप लोगों से सीखते हैं कलेक्शन का, आप लोग बताते हैं तो हम लोग जान पाते हैं।
3: तो मैं दरअसल गाने को कोशिश कर रहा हूँ।
2: जी
3: कोई कमियाँ हो तो मनोज जी जरूर प्लीज बताइए।
2: जी दादा बिल्कुल।

दिल पे करार सा है, मुझ पे खुमार सा है, जब

हमार सा है, मुझ में हमार सा है, जब से तुझे देखा सनम। हाय।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कई सारे श्रोता करें जिसमें से बहन जी भी हैं, शिल्पी ने कहा है, क्या बात है दादा। और मुझे लगता है कि जो हमने पहले सुना था वो आज की तुलना में फीका पड़ गया, मतलब आप 20 पड़ गए।
0: अरे
1: बहुत
0: क्या पड़ गया?
1: आप 20 हो गए, मतलब जो हमने सुना था इसके पहले वो 19 था।
0: नहीं सर, इसमें भी थोड़ी सी कुछ त्रुटियां हुई हैं।
1: नहीं त्रुटियां
0: एक्चुअली मैं कल परसों से बड़ा बैठा हुआ।
1: नहीं नहीं, बहुत प्यारा गाया दादा आपने, बहुत प्यारा गाया। और लोग कहते हैं कि ओहो भाई साहब, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं बेहतर।
0: चलिए भाई, सभी लोगों को धन्यवाद जो सुने, लेकिन जो त्रुटियां थी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा।
1: बिल्कुल त्रुटियां कहीं नहीं थी, और मैं चाहूंगा कि इसी के साथ हम उनको भी सुन लें जिनके बिना आप अधूरे हैं।
0: वो अपने मोबाइल से ही सुनाएंगे आपको। एक्चुअली मेरे मोबाइल से उनकी आवाज पता नहीं क्यों जाती नहीं है, क्या होता भगवान जाने। आप जानते नहीं हो 36 का आंकड़ा?
1: नहीं नहीं, 36 का आंकड़ा नहीं है, जरा कोशिश कीजिए, हो सकता है ये 36 ना हो आज।
0: अच्छा, एक एक मुकेश जी की बहुत प्यारी, मतलब निर्गुण में है ये गाना
1: जी,
0: ये अनोखी रात की गाना है,
1: ओहरे ताल मिले नदी के जल से
0: जी। हाँ, मैं थोड़ा कोशिश करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है थोड़ी सा?
1: हाँ, एक स्टेंजा आप गा दीजिए दादा। बिल्कुल
0: एकदम एक ही स्टेंजा गाऊंगा
1: जी।
0: ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, क्या बात है। आज हमारे दर्द कुमार ने भी रफी और मुकेश दोनों को छुआ और वही काम आपने भी कर दिया। क्या जोड़ी है आप दोनों की।
0: भाई कोशिश किया हूँ,
1: बहुत बढ़िया गीत है और हमको वास्तव में बहुत पसंद है।
0: अरे चलिए, तो आपकी पसंद हमारी पसंद।
1: जी।
0: चलिए धन्यवाद सर।
1: जी, चरण स्पर्श दादा। जी हाँ भाई, तो ये हमारे साथ श्री अनिल बनर्जी जी, क्या बात है भाई। और रफी साहब के गीत, और अब देखिए भाई फिर हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं, अब देखते हैं कौन हमारे साथ।
0: हेलो, हाँ जी सर नमस्कार।
1: ओहो हाँ जी सर नमस्कार, मतलब ये स्टाइल तो केवल एक व्यक्ति की है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दुनिया के सबसे गहरे महासागर बोल रहे हैं।
0: बिल्कुल सही पहचान
1: है। प्रशांत जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया।
1: हमारी बिटिया रानी कहाँ है?
0: बिटिया रानी भी अच्छी है सर।
1: अच्छा है आपके आसपास?
0: हाँ बिल्कुल है।
1: तो हम पहले जरा बिटिया रानी का से आशीर्वाद लेंगे।
0: ठीक है सर, बिटिया रानी से दीजिए।
2: हेलो
1: जी, प्रणाम
2: सर, नमस्ते।
1: अब आप कहिए, खुश रहिए, कन्याओं का आशीर्वाद लगता है।
2: जी बिल्कुल।
1: हाँ अब बताइए, हम आज आपसे क्या सुनने वाले हैं?
2: सर आज आपको इश्क दे फनीर सुना
1: देते हैं। जी तो पहले आप अपना नाम बता दिए ताकि हमारे श्रोता जान जाए कि ये प्यारी सी बच्ची का नाम क्या है।
2: सर मेरा नाम संजय तिवारी।
1: जी, और इस समय जो गोंडा के SP हैं उनकी भी पत्नी का यही नाम है। आप भी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेंगी ऐसी उम्मीद है। आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। जी तो सुनते हैं आपको।

इश्क दुश्मनी लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए तेरी लाके देखो मेरी दिल की छत पे चल गए सौ सौ बाजी मरे किया

0: बात है भाई, और पंजाबी सुर में इतना अच्छा गाया। शिल्पी बुला जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, कहा है शाबाश बेटा, और अनोखी शर्मा जी ने कहा है सुपर सुपर सुपर, क्या बात है, बहुत अच्छा गाती हैं और आप इसी तरह गाती रही हैं जी। और अब चलते हैं आपके पूज्य पिताजी की ओर।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार सर,
0: क्या
1: कैसे
0: बात
1: हैं?
0: है, मतलब बेटी पंजाबी ऐसा बोलती है, पंजाब में रहती हूँ। मतलब कठिन होता है लिरिक्स पंजाबी की पकड़ना।
1: नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: देखिए भाई, प्रबल जी ने भी भाई बहुत सारे स्टार्स दे दिए हैं कि भाई बहुत अच्छा गाया आपने। तो लाइक फादर लाइक डाटर से अब लाइक डाटर लाइक फादर होने वाला है आज।
1: जी जी।
0: तो क्या सुनेंगे
1: हम आपको? हम आपको सर एक गाना सुनाते हैं मोहम्मद रफी जी का, और मौसम भी कुछ ऐसा ही है तो हम सोच रहे हैं ये गाना सुनाते हैं आपको।
0: जी

और जिनके गीत सावन गाए आए गे रातों में, होठों पे बात दिल की आए आए भीगे रातों में, हो तेरा मेरा पूछना था बड़ी वो ये घटा घन घोर है, चुप हुए मैं कह दूं कैसे, मेरा साजन नहीं तू

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब लोग पूछ रहे हैं कौन है सर जी। हाँ, इनका नाम श्री प्रशांत कुमार तिवारी जी है, और जिसको पहले जिनको सुना हो उनकी प्यारी सी नंदी सी बेटी है, और शिल्पी जी ने लिख दिया भाई बहुत खूब प्रशांत भाई, क्या बात है। और अनोखी जी लिखते हैं भाई नाइस आवाज, क्या बात है भाई। तारीफों के फूल बटोर कर आप जा रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।
0: जी जी थैंक यू सर।
1: जी प्रणाम आपको।
0: प्रणाम।
1: जी हाँ भाई, तो ये आवाज जो है वो प्रशांत जी की है, और सविता जी ने भी लिखा है भाई नाइस, बहुत अच्छा गाया। जी हाँ, और आवाज़ भी अच्छी है, और आज तो भाई रिमझिम के गीत सावन गाए। और देखते हैं हमारे साथ कोई और जुड़ चुका है, देखते हैं कौन है। हेलो। हेलो
2: जी सर, नमस्ते।
1: जी नमस्ते,
2: मैं प्राची बोल रही हूँ। प्राची मिश्रा।
1: जी जी जी जी बिल्कुल पूरब जी, कैसी हैं आप।
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो।
1: आपका आशीर्वाद।
2: जी
1: तो कैसी हैं आप।
2: मैं बढ़िया एकदम।
1: चलिए ये अच्छा है। तो मौसम का कुछ असर आप पर भी है।
2: हाँ पर मौसम कुछ चेंज होता जा रहा है, कभी बारिश कभी धूप।
1: हाँ ये ऐसी ही जिंदगी भी है, कभी सुख कभी दुख, कभी आना कभी जाना।
2: हाँ, हाँ। मौसम भी है।
1: मौसम भी है, शायद इसलिए गीत बना था यार बदल न जाना मौसम की तरह। आप सुन रहे हैं। तो आज हम क्या सुनने वाले हैं आपसे।
2: आज बहुत ओल्ड सॉन्ग है, ओ मेरे सोना रे सोना रे।
1: क्या बात है क्या बात है क्या बात है।
2: ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जो मत होना।

0: क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। प्राची जी कमाल कर दिया आपने, क्या प्यारी सी आवाज उठाई और कितने मासूम और कितने ठहराव के साथ आपने ये गीत गाया, बहुत शानदार, लाजवाब। और लाजवाब दीदी, दीदी मत कहिए, आपसे छोटी हूँ भाई। जी जी जी, उन्होंने कहा है दीदी लाजवाब अनोखी जी ने, तो हमने कहा आपको बता दें। जी बहुत अच्छा लगा। और सविता जी भी लिखती हैं, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, आप ऐसे ही गाती रही है। और जी प्रबल जी ने भी कल लिख दिया, क्या बात है भाई, हम पूरे 100 में 100 नंबर है आपको।
1: थैंक यू सो मच।
0: ठीक है, अच्छा प्रणाम।
1: नमस्ते
0: जी। हाँ भाई, तो ये हमारी पूरब दिशा अर्थात प्राची जी और बाहुबली जी ने लिखा, वेरी नाइस जी वास्तव में। और गीत का चयन भी अच्छा था, ओ मेरे सोनारे सोनारे सोनारे, क्या बात है, देव सेना जी हैं, क्या बताइए। जय महेशमती जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमने कई गायक कलाकारों को छुआ, चले हम मुकेश से रफ़ी तक पहुँचे, फिर रफ़ी जी को टच किया, फिर लता जी को। उदित नारायण साहब जी आने वाले थे, लेकिन आज उदित नारायण जी की जगह हमारे गोंडा के उदित नारायण तो भाई प्रशांत जी हैं। अब देखते हैं भाई, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सुनना बाकी है, जो शेष हैं, और जो शेष हैं वो बहुत विशेष है। और जी हाँ, देखिए हमारे बहुत ही जानकार श्रोता राजेश सिंह जी मालवीय नगर से आ चुके हैं। सर नमस्ते जी, आप देखते हैं कौन है हमारे साथ।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते
0: जी,
2: आरजे अमन फ्रॉम रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।
0: हाँ, आरजे रेडियो, आरजे अमन फ्रॉम रेडियो हॉटस्टार
2: जी। सर जी, और कैसे हैं आप?
0: आशीर्वाद है आपका, दुआएं हैं आपकी।
2: बस अपना शो खत्म करके आपका शो का मुझे इंतजार आता है बेसब्री से, मैं भागे भागे दौड़े दौड़े आ गया। और अभी अभी आप बात कर रहे थे कि उदित नारायण जी नहीं आए हैं, तो उदित नारायण जी का मैं गाना सुनाने के लिए तैयार हूँ ना, आप टेंशन कह लेते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो आज अमन जी
2: आपका और बताइए
0: जी। जी, तो उदित नारायण जी को सुनते हैं हम
2: आगे, पहले उदित नारायण का सुनते हैं, फिर एक और आपको मोहम्मद रफी का सुनाएंगे, ठीक है
0: जी।

घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकल

0: की भोली अदाए, ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ओ करता हूँ उसके घर के मैं फेर, हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे, सच कह रहा हूँ उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक गम है, जिसे प्यार करता हूँ मैं, जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। घर से निकलते ही लड़की है जैसे कोई पहेली, कल जो मिली मुझको उसकी सहेली, मैंने कहा उसको जाके ये कहना, अच्छा नहीं है यूं दूर रहना, कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो खिड़की में आई नजर, घर से निकलते ही। और सर
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ कर दी। शिल्पी बनर्जी ने कहा वाह भाई क्या बात है, देव सिन्हा जी ने कहा क्या बात है।
0: और सर जी अब एक और सुन लीजिए जल्दी से, क्योंकि 1% मेरा मोबाइल है और पता ना कब डेट हो जाए।
1: जी जी
0: ओके। एक ना

बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरी सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरी हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन।

बनेगी, इतना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी

बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ला ला ला ला ला ला, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू

0: जाने वाले हैं, क्योंकि हम उनके बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं फैन हैं उनके, मतलब उनका जो वो रेडियो कर्णस्थली का वो समझिए के हार्ट हैं, वो दिल हैं, वो बहुत ही अच्छा शो करती हैं, माइंड ब्लोइंग, मतलब उनके शो के लिए ही हम यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, और उसके बाद आपका मतलब यानी कि शो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो फिर सर जी मैं भी नहीं आ सकता।
1: नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको भी कोई बहुत बड़ा मौका मिल जाए कि आपको यहाँ पर एक अच्छा चांस मिल रहा है और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, मतलब ऐसे
0: तो ठीक है, वो रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि मतलब अगर वो नहीं आएंगी, यानी कि ग्रुप में मैंने भी देखा है, तो सर जी ये मेरा भी फैसला है, लेकिन उनको मैं चाहूंगा कि यानी कि उनको आप लोग यहाँ लाइए, बस दैट्स ऑल।
1: हम तो भाई उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तो उन्हीं की प्रतीक्षा में है, और ईश्वर ने चाहा तो वो जहाँ भी रहे, यहाँ रहे, चाहे जहाँ रहे, कामयाब रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। रेडियो गणेश 89.6 एफएम सबके कल्याण की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद सर।
1: जी हाँ भाई, चलिए और अब चलते हैं भाई। अभी हमने देखिए भाई, तेज नारायण शुक्ला जी लिखता है, वाह क्या बात है, एक ही होता है दूसरा होता है तो दर्द न सहते। सर जी हाँ, श्री तेज नारायण शुक्ला जी हैं, वाह लाजवाब जी हाँ। और अब चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो,
2: हाँ प्रणाम सर।
1: अरे चरण स्पर्श
2: जी, ये कहते हैं
1: आपका आशीर्वाद, हमने तो हमको तो लगा कि आज आप लोगों को शुभकामनाएं देती ही रह जाएंगी।
2: नहीं नहीं सर, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ।
1: हाँ
2: बिजी जा रहा था, मिल नहीं पा रहा था।
1: जी जी जी जी,
2: मैं सेकंड गाने से ही ट्राई कर रही थी।
1: हम क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए।
2: नहीं क्षमा प्रार्थी नहीं, अपना प्रोग्राम ऐसे बिजी रहे यही तो हम लोग चाहते हैं।
1: नहीं, और कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए।
1: बस आपका आशीर्वाद
2: वो तो हमेशा रहेगा
1: जी।
2: तो विलंब न करते हुए सर सुनाए आपको भी, रफी जी, साहब छाए हैं तो आज रफी ही छाए रहेंगे।
1: हाँ क्या बात है, मतलब आज आप भी रफी।
2: हाँ गुस्ताखी है थोड़ी छोटी सी
1: जी।
2: शुरू करते हैं सर।
1: निसंदेह हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अकेले हैं,
1: हाँ क्या छ

0: थैंक यू सर।
1: ये पूरा हो गया गीत
0: जी? पूरा हो गया।
1: अरे क्या बात है, मतलब हम कहाँ खो गए थे, मतलब क्या कहूँ मैं, प्रशंसा के लिए शब्द नहीं मिलते मेरे पास आपकी। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, क्या बात है। रफ़ी साहब को क्या खूब उठाया आपने, लेकिन देखिए रफ़ी जी बहुत आए लेकिन लता जी नहीं आई, तो क्या एक स्टेंजा कोई लता जी का भी हो सकता है?
0: लता जी का
1: कोई भी एक स्टेंजा जो आपको बहुत पसंद हो।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, अब लगा कि शिल्पी जी को सुना हमने कि दफी मतलब बिना लता के दफी थोड़े से कम अच्छे लग रहे। उसने कहा दोनों का कम्बिनेशन किए और दादा ने कहा वेरी नाइस शिल्पी, और श्री तेजनाथ शुक्ल ने कहा वाह बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, और भाभी जी ने आपको 100 में 100 नंबर दिए। प्रबल जी क्या बात है भाई, बहुत तारीफ की, क्या बात है। धर्मेंद्र लिखते हैं बहुत बेस्ट सुध है आपका शिल्पी जी, बेस्ट ऑफ लक दिल से, क्या बात है।
0: मतलब
1: क्या बात है, मतलब महफिल लूट ले जाती हैं।
0: धन्यवाद बहुत बहुत
1: वास्तव में भाई, और खासा व्यस्त रहा फोन, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए हम थोड़े से आपसे क्षमा प्रार्थी अवश्य है, लेकिन वो फोन चल रहा था तो चल रहा था।
0: अरे नहीं सर, आप बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले आज, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छा अच्छा गाना गाया
1: जी,
0: मुझे भी अच्छा लगा।
1: और राजेश जी कहते हैं कि लता जी आप ही हैं।
0: अरे सर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
1: नहीं मतलब लेकिन आपने गाया एकदम उसी अंदाज से, ये कठिन गीत है लता जी का और आपने बहुत प्यार से गाया।
0: धन्यवाद।
1: अच्छा चरण स्पर्श
0: खुशी है सर
1: जी। हाँ भाई, तो ये हमारे साथ शिल्पी जी उपस्थित हैं, और वास्तव में भाई अब तो जो शेष है वो अभी बहुत विशेष है भाई। श्री तेजनाथ शुक्ल जी भी हमारे पास है, उनकी कविताएं भी कभी सुनने को मिलती हैं हमको, तो ज़रूर हम चाहेंगे कि भाई उनकी कुछ पंक्तियां हम सुन पाएँ, क्योंकि वास्तव में जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। धर्मेंद्र मोहन जी बहुत शानदार गाते हैं भाई, खास समय है आपके पास धर्मेंद्र मोहन जी, उस दिन आपने गीत गाया था और वो गीत अधूरा छूट गया था, अगर आप चाहें तो वो स्टैंजा आज पूरा कर दें। और सविता जी को तो हमने सुना नहीं, और जब तक भाई तब तक हम अनिल दादा को अपने परिपूर्ण नहीं मानेंगे जब तक सविता जी को सुन नहीं लेंगे। तो अब समय कम है और हमारे पास वक्ता ज़्यादा है, तो भाई बिना समय व्यर्थ किए हुए आपसे कलबद्ध निवेदन है कि आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि हमारे पास 5 मिनट का समय है और इस समय को हम व्यर्थ न करते हुए चलें। और जी हाँ, और राजेश सिंह जी कह रहे हैं सर आप एक सॉन्ग प्ले ओल्ड। अरे अरे क्या राजेश जी, हम कभी गा ही नहीं पाए और हम गुनगुनाने वाले लोग हैं, गाने वाले लोगों को आपने अभी बेहतरीन रूप से सुना, मतलब लग जा गले, उसके बाद किसी की हिम्मत पड़ेगी गाने की। जी हाँ, तो अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: नाम लिया याद आ गए
1: जी। नमस्कार
2: नीम के तो?
1: जी नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार सर जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी, अर्थात धर्म भी है, इंद्र भी है और मोहन भी है।
2: हाँ धर्म धन इंद्र।
1: जी जी जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है, आपका दुआ है
1: जी। तो क्या सुनने वाले आपसे हम?
2: बस सुना रहा हूँ आपको।
1: जी जी सुनाइए,
2: इजाजत दीजिए बस।
1: जी जी बिल्कुल, एक सुनाइए, श्री तेजनाथ शुक्ल जी का भी फोन आ रहा है, कुछ पंक्तियाँ उनसे।
2: जान सी महबूबा हो हम मेरी, कभी मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जान सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस में है ना रस में है, ना सिकवे है ना वादे है, ना कस में है ना रस में है, ना सिक

ऐसा ही रूप ख्यालों में था मैंने जब ये सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा

0: के मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जान सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू वेरी मच सर
1: जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे मत लेने का वक्त भी आ चुका है।
0: खाने का टाइम हो गया सर।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल पुनः आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में ठीक 9:30 बजे, जिसका नाम है बाहर ए गज़ल। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणस्थी 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, कुछ अनकहा सा। ऋतु अपने कॉलेज के गेट के बाहर निकली तो उसने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा। इतनी तेज बारिश में तो छाता भी नाकामयाब हो जाता है और ऊपर से ये तेज हवा और पानी की बौछारें जो उसे लगातार गीला कर रही थीं। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। जरा सा चूके नहीं कि सड़क पर नीचे गिर जाओ। लाग संभालने की कोशिश करने पर भी हवा का आवेग छाते को बार बार उसके हाथों से छुड़ा ले जा रहा था। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर जितने भी ऑटो रिक्शा दिखे सब सवारियों से लदे हुए थे। उसने एक ठंडी सी आह भरी और पैदल ही रवाना हो गई। उसे लगा जैसे मौसम ने उसके खिलाफ कोई साजिश रचती हो। झुंझलाहट से भरी धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक किसी ने उसके आगे स्कूटर रोका। उसने छाता हटाकर देखा तो वो रोहित था। हेलो रितु, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यार कॉलेज से घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी, रितु बोली। इस तरह भीगते हुए क्यों जा रही हो, रोहित बोला। तू खुद भी तो भीग रहा है, देख, रितु ने चिढ़ते हुए कहा। ओके, तुम छाते को बंद करो और जल्दी से मेरे स्कूटर पर बैठो, ये बारिश रुकने वाली नहीं है, समझी, रोहित ने कहा। रितु ने छाता बंद किया और किसी यंत्र चालित गुड़िया की तरह चुपचाप उसके स्कूटर पर बैठ गई। आज उसे रोहित बहुत भला लग रहा था, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। हालांकि दोनों भीगते हुए घर पहुंचे पर रितु खुश थी। घर पहुंची तो देखा माँ ने चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनाए थे। उनकी खुशबू से ही वो खिंचती हुई सीधी रसोई में पहुंची और प्लेट में रखे पकौड़ों पर हाथ साफ करने लगी तो माँ ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, ना ना रितु, ऐसे नहीं, पहले हाथ पुंछ धोकर आओ और अपने कपड़े देखो, पूरे गीले हैं, जुखाम हो जाएगा, जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ। पापा और भैया बालकनी में बैठे हैं, तुम भी वहीं आ जाना,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कुछ अनकहा सा। अब तक आपने सुना रितु कॉलेज से भीगती हुई घर वापस आई और रास्ते में उसे लिफ्ट दी उसके दोस्त रोहित ने। अब आगे भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है और माँ है कि वो बुदबुदाती सी अपने कमरे में गई और जल्दी से फ्रेश होकर अपने दोनों भाइयों के बीच आकर बैठ गई। छोटे वाले मुकेश भैया ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, पगली इतनी बारिश में भीगती हुई आई है, एक फोन कर दिया होता तो मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ भैया, मैं इतनी परेशान हुई और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो रोहित का जो वो मुझे आधे रास्ते में मिल गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। इतना कहकर वो किसी भूखी शेरनी की तरह पकौड़ों पर टूट पड़ी। अब बारिश कुछ कम हो गई थी और ढलते हुए सूरज के साथ आकाश में रेनबो धीरे धीरे आकार ले रहा था। कितना मनोरम दृश्य था। बालकनी की दीवार पर हाथ रखकर वो कुदरत के इस अद्भुत नजारे को निहार रही थी कि माँ ने पकौड़े की प्लेट देते हुए कहा, ले रितु, ये मिसेस मुखर्जी को दिया। उसने प्लेट पकड़ी और पड़ोस में पहुंच गई। घर के अंदर घुसते ही उसे हीक सी आने लगी। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी ऐसी मुख मुद्रा देखकर रोहित की हंसी छूट गई। वो ढाका लगाते हुए बोला, भीगी बिल्ली की नाक तो देखो कैसी सिकुड़ी हुई है। ये सुनकर रितु गुस्से में उसके पीछे भागी और उसकी पीठ पर एक धौल जमाई। रोहित ऊह आह करता हुआ बोला, तुम लड़कियां कितनी कठोर होती हो, किसी के दर्द का तुम्हें एहसास तक नहीं होता। हा हा हा, बड़ा आया दर्द का एहसास नहीं होता, मुझे चढ़ाएगा तो ऐसे ही मार खाएगा। रितु बोली, असल में मिसेस मुखर्जी रसोई में मछली बना रही थी। उसी की महक से रितु की हालत खराब हो रही थी। उसने पकौड़े की प्लेट उन्हें पकड़ाई और बाहर की ओर लपकते हुए बोली, मैं तो जा रही हूँ बाबा, वरना इस महक में तो मैं बेहोशी हो जाऊंगी। मिसेस मुखर्जी ने हंसते हुए कहा, तुमको मछली से महक आती है, लेकिन रितु अगर तुम्हारी शादी किसी बंगाली घर में हो गई तब क्या करोगी। रोहित की माँ को रितु के लाल लाल गालों पर मुस्कान बहुत पसंद थी। वो अक्सर उसे कॉलेज जाते हुए देखकर छेड़ा करती थी, रितु तू भी खूब सुंदर लागछी, देखो कोई तुम्हा के उठा के न ले जाए। रोहित ने सच ही तो कहा था, रितु को उसके दर्द का एहसास कहाँ था। वो जब भी उसे देखता उसके दिल में दर्द होता था। रितु अपनी लंबी लंबी दो चोटियों को पीठ के पीछे फेंकते हुए अपनी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें कुछ यूं घुमाती कि उन्हें देखकर रोहित के होश उड़ जाते। रोहित उसकी हर अदा पर फिदा था। वो तो उसकी अदाओं पर मर मिटना चाहता था, पर रितु से वो इस बात को कहे तो कैसे कहे। कहीं ऐसा ना हो कि रितु ये बात जानने के बाद उससे दोस्ती ही तोड़ दे, फिर उसे देखे बिना उससे बात किए बिना वो जी नहीं पाएगा ना। बस यही सोचकर मन की बात मन में लिए अपने प्यार को किसी कीमती हीरे की तरह मन में छिपाए उसे छिप छिप कर देखता रहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कुछ अनकहा सा। अब तक आपने सुना, रोहित ऋतु को मन ही मन बेहद पसंद करता था, लेकिन उससे कुछ भी कह नहीं पाता था। अब आगे आमने सामने घर होने की वजह से उसकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो ही जाती थी। कभी कभार जाते हुए तो कभी बालकनी में खड़ी ऋतु उसे दिख ही जाती थी, पर वो उसे छिप कर देखता था अपने कमरे की खिड़की से। रोहित क्या सोच रहा है, ऋतु उसके पास खड़ी चिल्ला रही थी इस बात से बेखबर कि वो उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। कितना फासला होता है ना ख्वाब और उसकी ताबीर में। ख्वाब में वो उसके जितनी नजदीक थी, असल में उतनी ही दूर। जितना खूबसूरत उसका ख्याल था, क्या उसकी ताबीर भी उतनी ही खूबसूरत थी? हाँ, मगर ख्वाब और उसकी ताबीर के बीच का फासला मिटाना उसके वश की बात नहीं थी। तू चल मेरे साथ, ऋतु उसे खींचती हुई स्टडी टेबल तक ले गई। कल सर ने मैथ्स का ये नया चैप्टर सॉल्व करवाया, लेकिन मेरे तो भेजे में कुछ नहीं बैठा, अब तू ही मुझे समझा देना। ऋतु को पता था कि रोहित मैथ्स का मास्टर है, इसीलिए जब भी उसे कोई सवाल समझ नहीं आता तो वो रोहित की मदद लेती। कितनी बार कहा था माँ से, ये मैथ्स मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन वो सुनती ही नहीं। अब निशा को ही देखो, आर्ट्स लिया है उसने, कितनी फ्री रहती है, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं, और यहाँ तो बस कलम घिसते रहो फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। इतनी बकबक में दिमाग लगाने के बजाय थोड़ा पढ़ाई में लगाया होता तो सब समझ में आ जाता। रोहित बोला, मेरा और मैथ्स का तो शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। रोहित एक घंटे तक उसे समझाने की कोशिश करता रहा, पर ऋतु के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। तुम सही कहती हो ऋतु, ये मैच तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारा तो इसमें पास होना भी मुश्किल है यार, रोहित ने अपना सिर धुनते हुए कहा। तो ऋतु को हंसी आ गई, वो जोर जोर से हंसे जा रही थी और रोहित उसे अपलक निहारे जा रहा था। उसके जाने के बाद रोहित तकिए को सीने से चिपटाए ऋतु के ख्वाब देखने में मगन हो गया। जब वो उसके पास बैठी थी तो उसके लंबे खुले बाल पंखे की हवा से उड़कर बार बार उसके कंधे को छू रहे थे और इत्र में घुली मदहोश करती उसकी सांसों की खुशबू ने रोहित के होश उड़ा दिए थे। पर अपने मन की इन कोमल संवेदनशील भावनाओं को दिल में छिपाकर रखने में, इस दबी छिपी सी चाहत में शायद उसके दिल को ज्यादा सुकून मिलता था। कहते हैं अगर प्यार हो जाए तो उसका इजहार कर देना चाहिए, मगर क्या ये इतना आसान होता है? और फिर दोस्ती में ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो दिल है शीशे सा नाजुक होता है, जरा सी ठेस लगी नहीं कि छन्न से टूटकर बिखर जाता है। इसीलिए अपने नाजुक दिल को मना मना कर दिल में प्रीत का ख्वाब संजोए रोहित ऋतु की दोस्ती में ही खुश था, क्योंकि इस तरह वो दोनों जिंदा दिली से मिलते जुलते और हंसते खेलते थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कुछ अनकहा सा। अब तक आपने सुना, रोहित ऋतु को मन ही मन बहुत पसंद करता था, लेकिन इस डर से वो उससे कभी कुछ नहीं कहता था कि कहीं ऋतु नाराज हो गई तो उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अब आगे, ऋतु भले ही रोहित के दिल की बात ना समझ पाई हो, पर उसकी सहेली उमा ने ये बात भांप ली थी कि रोहित के लिए ऋतु दोस्त से बढ़कर है। उसने ऋतु से कहा भी था, तुझे पता है ऋतु, रोहित दीवाना है तेरा। और ये सुनकर खूब हंसी थी वो और कहा था, धत पगली, वो मेरा अच्छा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल घड़ी में न जाने कहां से किसी सुपरमैन की तरह मेरी मदद करने पहुंच जाता है। और फिर ये कहां लिखा है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। इस बात को दिल से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कई बार उसकी आंखों में तेरे लिए उमड़ते प्यार को देखा है। पगली, चाहता है वो तुझे, उमा ने कहा था। तेरा तो दिमाग खराब हो गया लगता है, उसकी आंखें ही पड़ती रहती है, कहीं तुझे तो उससे प्यार नहीं हो गया, कहीं तो तेरी बात चलाऊं। ऋतु ने उसको झड़प दिया था। तुझे तो समझाना ही बेकार है, उमा बोली। उमा, सच कहूं तो मुझे ये बातें बकवास लगती हैं। मुझे लगता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जो जीवन साथी चुनते हैं वही सही होता है। मैं तो अरेंज मैरिज में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। सात फेरों के बाद जीवन साथी से जो प्यार होता है वही सच्चा प्यार है, और वो प्यार कभी उम्र के साथ कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता ही है। उमा आंखें फाड़े ऋतु को देख रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी ज्ञानी है, धन्य हो, आपके चरण कहाँ हैं देवी। और फिर दोनों खिलखिला कर हंस पड़ी थीं। इसके बाद फिर कभी उमा ने ये बात नहीं छेड़ी, पर उसे इस बात का एहसास जरूर था कि एक ना एक दिन ये एक तरफा प्यार रोहित को तोड़ कर रख देगा। पर कुछ हालात होते ही ऐसे हैं जिन पर इंसान का बस नहीं चलता। और अब घर में भी ऋतु की शादी के चर्चे चलने लगे थे, जिन्हें सुनकर वो मन ही मन बड़ी खुश होती थी कि चलो अब कम से कम पढ़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। सुंदर तो थी ही वो, इसीलिए रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। उसके दोनों भाई हंसते हुए चुटकी लेते थे, तेरी तो लॉटरी लग गई ऋतु, लड़कों की लाइन लगी है तेरे रिश्ते के लिए। ये तो वही बात हुई, एक अनार और 100 बीमार। मम्मी देखो ना भैया को, ये कहकर शर्मा जाती थी वो। ऋतु और उमा बड़े गौर से कुछ तस्वीरें देखने में मग्न थीं। ऋतु तस्वीरों को देख देख कर टेबल पर रखती जा रही थी। फिर अचानक एक तस्वीर पर उन दोनों सहेलियों की निगाहें थम गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऋतु की आंखों में चमक साफ साफ बता रही थी कि उसे ये लड़का पसंद आ गया है। गोरा रंग, अच्छी कदकाठी और पहनावा, ये सारी चीजें उसके शानदार व्यक्तित्व की झलकियां लग रही थीं। उमा ने भौहें उचकाकर इशारा किया तो ऋतु ने पलक झपका दी। उमा बोली, तो ये हैं हमारे होने वाले जीजा जी। उसने तस्वीर ऋतु के हाथ से खींच ली और भागने लगी।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कुछ अनकहा सा। अब तक आपने सुना ऋतु और रोहित बेस्ट फ्रेंड्स थे। रोहित ऋतु को मन ही मन प्यार करता था लेकिन उसे कभी इजहार नहीं कर पाया इस डर से कि कहीं वो अपनी दोस्ती न खो दे। और अब ऋतु की शादी कहीं और तय हो रही थी। अब आगे
1: उमा की बच्ची दे मुझे, कहती ऋतु ने उसका पीछा किया पर उमा ने एक न सुनी। तस्वीर ले जाकर ऋतु की मम्मी को दे दी और बोली, ये लो आंटी आपका होने वाला दामाद। माँ ने पहले तस्वीर को फिर ऋतु को देखा तो वो शर्मा कर वहां से भाग गई। लड़का डॉक्टर था और उसका परिवार भी काफी संपन्न और उच्च विचारों वाला था। एक लड़की जो भी गुण अपने पति में चाहती है वो सारे गुण उसके होने वाले पति कार्तिक में थे। और क्या चाहिए था उसे, उसकी जिंदगी तो संवरने जा रही थी और वो ये सोचकर खुश थी कि अब शादी हो जाएगी तो पढ़ाई से पीछा छूटेगा। उसने जितना पढ़ लिया काफी था पर लड़के वालों ने कहा कि उसका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही शादी करेंगे। ऋतु की सहमति से रिश्ता तय हुआ और आनंद फानंद सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। सगाई के दिन रोहित और उसका परिवार वहां मौजूद नहीं थे। उसकी दादी की बीमारी की खबर सुनकर वो लोग गांव चले गए थे। गांव से लौटने में उन्हें 15 दिन लग गए। वापस लौटा तो सबसे पहले ऋतु को देखना चाहता था रोहित और ऋतु भी उतावली थी। अपने सबसे प्यारे दोस्त को सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए जैसे ही उसे पता चला कि रोहित लौट आया है वो दौड़ी दौड़ी उसके घर गई। रोहित की नजर खिड़की के बाहर उसके घर की ओर ही लगी थी। जब उसने ऋतु को अपने घर की ओर आते देखा तो वो सोच रहा था कि आज कुछ भी हो जाए वो उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी दुनिया उजड़ने की तैयारी हो चुकी है। रोहित बाबू किधर हो, ऋतु शोर मचाती हुई अंदर दाखिल हुई। हेलो ऋतु, आज खूब खुश लाग छी तुम्हें। रोहित की माँ ने उसके चेहरे पर इतनी खुशी और चमक देखकर पूछा, बात ही कुछ ऐसी है आंटी, ये देखो। ऐसा कहकर उसने अपनी अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया और चहकते हुए अपनी सगाई का किस्सा सुनाने लगी। रोहित पास खड़ा सब सुन रहा था। उसे देखकर ऋतु उसके पास जाकर अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहने लगी, देखना कैसी है ना सुंदर। अब ऐसा मुंह बनाकर क्यों खड़ा है, अरे यार तुम लोग गांव गए थे और मुहूर्त तो किसी का इंतजार नहीं करता ना, बस इसीलिए। पर तू चिंता मत कर, तुझे पार्टी जरूर दूंगी। रोहित मुंह फेर कर खड़ा था, शायद वो अपने आंसू छुपाना चाहता था। फिर वो वहां से चला गया। ऋतु उसे आवाज लगाती रह गई, अरे रोहित सुन तो क्या हुआ। ऋतु उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, पर वो वापस नहीं आया और दोबारा उसे कभी नहीं मिला क्योंकि अगले दिन ही वो शहर छोड़कर गांव चला गया। ऋतु सोचती रह गई, आखिर क्या गलती हुई जो उसका प्यारा सा दोस्त उससे रूठ गया। उसकी शादी हो गई और वो अपनी गृहस्थी में रम गई। पर रोहित जैसे दोस्त को खोकर कई बार उसका मन दुखी होकर पुकारता, रोहित कहाँ हो तुम तो?

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी कुछ अनकहा सा। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोम फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोहर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या कि शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से। आप सही बोला, फिल्म

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी। जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूं आपकी आज़े ख्वाहिश।
0: और मैं हूं आज़े गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यहीं थम जाए। फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
1: ही हो मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर आपको याद होगा, हाँ जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। इस तरह के कई सारे डायलॉग्स हैं जो बॉलीवुड के हैं, लेकिन फिलहाल मीमर्स इसको काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जी हाँ, सो आपको कुछ ऐसे मूवीज़ के कुछ खास डायलॉग्स हम बताने वाले हैं आज इस अपने इस मॉर्निंग शो में, जो कि मीमर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप कई सारी रील्स में ऐसे डायलॉग्स को पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप भी जब रील स्क्रॉल करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे डायलॉग्स मिल ही जाते हैं। देखिए, बॉलीवुड ने सिर्फ बेहतरीन फिल्में या गाने ही पहली बात तो नहीं दिए हैं, बल्कि कई आइकॉनिक डायलॉग्स भी दिए हैं जो कि आज भी सदाबहार बन गए हैं। सो आज के वक्त में आइकॉनिक डायलॉग्स मीम्स बनकर के इंटरनेट पर सेंसेशन बन जाया करते हैं। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया यूजर्स बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग्स को मीम्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो सिर्फ फनी ही नहीं, बल्कि कई सैड और सीरियस सीन भी फनी मीम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी फेमस हो गए हैं। अब जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे, दरअसल ये डायलॉग सुपर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का है। ये सीन उस वक्त का है जब अक्षय कुमार राजपाल यादव को पैसा डबल करने का झांसा देता है। ये सीन अभी सबसे ज्यादा आइकॉनिक कॉमेडी सीन्स में से एक माना जाता है। मोगैम्बो खुश हुआ, दरअसल अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मूवी मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग अमरीश पुरी का है और ये फिल्म में खलनायक बने थे। सो फिल्म में खलनायक जब भी खुश होता है वो यही सिग्नेचर डायलॉग बोलता है। ये डायलॉग उनकी पहचान बन गया और आज भी इंटरनेट पर सबसे फनी मीम्स में से एक है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, भाई यह कैसे छूट सकता है। सो 2.5 किलो का हाथ हमारे सनी पाजी के पास तो है ही है, लेकिन सबसे पॉपुलर डायलॉग्स में से एक तारीख पे तारीख भी है। भले ही आज ये फनी मीम्स के लिए याद किया जाता है, लेकिन ये फिल्म दामिनी का सबसे सीरियस सीन था। सो वकील के रूप में सनी देओल पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलने से परेशान होकर कोर्ट में अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आते हैं और फिर इसी डायलॉग को बोलते हैं, अब भाई इन सारी रेस में मुझे घर जाना है। आलिया भट्ट कैसे छूट सकती हैं। जी हाँ, सो आलिया भट्ट का ये डायलॉग आज बेस्ट कॉरपोरेट मीम्स में से एक है, लेकिन ये फिल्मी दुनिया का यानी उस फिल्म का है जिसमें हमने कहा राजी। राजी का सबसे इमोशनल डायलॉग है। फिल्म में इंडियन स्पाई एजेंट बनी आलिया अपने मुल्क वापस जाने के लिए रोते हुए गुहार लगाती हैं। हालांकि ये आजकल आपको ऑफिस में ओवर टाइम करने वाले लोगों के मीम्स में नजर आता है। और एक डायलॉग जो भाई हम सब लोगों का काफी ज्यादा फेवरेट है, साला ये दुख खत्म का ही नहीं हो रहा है। तो दरअसल ये मीम भी इंटरनेट का सबसे पॉपुलर मीम्स में से एक है। हालांकि ये सीन जो आज मीम बन गया है, ये विकी कौशल की फिल्म मसान का सबसे सैड सीन है। सो विक्की अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए खोने के बाद गंगा घाट पर अपना दर्द बयां करते हैं और इस तरह बॉलीवुड के कुछ सीन्स डायलॉग्स आज भी मीम की दुनिया में मशहूर हो गए हैं। सो बॉलीवुड में आइकॉनिक डायलॉग्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है और अब अगर आपको भी कुछ याद है तो आप भी बता सकते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Goa, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
2: तो भैया अब वापस से एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके मॉर्निंग वाले स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। और आपने ट्यून किया रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। एक बहुत अहम बात जो कि आपसे साझा करना है, दरअसल आज के बच्चों को अगर हम देखते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो देख रहे हैं, ये कुपोषण से तो बच गए हैं, लेकिन अगर हम इंडियन में बच्चों की बात करें तो घेर रहा है इनको मोटापे का खतरनाक जाल। जी हाँ, अक्सर आप भी अपने घर में या अपने पड़ोस में या आते जाते बाजार में ऐसे कई सारे भारतीय बच्चों को देखते हैं, यानी हमारे ही सोसाइटी में, हमारे ही आसपास हमारे ही लोग होते हैं जिनके बच्चे जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा मोटापे से घिरे हुए नज़र आते हैं। दरअसल आपको स्टडी के बारे में अगर बताया तो स्टडी के मुताबिक भारत में जो बच्चे शुरुआती सालों में दुबले पतले थे वो उम्र बढ़ते ही तेज़ी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। 7 से 7 साल की उम्र में जहां 5.2% बच्चे ओवरवेट थे, वहीं 9 साल के होते होते ये आंकड़ा 3 गुना बढ़ करके 14.6% हो गया। सो बात आती है कि भाई कुपोषण घटा पर नई मुसीबत आखिर क्या है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी डेटा यानी पोषण ट्रैकर के हिसाब से पिछले 3 सालों में बच्चों में बौनापन यानी स्टडिंग और कम वजन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कमी इसमें आई है। इसके अलावा कम होना एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब बच्चों का अचानक ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होना एक नई साइलेंट इमरजेंसी बनकर आ गया है। सो ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है कि हम अगर बाहर निकलते हैं या कहीं भी देखते हैं तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं मोटापे से परेशान हो रहे हैं। और ये सच में कहीं ना कहीं सच में ऐसा कह सकते हैं कि एक नई साइलेंट इमरजेंसी बन रहा है, यानी बच्चों में इस तरह का मोटापा सच में ये एक इमरजेंसी की अलामत है। फिलहाल आपको हम बताने वाले हैं कि वो क्यों फूलता है बच्चों का बॉडी इस तरह से, सो ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, क्योंकि यही है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
2: तो ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सो जाने से पहले हमने बताया कि देखिए, आजकल हमारे घर या हमारे घर के आसपास दिख रहे बच्चे जो है वो मोटापे बीमारी से घिरे हुए हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों फूल जाती है बॉडी, ये हमें बताना है। दरअसल अगर हम स्टडी के हिसाब से आपको बताएं तो बच्चों के पास खाने की कमी नहीं है, बल्कि उनकी बेहद ख़राब लाइफस्टाइल इसके लिए ज़िम्मेदार है। जी हाँ, जंक फूड खाना, पोषण की कमी और फिजिकल एक्टिविटी यानी कि खेल कूद ना करना इस मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। सो आखिर क्या है कि भविष्य में बीमारियों का बड़ा खतरा है? जी हाँ, बचपन का ये मोटापा आगे चलकर बच्चों में कम ही उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी हमारी ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी देखभाल अगर हमने नहीं की, उनको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कराई और उनकी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया, तो हम बहुत बड़ी बीमारी की तरफ उनको धकेल देंगे। हालांकि ये कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरह से हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सच बात है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि अपने घर के बच्चे को खुले मैदान की तरफ ले जाएं, उसके साथ खुद भी खेलें, आउटडोर एक्टिविटी करें, जिससे आपका भी वक्त अच्छा गुजरे, आप भी फिट रहें और घर का बच्चा भी फिट रहे। और साथ ही साथ बच्चों को बैठे बैठे हर चीज़ के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल कराना भी सही नहीं है। बच्चों को निकलने दें, उनको खेलने दे, उनको सीखने दे, तभी शायद वो अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। तभी तो आज हम गर्व से कह पाते हैं कि भाई हम 90s के किड्स हैं, हमने अपना बचपना बहुत अच्छा जिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। सो हम भी क्यों ना मौका दे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और उसको भी मौका दे ताकि वो एक्सप्लोर करे। हालांकि इस बीमारी से बचाना हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है।

0: आई होप कि ये बात आप तक जरूर पहुंची होगी और आज से ही आप अपने घर के बच्चों और अपने जानने वालों के बच्चों को ये जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े और उनकी लाइफस्टाइल बेस्ट हो।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।